मेरी वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना हमने ली है नरेंद्र चंचल की आवाज़ में।

वंदना कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र जैन की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज का चिंतन सुनिए चैतन्य गुरु जी से। विषय है ओमकार साधना।
1: साधना एक शब्द है, लेकिन ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ होता है। ओंकार का साधना के बारे में आप सबको परिचय कराना चाहूँगा। ओंकार जैसे हम बोलते हैं एक मंत्र का, ओम नमः शिवाय ऐसा, तो सिर्फ ओम बोलने से उसका पूरा फायदा हमें मिलता नहीं। ओंकार के अंदर में तीन मात्राएं होते हैं, आकार, उकार, मकार। कौन सा मात्रा को कितना देर बोलने से कौन सा तरंगे पैदा होते हैं, और उन तरंगों का जो फ्रीक्वेंसी है जो हमारा मेटाबॉलिज्म के ऊपर, हमारे शरीर के अंदर में ब्लड केमिकल्स के ऊपर कैसा काम करता है, एक तकनीक है जो ओंकार साधना है। और उसको हम इस तरह बोलने से बहुत फायदा होगा, जैसे

अभी मैं तीन मात्राओं को उच्चारण किया, लेकिन अंदर से आवाज एक ही है। इसको ऊपर में जैसा पूरा मुंह खोल करके बोला हूं तो आ, ये शब्द नाभि से निकलती है। और दूसरा ऊ उकार, तो उसको हम दोनों होठों को नजदीक करते हैं तो उकार में बदलते हैं। इस मात्रा को मैंने ज्यादा इस्तेमाल किया और ये अनाहत चक्र मैंने हमारा हृदय के पास में, क्योंकि जो कॉन्शियस लेवल है हमारा ये पूरा यहीं पर होता है। और दूसरा मकार, जब मकार मैंने उच्चारण किया तो कंठ के ऊपर, जिसको हम पराशक्ति परा बोलते हैं। इस तरह उकार को ज़्यादा बोलने से शरीर के अंदर में जो अनाहत चक्र है चौथा, और उसके नीचे और ऊपर में पूरा ऊर्जा का संचालन होगा और नीचे अंगों के अंदर में जितने भी बीमारियां दूर होते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हमको आगे बढ़ना हो तो मकार शब्द को दोनों होठों को बंद करके उच्चारण करते हैं, तब पूरा मस्तिष्क के अंदर में ऊर्जा संचारित होगा और उससे हमारा मस्तिष्क में और मानसिक तौर पर बहुत फायदा होगा। अगर एक आम आदमी शुरू करना हो तो इसी तरह आकार को 4-5 सेकंड बोलें, फिर उसके बाद उकार को जितना लंबा खींच सके उतना लंबा खींचें और मकार से अंत कर दें। और इस तरह से अगर हम आकार उकार मकार को बोलते हैं तो जो उन कोशिकाओं के अंदर में जो गड़बड़ है वो दूर हो जाएगा और अपने आप फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा और बीमारी दूर हो जाएगा। और इसके साथ में अपना श्वास का प्रक्रिया को भी जोड़ते हैं। जब बोलते वक्त हमारा शरीर के अंदर में से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैं अभी ऊ बोल रहा हूँ तो मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब अंत में जो कुछ भी बचा है मुंह बंद करके नाक से बोलता हूँ तो नाक से जो बचा वो पूरा निकल जाता है। निकलने के बाद श्वास ना लेते हुए नाभि को अंदर खींच करके गर्दन को नीचे करते हैं और बाहर में हवा बाहर, मतलब एक बांध बन गया। इसको कहते हैं प्राणायाम में शून्य स्थिति। इस स्थिति में जितना देर रह सकते हैं उतना देर रहेंगे, जब सहन नहीं कर पाते हैं तब गर्दन को उठा करके मुंह से श्वास ले लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, अब तक जो ऑक्सीजन कोशिकाओं को नहीं मिला है वो ऑक्सीजन मिलने लगता है। जब ऑक्सीजन से भरपूर हो जाता है कोशिकाएं, तब उसके अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ आज तक वो पूरा निकल जाता है, तो नया ऊर्जा कोशिका को मिलेगा और पुराना गंदगी निकल जाती है। इस तरह हर कोशिका, हर अंग अंग प्रत्यंग पूरा बॉडी के अंदर में और खास करके रीढ़ हड्डी के अंदर में, मेरुदंड के अंदर में जितना भी तकलीफ है सब दूर हो सकते हैं। जो व्यक्ति इस क्रिया को इस तरह 25 मिनट, मतलब 25 मिनट लगातार बोलना नहीं, ये सब बोलना श्वास के साथ में जोड़ना 1 मिनट लगता है और 4 मिनट आराम करते हैं। एक ओंकार साधना का मतलब 5 मिनट हो गया, ऐसा हम आम व्यक्ति 5 बार ही करना चाहिए। ऐसा इस 25 मिनट जो व्यक्ति मॉर्निंग में खाली पेट पे करता है उनको पूरा शरीर एक ऊर्जावान हो जाता है, हर कोशिका ताजगीपन महसूस करता है। थकावट जिंदगी में होती नहीं है तो हमारा आभा मंडल चेहरे

0: वो पूरा बदल जाता है, जीवन ही कुछ ऊर्जावान हो जाता है।
1: अभी आपने चैतन्य गुरु जी से चिंतन सुना। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। खेतिया आवास्ती कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा मूंग मोठ की उन्नत खेती। खेत खलिहान में दोपहर 12:50 पर किसान भाई जानकारी सुनेंगे फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व विषय पर। चौपाल में संध्या 7:00 किसान भाई कार्यक्रम सुनेंगे गीतारो गजरो। बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। लोक भजन आप सुन सकते हैं 7:15 पर। मरुमंगल में 9:10 पर कलाकार होंगे रणजीत खां। मानस गान आप सुना करते हैं प्रातः 7:20 पर। भाग संख्या होगी 300। सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:30 पर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे सुखी जीवन का मूल मंत्र तनाव प्रबंधन कला। वार्ताकार होंगे डॉक्टर शिव कटारिया। भजन आप सुन सकते हैं 8:45 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा 9:30, दिन में 2:30, संध्या 7:45 और रात 10:30। गा मेरे मन गा ये कार्यक्रम सुनाया जाएगा 10:00। फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीतमाला प्रसारित किया जाएगा दिन में 11:00। दोपहर 12:05 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8:00। घरांगन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 1:05 पर। चर्चा के विषय रहेंगे नारी का अनमोल रूप माँ। मानसून में मेकअप करते समय रखें सावधानी। रसोई घर में सावधानियां ब्यूटी टिप्स गीत भी सुनवाए जाएंगे। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे 5:00। सैराइकी का समय रहेगा 6:05। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू का प्रसारण किया जाएगा रात 9:30 पर। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 12:30 पर और रात 9:15 पर। जिले की चिट्ठी 6:40 पर। हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। स्पोर्ट्स केंद्र रात 8:30 पर। हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर कुल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अच्छी बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेतियारा वास्ते कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय है मूंग मोठ की उन्नत खेती।
1: किसान भाइयों राम राम। अपने क्षेत्र में भाई लोग जेका मूंग और मोठ की भी फसल लेवे और विशेष तौर जब भी मूंग की फसल आप लेवा तो उन्नत किस्म है, उन्नत तौर तरीका है या उन्नत जकी भी विधियां हैं बांगो अपने ध्यान रखना चाहिए। तो मूंग की वास्ते उन्नत किस्म की बात करा तो IPM 02-3 सत्या जके ने MH 2-15 बोले, K851 MUM 2 जके ने मम बोले, एक गंगोत्री जके ने गंगा 8 बोले, SML 668 जमनोत्री जके ने गंगा 1 बोले। तो आमु कोई भी एक किस्म ले गए अपने बिजाई जकी कर देनी चाहिए। खेत के चुनाव की बात करा तो मूंग खातर अपने गहरी जल निकास युक्त दोमट और हल्की मिट्टी की जमीन है जकी चोखी रहे, जैर भूमि क्षारीय नहीं होनी चाहिए। मूंग खातर बिरखा होने पर खेत ने एक या दो जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार जुताई करके तैयार कर लेनी चाहिए। अगर जे बिरखा नहीं हो तो अपने पलयो करके बत्तर आने पर खेत की जुताई करके पाटो लगा के खेत ने अपने बिजाई खातर तैयार जो कर लेना चाहिए। भूमि उपचार जके खेता में दीमक प्रभावित हो सिंचित क्षेत्र में 6 किलोग्राम क्यूनोअल्फास 1.5 सैकड़ो चूर्ण जो बुआई से पहला अपने खेत में मिला देना चाहिए। बुआई वास्ते टेम की बात करा तो जुलाई को पहलो पखवाड़ा जो मूंग की बिजाई खातर सर्वोत्तम है, इन टेम अपने मूंग की बिजाई जकी कर लेनी चाहिए। और इनमें विशेष तौर बीज की मात्रा की बात करा तो मूंग खातर 4-5 किलो स्वस्थ बीज है जके की अपने जरूरत हो। बुआई कतारा में ही करनी चाहिए, कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10-15 सेंटीमीटर तक अपने रखनी चाहिए। और बीज उपचार की बात करा तो बुआई से पहले अपने बीज उपचार 3 ग्राम थायरम या 3 ग्राम कैप्टन द्वा 1 किलो बीज के हिसाब से अपन उपचारित कर लेना चाहिए। एजेक्टोवेक्टर या PSV कल्चर जके ना फास्फोरस घोलक जीवाणु का बिंगा 3 पैकेट 1 हेक्टर खातर यानी 4 बीघा दी अपने जरूरत पड़े जके इसमें नत्रजन है, फास्फोरस है, आ जके उर्वरक की अपन की बचत हो जाए। मूंगा ने भी राइजोबियम जीवाणु कल्चर से उपचारित करने से बुआई करने से पैदावार बींग में बढ़ोतरी हो जाए तो वो भी अपन राइजोबियम कल्चर जीवाणु को पैकेट है जो भी अपन काम में लेना चाहिए। खाद है उर्वरक की बात करा तो मूंग प्रति बीघा 10 किलो फास्फोरस और 5 किलो नत्रजन बुआई से पहले अपने खेत में मिला देना चाहिए। जब आप खेत तैयार करा 37.5 किलोग्राम प्रति बीघा जिप्सम को उपयोग कर लिया तो और भी अच्छी बात है। तो इसे क्या है जबकि उपज है भी में अच्छी वृद्धि हो जाए तो अभी अपने जब आप खेत तैयार करा बी टाइम जिप्सम है जबकि इतनी मात्रा अपने मिला देनी चाहिए। सिंचाई की बात करा जी अपने गर्मी की फसल में मूंग ने 2-3 सिंचाई की जरूरत पड़े और जे बिरखा हो जाए तो फसल में सिंचाई जबकि अपने 1-2 सिंचाई कर देनी चाहिए। टाइम टाइम सरु अपने निराई गुड़ाई जकी भा भी करते रहना चाहिए। जहाँ फसल में आवश्यकता अनुसार खरपतवार है जका टाइम सरु कशिया की सहायता से अपने निकालता रहना चाहिए या जरूरत पड़े जब भी आप भी पानी लगाओ और बत्तर आवे तो अपने हेरु है जको चला देना चाहिए। 30 दिन की जब फसल हो जाए तो बिन टाइम अपने निराई गुड़ाई कर भी जरूर सांतरे कशिया की सहायता से अच्छी तरह से कर देनी चाहिए। जितना आप खरपतवार ने नियंत्रण करांगा वित्तीय पाई इं कैसा भी फसल से ज्यादा आप लाभ है जो ले सकेंगा। और जी जी आप फसल बढ़वा रहोगी तो भी हिसाब ये अपन हर तरह से ये फसल ने ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। किसान भाई मोठ की बात करा तो इनकी उन्नत किस्म की बात करा तो मोठ में RMO 40 आ एक उन्नत किस्म है। जब मूठ की फसल ज्यादातर भाई लोग अपने शुष्क क्षेत्र में करे सामान्य बिरखा होने पर इनकी उपज जबकि अच्छी मिल जाए और भारी बिरखा होने पर भी इन्हें नुकसान हो जाए। तो जठे खेत समतल हो या पानी अच्छो निकास हो तो बठेंगी खेती है जकी करी जा सके। बिरखा होने पर विशुद्ध फसल खातर भूमि की आवश्यकता अनुसार 1 या 2 जुताई करके खेत ना अपने तैयार कर लेना चाहिए। ऐसे समय के अभाव में मूठ की बुआई बिना जुताई करे भी करी जा सके। बीज की मात्रा की बात करा तो फसल खातर 2.5 किलोग्राम बीज है जो प्रति बीघा डेट अपने जरूरत होगी। बुआई के टाइम और बुआई की विधि की बात करा तो मोठ की फसल भी बिरखा ऋतु की फसल है। जब बिरखा शुरू है बीन टाइम अपने बिजाई जकी कर देनी चाहिए। और जी कतारा में बिजाई करा तो बहुत ही अच्छी बात है। और कतार से कतार की दूरी जकी में 45 सेंटीमीटर रखनी पड़े और बूंटे से बूंटे की दूरी जकी में 15 सेंटीमीटर रखनी पड़े। बीज उपचार की बात करा तो बिजाई से पहले अपने मोठ की फसल को जो बीज है 3 ग्राम थायरम या 3 ग्राम कैप्टन दोनों में कोई एक दवाई लेगे 1 किलो बीज ने आप उपचारित कर सका। अन्य दलहनी फसलों की तरह अपाई में राइजोबियम जीवाणु खाद है बिंगो भी उपचार कर सका जबकि शूं के पैदावार महंगी बढ़ोतरी हो जाए। मोठ की फसल में उर्वरक है बांगी विशेष तौर ज्यादा जरूरत को नहीं पड़े लेकिन जे खेत में रेतीलो है या कमजोर है तो इन 8 किलोग्राम फॉस्फोरस और 2.5 किलोग्राम नत्रजन प्रति बीघा के हिसाब से बुआई के टाइम अपन खेत में मिला देना चाहिए। और निराई गुड़ाई जे की टाइम सरु अपन

0: करता रहना चाहिए। जब महीने 20 दिनों की फसल हो जाए तो बेन टाइम आपने कसी सहायता सुमोट की फसल में निराई गुड़ाई जो की कर देनी चाहिए। और इनके अलावा जहाँ जहाँ जरूरत पड़े तो भी हिसाब में अपने टाइम सरु जो कहीं में हरी बीमारी कीड़ों कांटो लगे तो वो जी जी अपने खेत में आप देखभाल करांगा तो भी हिसाब में तुरता फुरता लक्षण पहचान गए अपने छिड़काव छिड़काव कर देना चाहिए। जैसे आप मोठ की फसल है जबकि भी आप अच्छी लेस कहाँ तो इस हिसाब आप मूंग और मोठ बिरखा ऋतु पर आधारित है फसल है। और आप जिया जिया बिरखा होगी तो भी हिसाब आप मूंग और मोठ की फसल थोड़े से पानी में आप ज्यादा जो लाभ ले सका।
1: खेती रवास्ते कार्यक्रम में अभी किसान भाई जानकारी सुन रहे थे मूंग मोठ की उन्नत खेती विषय पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन कलाकार हैं प्रेमचंद सांखला।

अभी आप लोक भजन सुन रहे थे। कलाकार थे प्रेमचंद सांखला। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या है 300।

भयभीत सागर ने ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम के समक्ष घुटने टेक दिए। अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा याचना करता हुआ बोला, हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये पांच तत्व स्वभाव से ही जड़ होते हैं। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि करने के लिए उत्पन्न किया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वो उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। आप जैसा आदेश करें, मैं वैसा ही करूंगा। सागर का निवेदन सुनकर कृपालु श्री राम प्रसन्न हुए, बोले, तुम वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना पार उतर जाए। हे नाथ, वानर सेना में नल और नील ऐसे दो भाई हैं जिन्हें बचपन में ऋषि से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि उनके स्पर्श मात्र से भारी भारी पत्थर और पहाड़ जल में तिरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। अतः आप इनसे सेतु निर्माण कराइए और उस पार जाकर पापियों का विनाश कीजिए।

अभी आप मानस गान सुन रहे थे, भाग संख्या थी 300। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, शब्दों की शक्ति से हम जीवन को बदल सकते हैं। शब्दों से हमारी पहचान बनती है, हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। शब्दों के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और अपने इरादों को मजबूत करते हैं। हम अपने शब्दों को मर्यादित और मीठा रखकर सभी के साथ अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। हमें नकारात्मक शब्दों के चिंतन से बचना चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए। हम अपने शब्दों के जरिए अपने संस्कार, परिवेश और रहन सहन का परिचय दे सकते हैं। अगर हम शब्दों के द्वारा जीवन बदलना चाहते हैं तो तीन बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले हम अच्छी बातों को कहीं से सुनें या खुद पढ़ें, फिर शब्दों का चिंतन करें, यानी उन शब्दों के अर्थ को समझें, शब्दों का सार क्या है विचार करें, फिर मनन यानी उन शब्दों को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि शब्दों के सुनने मात्र से परिवर्तन नहीं होता जब तक कि हम अपने जीवन में उन शब्दों को उतारते नहीं हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुप्रभात कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता। सुखी जीवन का मूल मंत्र तनाव प्रबंधन कला। वार्ताकार हैं डॉक्टर शिव कटारिया।
2: सभी सम्माननीय श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। चुनौतियों से भरी इस जीवन यात्रा में तनाव का आना तो तय है, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि तनाव को दूर रखने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ रुककर यह समझने की जरूरत है कि जिस तरह हर ताले की चाबी, हर प्रश्न का उत्तर तथा प्रत्येक समस्या का समाधान मौजूद है, तो फिर तनाव से घबराना क्यों है? आज के प्रतिस्पर्धी दौर में जब गांव गुहाड़ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति का माहौल है, महंगाई अपने चरम पर है, तब प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करने के दौरान बहुत सारे लोग तनाव का शिकार हो रहे हैं। तनाव में हो रही निरंतर वृद्धि से मानसिक व शारीरिक परेशानियां भी निरंतर बढ़ रही हैं। दुख तब होता है जब तनाव को न झेल पाने के कारण कुछ लोग जीवन से क्विट कर जाते हैं। यह तो कतई उचित नहीं है। जीवन जैसा भी है अनमोल है, उसे फेस करने में ही समझदारी है। जीवन है तो तनाव तो आएगा ही, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्थिति को यदि समझें तो तनाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तनाव के कई कारण हैं, जिनमें अशिक्षा के कारण उपजी अज्ञानता व समाज में बनी असंतुलन की स्थिति, जीवन जीने की कला का विधिवत ज्ञान न होना, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा अन्य मीडिया माध्यमों से परोसी जाने वाली दिग्भ्रमित कर देने वाली सामग्री भी तनाव का एक बड़ा कारण बन रही है। दैनिक जीवन में उपलब्ध जनोपयोगी सेवाओं में मौजूद विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार समाज में तनाव की परिस्थितियों में वृद्धि कर रहा है। जीवन के दर्पण में झांकने पर मालूम पड़ता है कि सेल्स से जुड़े लोग कई बार टारगेट पूरा नहीं कर पाने के कारण तनाव में आ जाते हैं। कोई नौकरी न मिल पाने के कारण तो माता पिता बच्चों के भविष्य को लेकर, अकेलापन, अनियंत्रित खान पान से बिगड़े स्वास्थ्य को लेकर के भी लोग तनाव का शिकार हो रहे हैं। जीवन के सफर में जब डिमांड, थ्रेटफुल जैसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है और हमें उस समय ये महसूस होता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और हम उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें तनाव होता है। जिंदगी की यात्रा में एक मुसाफिर के रूप में हम सभी

को भावनात्मक, शारीरिक एवं मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता ही है। इनसे उत्पन्न मानसिक तनाव के संभावित नुकसान के डर से हम तनावग्रस्त होते चले जाते हैं। इस तनाव को हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, किंतु इसका सटीक प्रबंधन करके तनाव से काफ़ी हद तक अपना बचाव अवश्य कर सकते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेगेटिव बिहेव को लेकर हम तनाव में आ जाते हैं, कई अवसरों पर तो कई बार रिलेशनशिप की वजह से तनाव के हालात पैदा हो जाते हैं। विभिन्न तरह के शोध परिणामों में यह बात उभर कर आई है कि सही तरीके से तनाव प्रबंधन नहीं कर पाने की वजह से हमें शारीरिक इफेक्ट यानी प्रभाव झेलने पड़ते हैं। ऐसे में तनाव का शिकार व्यक्ति तेज सांस लेने लगता है, सोना भूल जाता है या फिर सारा दिन सोता ही रहता है, उसे पसीना आने लगता है, उसे बहुत गुस्सा भी आने लगता है। ऐसी स्थिति में तनाव से प्रभावित व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता है, व्यक्ति में एनर्जी नहीं बचती है यानी एनर्जी कमजोर होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति अपने इमोशंस को संतुलित नहीं कर पाता, बहुत सी चीजें उससे मिस होने लगती हैं, उसे भूलने की आदत पड़ जाती है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने लगता है। तनाव को कंट्रोल न कर पाने के कारण व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। शोध में यह भी सामने आया है कि तनाव का असर कई बार तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति हृदय रोग को भी आमंत्रित कर बैठता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति का वजन कभी कम तो कभी अधिक होने लगता है। साथ ही तनाव के शिकार व्यक्ति की मेमोरी अर्थात याददाश्त पर भी विपरीत असर पड़ने लगता है। बड़ी ही सूझबूझ का परिचय देते हुए व्यक्ति को तनाव से घबराने या डरने के बजाय तनाव प्रबंधन की कला को समझना व सीखना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए व्यक्ति को अपने परिवारजनों के साथ संबंधों को निरंतर बेहतर करने पर जोर देना चाहिए। अपने सुख दुख की बातें अपने फैमिली मेंबर्स से कम्युनिकेट करने से निश्चित ही तनाव कम होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक जीवन में आप अकेले नहीं रह सकते। हर व्यक्ति को कोई ना कोई चाहिए अपनी भावनाएं साझा करने के लिए। इसलिए हमारा प्रयास हो कि पब्लिक रिलेशंस को मजबूत किया जाए। इससे आपको न केवल खुशी मिलेगी बल्कि आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। यह भी तनाव कम करने की महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि हम तनाव प्रबंधन की कला के जरिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें हर रोज आधा या एक घंटा एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना चाहिए। इसे चिकित्सकों ने फायदेमंद बताते हुए प्रमाणित किया है। प्रकृति से निरंतर कनेक्ट करना भी तनाव प्रबंधन का बेहतरीन उपाय है। प्रकृति से जुड़ाव के लिए ऐसी जगह जाएं जहां बहुत सारे पेड़ लगे हों, बहुत सारे फूल खिले हों, या फिर कहीं सुंदर तालाब हो, झील या फिर झरना हो, कहीं सूर्योदय होने की खूबसूरत लोकेशन हो या फिर सूर्यास्त का सुंदर व मनमोहक दृश्य नजर आए, आकाश या हवा को महसूस करने वाली बेहतरीन लोकेशन हो। ऐसे स्थानों का निरंतर विजिट करते रहने से स्ट्रेस में निश्चित ही कमी आती है। साथ ही हम बागवानी के शौक को, रुचि को डेवलप करते हुए घर में गमले लगाएं, जिनमें अलग अलग वैरायटी के खूबसूरत फूल लगाएं और उनकी नियमित देखभाल करें तथा आवश्यकता अनुसार खाद पानी दें, तो इससे भी तनाव में कमी आती है। अपने स्वभाव को सरल व सौम्य बनाने पर भी काम करें, क्योंकि जिद व अकड़ से भी तनाव में वृद्धि की संभावना निरंतर बनी रहती है। तनाव प्रबंधन के लिए थोड़ा वक्त ऐसा भी निकालें कि आप बच्चों के साथ खेल सकें। जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो आप दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने बच्चों को बनाया ही ऐसा होता है। बच्चे भी इससे खुश होते हैं। इस गतिविधि से भी स्ट्रेस कम होता है। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन की यात्रा बिना विघ्न के चलती रहे, तो इसके लिए हमें अपनी दैनिक आदतों को ठीक करने पर गंभीरता से विचार करना होगा। माइंड को कूल रखते हुए खुशियां बांटने की आदत को विकसित करें, इससे भी तनाव को कम करने में मदद मिलती है। अपनी जीवन यात्रा में लोगों से इंटरैक्ट करें, उनके साथ एंगेज रहने की कोशिश करें, लोगों की बातें सुनें और उचित होने पर उन पर विश्वास भी करें, साथ ही उनका विश्वास जीतें भी, जो खुश रहते हैं तथा आसपास के लोगों को खुश रखने का प्रयास करते हैं, इससे भी तनाव में कमी आती है। और कहा भी गया है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तनाव प्रबंधन के लिए दिनचर्या में अधिक ठंडे पेय या सोडा के उपयोग से परहेज करें, इससे भी तनाव में बढ़ोतरी होती है। जल का सेवन अधिक से अधिक करें, यह हेल्थ के लिए बेहतर बताया गया है। ना चाहते हुए कई बार हम किन्हीं कारणों से टेंशन में आ जाते हैं।

ऐसी परिस्थिति में आपके पास अगर वक्त हो तो लंबी सैर पर निकल जाएं और तब तक वॉक करें जब तक कि आप थक ना जाएं। यदि इसका लॉजिक समझेंगे तो पता चलेगा कि शारीरिक तौर पर थकने से हमें अच्छी नींद आएगी। इस प्रक्रिया में ध्यान रखें कि लॉन्ग वॉक पर खुद से बातें करें, इससे निश्चित ही तनाव कम होगा। आजकल हालात और परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं कि बिन बुलाए मेहमान की भांति तनाव अचानक आ धमकता है। ऐसे में विद्वान समझाते हैं कि तनाव की घड़ियों में विशेष रूप से भगवान पर भरोसा करें तथा प्रार्थना करें, इससे तनाव कम होगा तथा सुकून का एहसास होगा। कई बार तनाव के चलते रात्रि के समय नींद नहीं आ रही हो तो ऐसे में स्वयं को समझाएं कि आप उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए ही काम करते हैं, यानी स्वयं को उनका नौकर मानें। रात को सोने से पहले कार्यभार ईश्वर को सौंप दें और उनसे मन ही मन आग्रह करें कि मैंने आज का काम बेहतर ढंग से किया और अब मैं सोने जा रहा हूँ। अगले दिन फिर से अपने कार्य का चार्ज लेकर बेहतर ढंग से अपनी ड्यूटी निभाएं। इस तरह प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन कार्य करने की कोशिश करेंगे तो इससे निश्चित ही तनाव के ग्राफ का लेवल

0: स्वयं को उनका नौकर माने, रात को सोने से पहले कार्यभार ईश्वर को सौंप दें और उनसे मन ही मन आग्रह करें कि मैंने आज का काम बेहतर ढंग से किया और अब मैं सोने जा रहा हूँ। अगले दिन फिर से अपने कार्य का चार्ज लेकर बेहतर ढंग से अपनी ड्यूटी निभाएं। इस तरह प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन कार्य करने की कोशिश करेंगे तो इससे निश्चित ही तनाव के ग्राफ का लेवल स्वयं ही नीचे गिरता दिखाई देगा। हमें यह भी समझना होगा कि जिंदगी के सफर में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कई बार अचानक किसी घटना के घट जाने पर आप टेंशन में आ जाते हैं। ऐसे में कोशिश करें उस घटना वाली जगह से फौरन हट जाएं, वहां खड़े या बैठे ना रहें। उस पोजीशन से मूव कर जाने पर आपको तनाव से कुछ राहत मिलेगी। दैनिक जीवन में किसी व्यक्ति के नकारात्मक व्यवहार से अचानक आप गुस्से में आ जाते हैं, जिससे आपके तनाव का परसेंटेज बढ़ जाता है, तो ऐसे में आप वॉक कर सकते हैं, एक दो गिलास पानी पी सकते हैं, इससे भी तनाव में कमी आती है। चैलेंज भरे वर्तमान दौर में हर इंसान के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब बहुत अधिक हाई टेंशन को वो व्यक्ति फेस कर रहा होता है। इन तनाव की घड़ियों में इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली सोचें। तनाव के उन पलों में जिंदगी का कोई भी बड़ा एवं महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, बल्कि उसे तत्काल पॉज कर दें और स्वयं को समझाएं कि इस पर मैं 24 घंटे बाद निर्णय लूंगा, क्योंकि अत्यधिक तनाव के समय आपका एक गलत फैसला जीवन भर के पछतावे का सबब बन सकता है और 24 घंटे के बाद शांत मन से लिया गया निर्णय संभवतः आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो। तनाव की मुश्किल घड़ियों में स्वयं को समझदार बनाएं, इसके लिए दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचें। ऐसे समय में अपने पसंदीदा कार्यों को करें, जैसे महिलाओं को शॉपिंग पसंद होती है, वे शॉपिंग करके टेंशन के टाइम को पास करें। तनाव से दूर जाने के लिए अपनी पसंद की मूवी देखें, फेवरेट म्यूजिक सुनें, कोई इंडोर या आउटडोर खेल पसंद है तो वह गेम खेलें। ऐसी कोई भी गतिविधि या एक्टिविटी करें जिससे आपके मन को खुशी मिलती हो, इससे निश्चित ही स्ट्रेस में कमी आएगी। सीधी स्पष्ट व दो टूक बात विद्वान समझाते हैं कि स्ट्रेस से बचने में ही समझदारी है और इसके लिए बदलते वक्त के साथ स्वयं को अपडेट व एडजस्ट होने की आदत को विकसित करें। हो सके तो खुद को फ्लेक्सिबल नेचर वाला बनाने का प्रयास करें। शोधकर्ता सलाह देते हैं कि एक माह से अधिक समय से लगातार आप यदि तनाव में हैं तो चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि जीवन अनमोल है। इस जीवन का भरपूर आनंद लें, स्वयं को निरंतर सकारात्मक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। तनाव के क्षण भी अंततः गुजर जाते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। जीवन को आनंद से जिएं, जीवन से क्विट नहीं करें बल्कि समझदारी से इसमें फिट होकर अंत तक अपनी जीवन यात्रा को यादगार बनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आपने वार्ता सुनी। सुखी जीवन का मूल मंत्र तनाव प्रबंधन कला। वार्ताकार थे डॉक्टर शिव कटारिया।

0: दोस्तों, अपनी भाषा को मधुर बनाने के लिए पहले खुद को मधुर बनाना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे विचार रखते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो इंसान अपने आप मधुरभाषी बन जाता है। हमारे विचारों में विरोधाभास हो सकता है, परंतु मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हम अपनी बात भी कह दें और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। हम अपने अहम को छोड़कर मधुरता से बोलें तो इसी में जीवन का सच्चा सुख निहित है। अगर हम मधुर भाषा का प्रयोग करेंगे तो जवाब भी हमें मधुर भाषा में ही सुनने को मिलेंगे, और अगर हम कटु वचन बोलेंगे तो इसका संताप भी हमें भोगना होगा।
1: मैंने

दोस्तों, उस्ताद योजना अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षित करने और कारीगरों के कौशल को बढ़ाने के लिए 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक कारीगरों को उनके पारंपरिक कौशल को विकसित करने और उन्हें आधुनिक बाज़ार की ज़रूरतों के अनुसार ढालने में मदद करना है। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा किया जाता है। इस योजना के द्वारा शिल्प उत्सवों और प्रदर्शनियों के माध्यम से डिजाइनिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग में सहायता की जाती है। इस योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा सहायता भी दी जाती है।

अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक

0: पर एक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद

0: ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिगबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 के अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अग्री टू ऑपरेशनलाइज देयर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट, पेविंग द वे फॉर यूरेनियम एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government forms seven-member committee to draft uniform civil code for the state.

0: निपटने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में 4th T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बनीज के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदाम का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में 3री भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरका ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तावुन से मुतालिक खाका शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका अखबारी बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल महज 2 समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी हम ख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि तरफेन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस मुआहदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवियत मिलेगी।
2: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcome today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
0: बाद में मेलबर्न में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द दुनिया की चोटी की 3 मईशतों में से एक बनने की भारत की ख्वाहिश ज्यादा तरक्की, ज्यादा कामयाबी के मंत्र पर मबनी है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारत के अंदरून मुल्क तैयार करदा दिफाई निजाम की सलाहियत और उसके मौसर होने का मुजाहिरा हुआ।
1: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी नई बुलंदी पर पहुंच गई है और इसमें मुश्तरका अकदार, अवाम से अवाम के मजबूत राबतों और मुख्तलिफ अहम शोबों में इश्तराक में वसत का अहम रोल है। वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के 10 लाख अफराद को बाहमी ताल्लुकात का एक अहम सुतून करार दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक जीते जागते पुल से ताबीर किया।
3: The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples.
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में अपोजिशन के लीडर एंगस टेलर से मुलाकात की। नामानिगार ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और सियासी इश्तराक पर तबादले ख्याल किया।

0: एक रिपोर्ट।
1: ये मीटिंग वाज़ेह इशारा करती है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को दोनों अहम पार्टियों की किस कदर तायीद हासिल है। स्ट्रेटजिक शराकत दारी में तआवुन पर इत्तेफाक करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का सच्चा दोस्त करार दिया और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की तायीद की। आला सतही मुलाकात के नतायज की हिमायत करते हुए अपोजिशन लीडर टेलर ने पुरअमन मकासद के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम फराहम करने और बैनुल अक्वामी शमसी इत्तेहाद जैसे तकनीकी तआवुन के इकदामात की भी तायीद की। ये बातचीत सियासी तब्दीलियों के बावजूद सिक्योरिटी और तवानाई के अहम शोबों में मुसलसल और मुस्तहकम तआवुन को यकीनी बनाने की अक्कासी करती है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ के हमराह आज तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG गए। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि उनके दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी होती है।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: न्यूजीलैंड मतारिकी मना रहा है जो उम्मीद यादों और नई शुरुआत की अलामत का माओरी नया साल है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी दो दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं जो पिछले तकरीबन 40 साल में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का पहला दौरा है। न्यूजीलैंड में नए साल और जनाब मोदी के दौरे से इस दिन की अहमियत और बढ़ गई है। मज़ीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: ऑकलैंड में वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वहां आबाद भारतीय अफराद के साथ साथ न्यूजीलैंड के कई लोग भी रिवायती माओरी इस्तकबाल किया ओरा मोदी के साथ उनका खैर मकदम करने के मुंतजर हैं। न्यूजीलैंड के माली और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर खवातीन नौजवान कारोबारी रहनुमा तालीमी और कम्युनिटी अरकान जनाब मोदी के इस दौरे को भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात में एक नए दौर के आगाज के तौर पर देख रहे हैं। उनका यह मानना है कि इससे तजारत तालीम सरमायाकारी खेलों और सकाफती तबादलों के शोबे में इश्तराक मजीद मुस्तहकम होगा। भारतीय बरादरी के अरकान का कहना है कि तकरीबन 40 साल बाद भारतीय वजीर आजम का यह दौरा उनके लिए बड़े फख्र और गहरे जज्बात का लम्हा है। न्यूजीलैंड के लोगों का भी कहना है कि वजीर आजम का यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने का मौका फराहम करता है। ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। जनाब मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमबनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे जिसमें गुज़श्ता दो साल में खासतौर पर तजारत कॉमर्स और दिफा के शुबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि एक महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खित्ता और मुस्तैद मुआशरा मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। नई दिल्ली में सरहदी अजला के पुलिस सुपरिंटेंडेंट की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दाखला ने यह बात कही। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क में दरअंदाजी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक मुतहरिक तरीक़ाकार कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत वाली हुकूमत ने सरहद पर बुनियादी ढांचे में साइंसी तौर पर 400% का इजाफा किया है। दरख्शा गांव प्रोग्राम का हवाला देते हुए वजीर दाखला ने कहा कि इस पहल के तहत माइग्रेशन को रोकने, रोजगार के मौके पैदा करने और हुकूमत की फलाही स्कीमों के 100% निफाज को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत के लिए यकसा सिविल कोड का मुसवदा तैयार करने की खातिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की सरबराही में एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। कल महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में उन्होंने ये ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि भारतीय आईन में सरकार की पॉलिसी से मुतालिक रहनुमा उसूल हर रियासत पर जोर देते हैं कि वो यकसां सिविल कोड के निफाज पर गौर करे। ये कमेटी आइंदा 6 माह के अंदर रियासती सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

0: उत्तराखंड में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कई जिलों के लिए शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। इस वार्निंग के तनाजुर में कई जिलों में आज स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद कर दिए गए हैं। मशहद में इमाम रजा बारगाह में ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की तदफीन हुई और इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आयतुल्ला अली खामनाई इस साल 28 फरवरी को अमरीका इसराइल हमलों में हलाक हो गए थे, जिसके बाद मगरबी एशिया में बड़े पैमाने पर महाजाराई का सिलसिला शुरू हो गया। उनके बेटे मुश्तबा खामनाई को इस्लामी जमहूरिया का नया रहबर आला मुकर्रर किया गया था। फीफा आलमी कप में अमरीका के बॉस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें एक दूसरे पर गोल नहीं कर पाई थीं, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और 60वें मिनट और 66वें मिनट में उसके दो खिलाड़ियों ने एक एक गोल किया। मर्दों के क्रिकेट में ब्रिस्टल में चौथे टी20 बैन अलावामी मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 158 रन बनाए थे। भारतीय कप्तान सुरेश अय्यर ने 49 गेंदों में 80 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने 2-2 विकेट हासिल किए। खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए तारीख रकम करेगी। ये लॉर्ड्स के मैदान पर खवातीन का पहला टेस्ट मैच होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत इस तारीखी मुकाबले को यादगार बनाना चाहेगा। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
1: शुक्रिया अर्जुमंत। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोज़नामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, तवानाई और साइबर सिक्योरिटी समेत मुतअद्दिद अहम माहदे। मगरबी एशिया कशीदगी के ताल्लुक से भारत के मौक़िफ को भी उर्दू अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी है, भारत का तहम्मुल और सिफारतकारी पर जोर। दिल्ली में भारत रूस वर्किंग कमेटी की 14वीं मीटिंग से मुतल्लिक खबर को भी अखबारात ने नुमाया तौर पर जगह दी है। रोज़नामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर। नायब सदर जमहूरिया की जानिब से माहिगीरी को फ़रोग देने से मुतल्लिक कौमी प्रोग्राम के आगाज की खबर को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इतफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। और फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए, भजन कलाकार हैं अनुराधा कोटवाल।

ये भजन आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आप सुन रहे हैं अनुराधा पौडवाल को। इसी आवाज में एक और भजन सुनिए।

अभी आप भजन सुन रहे थे। आप भजन अनुराधा पौडवाल से सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक समाचारों को हम अपने जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी तीन देशों की यात्रा के अगले चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचेंगे। राज्य में ओबीसी की वास्तविक स्थिति और स्थानीय निकायों में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए आज से डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रदेश में 33,969 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ, ये पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक। और जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को जीआई टैग मिला, स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार

0: तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी तीन देशों की यात्रा के अगले चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और राजनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने पर व्यापक चर्चा हुई। इससे पहले श्री मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की वास्तविक स्थिति और स्थानीय निकायों में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए आज से डिजिटल सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। 23 जुलाई तक चलने वाले इस राज्यव्यापी सर्वेक्षण के दौरान ओबीसी परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी स्थिति का वास्तविक अध्ययन किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश में लगभग 51,000 प्रगणक नियुक्त किए हैं। वहीं अजमेर में जिला स्तर पर करीब 82 और ब्लॉक स्तर पर 765 नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से सर्वे टीम और प्रगणकों को तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने सभी ओबीसी परिवारों से सर्वेक्षण दल को सटीक और प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है। राज्य सरकार की ओर से महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बकाया बिलों का भुगतान जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। वीबीजी रामजी आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक लेकर इसके संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने सामग्री मद के लंबित सभी बिल भुगतान आगे भेजने के लिए कहा। आयुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक नियोजन बढ़ाने, हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक काम शुरू करने और काम की मांग करने वाले प्रत्येक जॉब कार्डधारी परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों और जिला प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से लागू इन नियमों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण, घर घर कचरा संग्रहण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण, खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर रोक तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। पाली जिले के खिवांदी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण अमर शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा के नाम पर किया गया है। उनके बलिदान दिवस पर आयोजित समारोह में इसकी घोषणा की गई। समारोह में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने भाग लिया। समारोह में शहीद के परिजनों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। गौरतलब है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा का फाइटर जेट पिछले वर्ष चूरू जिले के भाणुदा गांव में क्रैश हो गया था। इस हादसे में वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 33,969 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ है। ये जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक

0: में दी गई। बैठक में बताया गया कि ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.54% अधिक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कर संग्रहण में तकनीक तथा नवाचारों का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष की पहली से अंतिम तिमाही तक राजस्व संग्रहण की गति बनाए रखने को कहा। जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को जीआई टैग मिल गया है। केंद्र सरकार की जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने यह प्रमाण पत्र जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान को प्रदान किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर की मोजड़ी अपनी पारंपरिक कारीगरी, हाथ से की जाने वाली बारीक कढ़ाई, टिकाऊपन और विशिष्ट डिजाइन के लिए देश विदेश में अपनी पहचान रखती है। जीआई टैग मिलने से स्थानीय कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय बाजार में बेहतर पहचान और आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
1: करीब 200 वर्ष पुराने जोधपुरी मोजरी उद्योग का घरेलू बाजार वर्तमान में लगभग 100 करोड़ रुपए का है, जबकि करीब 10 करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीआई टैग मिलने के बाद इसका निर्यात बढ़ेगा और अगले 2 साल में कारोबार दुगना हो सकता है। इसे जोधपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों परिवार लाभान्वित होंगे जो पीढ़ियों से मोजरी निर्माण से जुड़े हुए हैं। जीआई टैग मिलने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिलेगी। इससे फर्जी उत्पादों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। कारीगरों और उत्पादकों को बेहतर कीमत मिलने के साथ ही पारंपरिक कला और शिल्प का सांस्कृतिक संरक्षण भी होगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मोबाइल की लत से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विशेष शोध करेगा। संस्थान लत से प्रभावित लोगों का चयन कर उनकी दिनचर्या, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का 6 महीने तक अध्ययन करेगा। रोग निदान विभाग के अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि शोध का उद्देश्य मोबाइल की लत से होने वाली समस्याओं के लिए प्रभावी आयुर्वेदिक उपचार विकसित करना है।
2: और हमारे जो यूथ है वो भी मोबाइल का प्रति बहुत एडिक्शन ही हो रहा है बहुत से लोगों को, कि वो मोबाइल के बिना रह नहीं पा रहा, क्योंकि मोबाइल में जो कंटेंट जो है उसमें वो बहुत से कंटेंट ऐसे हैं जो उसको नहीं देखने चाहिए। बहुत से हिंसक कंटेंट हैं, बहुत से वल्गरिटी बढ़ाने वाले कंटेंट हैं। तो एक तो कंटेंट वाइज उस पर बच्चों पर ध्यान देना आवश्यक है, उनके पेरेंट्स को, कि बच्चा क्या देख रहा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 3 देशों की यात्रा के अगले चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचेंगे। राज्य में ओबीसी की वास्तविक स्थिति और स्थानीय निकायों में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए आज से डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रदेश में 33,969 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ। ये पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक। और जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को जीआई टैग मिला। स्थानीय कारीगरों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं रणजीत ढाडी।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: मुरमंगल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कलाकार हैं रणजीत ढाडी।

मरुमंगल में अभी आप रणजीत ढाड़ी को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ युगल गीत। दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार असद भोपाली का जन्मदिन है। हिंदी गीतों के गीतकार असद भोपाली ने अपने 40 साल के कैरियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए 400 से अधिक गीत लिखे।

असद भोपाली का जन्म 10 जुलाई 1921 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका वास्तविक नाम असदुल्ला खां था। उनके पिता मुंशी अहमद खान एक जाने माने शिक्षक थे, जिनसे असद को अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा प्राप्त हुई। शायरी में रुचि होने के कारण उन्होंने अपना नाम असद रख लिया।

दोस्तों, गीतकार बनने का सपना लिए असद भोपाली 28 साल की उम्र में मुंबई आ गए। शुरुआत में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने 1949 में अपने फिल्मी करियर में गीतकार के रूप में शुरुआत की। उन्हें बड़ी पहचान मिली बी आर चोपड़ा की फिल्म अफसाना, जो 1991 में आई थी।

अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है हम सब उस्ताद हैं। गीतकार हैं असद भोपाली।

0: ओह, ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या

अपने लंबे कैरियर में असद भोपाली ने सी रामचंद्र, हुसनलाल भगत राम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। बिन फेरे हम तेरे फिल्म में सुनिए मोहम्मद रफ़ी और उषा खन्ना को।

ये फिल्म नगमा इस समय आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आप सुन रहे हैं असद भोपाली के लिखे युगल गीत। अब सुनिए एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म में सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी को।

हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया 1989 के गीत दिल दीवाना बिन सजना के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्मों में अपनी कलम का जादू बिखेरने वाले इस महा

उन शायर का 9 जून 1990 को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था, दिल सूना साज तराना ढूंढेगा मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा।

अभी आप फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। फिल्म संगीत में आप सुन रहे थे कुछ युगल गीत। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गा मेरे मन का। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बुड्ढा मिल गया से। आवाज किशोर कुमार की है।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कटे फटे पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज

0: कर सकते हैं।
1: वाओ, नया लॉट मिलेगा।
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: लीजिए अब सुनिए खस्ते जख्म फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमराही फिल्म का गीत, आवाज़ें मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की हैं। गीत हसरत जयपुरी ने लिखा है और संगीत शंकर जयकिशन का है।

ये फिल्मी नगमे इस समय आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम है गा मेरे मन का। अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे। गीत निदा फाजले ने लिखा है और धुन उषा खन्ना की है।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आंखें से, आवाज लता मंगेशकर की है। गीत साहिर ने लिखा है और धुन तैयार की है रवि ने।

0: रात कभी कभी।
1: अब सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, और फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं।

0: अब सुने मनचली फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।
1: उनका फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी।

गा मेरे मन गा कार्यक्रम की आखिर में सुनिए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं।

श्रोता अभी गा मेरे मन गा कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतमाला।

सभी श्रोताओं को स्मिति का सहस्य नमस्कार। गुजर जाता है एक बार तो फिर लौट कर कहाँ आता है, ये वक्त ही तो है जो याद बन कर बस दिल में रह जाता है। तड़पाता है कभी बहुत, कभी कभी हंसाता भी है। ये जो गुजरा हुआ वक्त है हमें ये बहुत याद आता है। फिलहाल श्रोताओं, हमारे पास अभी बहुत वक्त है कार्यक्रम गीतमाला में आपके भेजे हुए संदेश और आपकी फरमाइश के गीत सुनवाने का, तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। ये पहला संदेश हमें मिला है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मीढ़ा अलका मीढ़ा का, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद का, गांव खोखरावाली से विनोद बारसा, विशाल, विकास रोशनी और शगुन बारसा, कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। ये संदेश है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का। और ये पत्र हमें मिला है शिवपुरी से मोनिका जैन, कोटा से कविता शर्मा और अंबिकापुर से चरणजीत कौर सिंधु का। तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है चांदनी और आवाज़ें लता मंगेशकर और बाबला की है।

श्रोताओं, इस गीत के लिए फरमाइश आई है आप सभी की। चक 15 PSA सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्श पाल जोसन मेलबर्न और रॉबिन सिंह जोसन वेंकपुर और कुलदीप सिंह टेलर की। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये हमारे श्रोता है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। गांव बांडीवाला फाजलिका पंजाब से ओम बागड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बांगड़िया। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। ये फरमाइश है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की। सूरतगढ़ राजस्थान से

भूपेंद्र मिशन, प्रभुजोत मिशन और जानविका की। ये फरमाइश है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से ही हमारे श्रोता है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगला और राजेंद्र सिंह शाह। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, परवीन, नीति, पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। ये श्रोता है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश सनी। और ये श्रोता है हमारे हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। और ये फरमाइश है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू की। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं खुदा गवाह फिल्म से। आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ की है।

श्रोताओं, इस गीत के लिए फरमाइश आई है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा की, चक चौदह PSB से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क, और ये फरमाइश है शेरवानी स्कूल गंज डूडावाड़ा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी और आलिया अंसारी की, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से हमारे श्रोता है रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह, ये फरमाइश है गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम साहरण, मोनिका और मनीष साहरण की, मोहला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर, ये फरमाइश है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शाबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबाना और यश मंसूरी की, ये फरमाइश है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की, बिल्लू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद, चांदनी, विश्वजीत, ये हमारे श्रोता है मंडी के सी सिंहपुर से। लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है बातों बातों में।

श्रोताओं, इस गीत के लिए फरमाइश की है आप सभी ने लखुवाली हेड से मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफ़ीक, महावीर लोहरा, मुकना राम, और ये फरमाइश है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ, अर्चनाताई, हीरामन, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने की। ये फरमाइश है गांव रायन से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया, और ये फरमाइश है बुलढाणा वर्षिंगी महाराष्ट्र से अमोल, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमारे श्रोता है टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज, कालका, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष, दीपल और उर्वशी की। ये फरमाइश है अमरपुरा जालूखाट से जगदीश चंद्र, प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति और राजेंद्र की। गांव बनवाला हनुमंत फाजलिका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और सारा की। ये फरमाइश है नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, और ये फरमाइश है राजकोट से चैमिनी जैन, हेतल जैन और कृष्णा जैन, राकेश जैन की। ये फरमाइश है करणवीर हाउस।

पूछो कैंचिया बठिंडा पंजाब से, परमिंद सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंद्र वरिंद्र, कुलदीप सीमू एकम, तमन और अभिजोत की। ये फरमाइश है दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है साजन, आवाज़ अलका याग्निक की है।

ये फरमाइश करता है अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना, मयंक, तन्वी और जयपाल यादव। बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। ये हमारे श्रोता है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कडवासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव, किरसन, हनुमान सहारण, किडूराम चोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा। ये फरमाइश है रानी झाम और बिट्टू झाम की रानी बाजार बीकानेर से। ये फरमाइश है तहसील भादरा अनूपशहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिर, राघव, मुरारी लाल शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, मदन लाल, फूसारम मेल, महावीर लोहर, अमित कुमार शर्मा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। ये फरमाइश है कवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली की। और ये फरमाइश आई है बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग की। ये फरमाइश है रमेश कुमार चक 6 एम एस आर अनूपगढ़ से, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से। और ये फरमाइश है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और यश प्रयाण वर्मा की। गांव ढाणी से लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान, सोहिल खान, जुनेद खान, मुखराम जी, आरिफ खान, ईयान खान, अशरद खान, अरमान खान। और ये फरमाइश आई है कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी, राजेश, राकेश, ऋषिता की। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी, गुरमीत कौर, मनु। और आप सबकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

ये फरमाइश आई है गंज टूटवाड़ा से मोहम्मद कलीम अंसारी, ज़हीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी की। नई बस्ती गंज टूटवाड़ा से ही ये हमारे श्रोता है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ़, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी। और ये हमारे श्रोता है दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, राजू प्रजापत, चौटाला हरियाणा से। ये श्रोता है सादुल शहर से राम कुमार रेवड़, चंद्रकला रेवड़, और नेहरू चौक पेठंड से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल और बेबी सिया। जालाना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। गांव हीरावाली फाजलिका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन डिंडवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम, किरोड़ी पाल और सुरेंद्र बांधू। और ये हमारे श्रोता है उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचनी, भारती, विनीत और मिथिल। ये श्रोता है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। ग्राम फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। सबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी। गांव चैनपुरा तहसील धोरीमना जिला बालोतरा से जगदीश भारती गोस्वामी, विजय भारती, नरेश

भारती मल्लिता गोस्वामी। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं शक्ति फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की है।

श्रोताओं, अभी आप गीतमाला कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपकी फरमाइश के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपके व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से। ये संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरनाज, अब्बान और अब्बासी परिवार का। चक सांत डी बी एन बांदूवाली ढाणी से टेकचंद चारण, संतोष देवी, सत्यप्रिय, जय सिंह, योगेश्री, रणजीत सिंह सुथार, गुरदेव सिंह और हरनेक सिंह, और इन्हीं के साथ है कृष्णलाल राहड़ एलएनपी 63 से, और केसी सिंहपुर से राजकुमार ठट्टई, कमल ठट्टई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल और ताराचंद दायमा। ये हमारे श्रोता है सिद्धार्थनगर दयारपुर भाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और यशोक येले का। ये फरमाइश आई है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसीन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनब, यशफ और रसीद की। ये फरमाइश है ग्राम हिगड़ी आलोर जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ की। ये फरमाइश है हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी की। ये फरमाइश है गांव सूर्यवाला जिला हनुमानगढ़ से डॉक्टर सतनाम सिंह सावना, जसविंदर जस्सी और सुमन, विजय सुरलकर रतनमाला गौरी और मोताला महाराष्ट्र से। ये फरमाइश आई है जिला खरनौर सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी और रमेश चंद्र वर्मा की। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का की। और ये फरमाइश है किदवई नगर सिंहपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा जुबैर, अंजुमन खान की। लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं बेमिसाल फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

श्रोताओं, ये फरमाइश आई है आप सभी की 19 जीडी गरसाना से गुरतेज, पवनदीप, नूरजोत और हरजोत अलुके की। और ये फरमाइश है शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी की। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। और ये हमारे श्रोता है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवांकर, निर्मला, विशाल और कुमार हेड़ा, सहारनपुरा से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब और व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, श्रीमती संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही की। ये फरमाइश है गांव टोरेवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी की। और ये फरमाइश है अनिल मानसी, गौरव, कविता अरोड़ा की नई दिल्ली मोतीनगर से। ये है नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजलिका से हमारे श्रोता है रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा। ये फरमाइश है जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जयसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति की। सूरतगढ़ से पवन कुमार, लेखराज जी, सुरजीत, रवि, कुंदन। जसपुर उत्तराखंड से ये हमारे श्रोता है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन और माहिरा नूर की। ये फरमाइश है जोरड फार्म हाउस गांव बलहोल नगर से नरेंद्र जोहर, भीमसेन, लोकेश, गौरव, पुनीता और आरवी की। ये फरमाइश है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित की। और ये फरमाइश है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से नाशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नोरीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी की। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: आगे क्या होगा?
1: आगे शादी।
2: फिल्म का नाम है जमाने को दिखाना है और आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफीक की है।

लीजिए श्रोताओं, अगली फरमाइश है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा की। ये फरमाइश है गांव डलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा राजपाला कार्तिक और वेदांश की। ये फरमाइश है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य की। ये फरमाइश है करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, कुगलानी, जगमोहन, प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, सोनिया, कालका, हरिपाल कौर। और ये फरमाइश है सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और इनका समस्त खन्ना परिवार। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद का ये अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और उनके प्रसारण समय की।

अब से कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुगम संगीत का समय रहेगा आज दोपहर 12:30 पर और इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे पंकज उधास की गायी कुछ चुनिंदा गजलें और सुगम संगीत होगा रात्रि 9:15 पर। मिट्टी की खुशबू कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं आज रात्रि 9:30 पर और कार्यक्रम की प्रस्तुति बलविंदर जी की रहेगी। गीतार और गजरो, जी हाँ, ये कार्यक्रम रहेगा चौपाल के अंतर्गत और समय रहेगा शाम 7:00। इसके साथ ही बाजार भाव व मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। खेत खलियान कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे दोपहर 12:50 पर और इस कार्यक्रम का विषय रहेगा फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। प्रस्तुति मुकेश चावरिया की होगी।

ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन का समय रहेगा आज दोपहर 1:05 पर। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज के विषय रहेंगे नारी का अनमोल रूप माँ, मॉनसून में मेकअप करते समय रखे सावधानियाँ, रसोई घर में सावधानियाँ और साथ ही ब्यूटी टिप्स पर भी चर्चा होगी और साथ ही होंगे कुछ चुनिंदा लोकगीत। प्रस्तुति किरण शर्मा की रहेगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं आज दोपहर 2:30 पर, शाम 7:45 पर, रात्रि 10:30 पर और रात्रि 8 बजे होगा एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। सिराइकी का

में रहेगा आज शाम 6:05 पर और युवाणी का समय रहेगा आज शाम 5 बजे। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त स्मिति का सहसे नमस्कार। लीजिए श्रोताओं, पहला गीत आपको सुनवाते हैं जहर फिल्म से। आवाज़ श्रेया घोषाल की है। गीत को लिखा है सईद कादरी ने और संगीत रूप कुमार राठौड़ का है। लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

लीजिए अब सुनते हैं बिल्लू फिल्म से अगला गीत, सोहम और आकृति कक्कड़ की मिलीजुली आवाज़ों में। गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत प्रीतम का है।

लव फिल्म से अभी ये गीत सुना आपने। आवाज़ें एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की थी। गीत को लिखा था मजरू ने और संगीत आनंद मिलन का था। लीजिए श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं दिल चाहता है फिल्म से। आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की है। जावेद अख्तर की शब्द रचना है और धुन शंकर एहसान लॉय की है।

लीजिए अब सुनते हैं मिशन कश्मीर फिल्म से ये गीत। शंकर महादेवन, जसपिंदर और साथियों की आवाज़ों में इस गीत को लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंकज उदास की गायक कुछ चुनिंदा गजलें।

0: सुगम संगीत के अंतर्गत श्रोता अभी पंकज उधास की गायक को चुनिंदा गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेत खलियान, और आज इस कार्यक्रम का विषय है फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आप आज थे भी जानो कि कोई भी पौधा आपको जीवन चक्र बिना पोषक तत्वांग है पूरा को नहीं कर सके, क्योंकि सगड़ा पौधा ने बढ़वार और विकास के लिए कम से कम 17 पोषक तत्वों की जरूरत हो है। अंग माई छूँ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी हवा छूँ ले लेवे, और दूसरा 14 तत्व भूमि छूँ उर्वरका छूँ या खाद छूँ ले लेवे। किसान भाइयों, पौधा का सूक्ष्म तत्व बे तत्व होवे जिका ने पौधा सूक्ष्म मात्रा यानी थोड़ी सी मात्रा में ग्रहण करे, जहाँ बोरोन आयरन मैंगनीज कॉपर जिंक क्लोरीन और निकिल। किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरक माटी में पोषक तत्वों का मुख्य भंडार हुए। किसान भाइयों, भारत में खाद्यान्न उत्पादन का सागे सूक्ष्म तत्वीय उर्वरकों का प्रयोग भी लगातार बढ़ रहे है। कई वैज्ञानिकों द्वारा जगह अनुसंधान किया गया है, बंगे हिसाब से अपनी भारतीय माटी में जिंक आयरन मैंगनीज तांबा बोरोन की क्रम के हिसाब से 49, 12, 4, 3 और 33% की कमी है। किसान भाइयों, धीरे धीरे आ कमी बढ़ती जान लग रही है। आ तत्वों में भी अपनी माटी में जस्ता की कमी सबसे ज़्यादा देखी गई है। इनको मोटो सो कारण वही है कि कई साल से माटी में सघन और लगातार खेती होने से माटी में उपस्थित जरूरी पोषक तत्व धीरे धीरे खत्म होने लग रही है। आपने अठे किसान भाई लोग जमीन ने आराम करण भी कौन देवे, इन वास्ते ही तो अठे की भूमि में अब अनुपजाऊ की श्रेणी में आवन लाग रही है। बार बार कृषि वैज्ञानिक आई बात के वह कि फसल चक्र अपनाना जरूरी है। भूमि ने 2-4 साल में एक बार खाली जरूर रखनी चाहिए, इंशु भूमि ने आराम मिले और भूमि ज़्यादा उपजाऊ बने। अब बात करा कि सूक्ष्म तत्व होवे किस है, तो भाई लोगों, लोहा मैंगनी जस्ता तांबा बोरोन क्लोरीन निकिल ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हुए। आ तत्वों की पौधा ने बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़े, पर माटी में आ तत्वों को होनो भी जरूरी है। इन वास्ते आने सूक्ष्म पोषक तत्व या गौण तत्व के वहाँ, लेकिन ये तत्व अपनी माटी का मुख्य पोषक तत्वों की तरिया बहुत महत्व रख है। सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसा रासायनिक तत्व है किसान भाइयों, जका की पौधा ने जीवित रखने और पौधे की बढ़वार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत पड़े। पौधे की उपापचय क्रिया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होवे। जका पौधा का ऊतक नष्ट हो जाए वाने सुधार करने को काम ये सूक्ष्म पोषक तत्व ही करे। भाई लोगों, अब बात करा जे फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो जाए तो बिंगा लक्षण किसा होवे और आपने के उपाय बिंगो करनो चाहिए। जे अपनी फसल में बोरोन की कमी है तो ऊपर की पत्तियां को रंग हल्को हो जाए। शुरुआत में पत्ती का आधार को रंग हल्को होवे और आखिर में ऊपर की पत्तियां सूख जाए। इनके अलावा नुई पत्तियां गुच्छा के रूप में लागनी शुरू हो जाए। इनके लक्षण में पौधे का डंठल तनों और फल फटना शुरू हो जाए। इनके वास्ते आपने बोरोन सूक्ष्म तत्व की कमी दूर करने का उपाय करना चाहिए। किसान भाइयों, जस्ता यानी जिंक की आवश्यकता पौधे में इंडोल एसिटिक अम्ल के निर्माण वास्ते जरूरी हो है, क्योंकि जिंक पौधे में अलग अलग धात्विक एंजाइमों को मुख्य घटक हो है। वो पौधे की विभिन्न उपापचक क्रियाओं के वास्ते जरूरी है। जिंक की कमी का भी कई लक्षण हो है, जी पत्तियां को अंतःशीरीय पर्ण हरिमा निमा यानी पत्ती को रंग हल्को हो जाए, लेकिन शिरावां से लागेड़ो

भाग हरे रेवे, पत्तियां छोटी और मुड़ेड़ी दिखाई देने लाग जाए। सब्जी वाली फसलों में पत्तियां को रंग असामान्य दिखाई देवे, पत्तियां छोटी हो जाए और चित्तीदार असाधारण मुड़ेड़ी और रंगहीन दिखाई देवन लाग जाए। इनकी कमी दूर करने वास्ते जस्ता की विभिन्न अकार्बनिक स्रोता में जिंक सल्फेट, हेप्टा हाइड्रेट, जिकागामा 20-21% जस्ता की मात्रा होवे और एक बढ़िया स्रोत है। किसान भाइयों वो आसानी से उपलब्ध भी हो जाए, इनके अलावा वो पानी में घुलनशील भी होवे। इनका सागे सागे मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट 33% दोनों ही समान रूप से जिंक की कमी वाली माटी में प्रयोग आप कर सका। इनके अलावा गोबर की खाद 10-15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भूमि में मिला देवा तो भी इनकी पूर्ति आप कर सका। यही लो तत्व भी भूमि और फसल के वास्ते बहुत जरूरी है। किसान भाइयों लो तत्व हरित लवक के निर्माण और रख रखाव के लिए आवश्यक है। लो तत्व प्रोटीन की उपापचय की क्रिया में मुख्य सहायक हुए। इनकी कमी गए लक्षणा की बात करा तो नई पत्तियां पर अंतःशीरीय क्लोरोसिस दिखाई देने लग जाए और सहसुपेली पत्तियां जबकि नई पत्तियां हैं वे सफ़ेद हो जाए। लो तत्व भी मैग्नीज की तरिया समान पर्णहरिम उत्पादन में भाग लिए। लो की कमी सामान्य क्षारीय और ज़्यादा चूना युक्त माटी में दिखाई देवे। इन वास्ते पौधा में 1-2% फेरस सल्फेट को बिना उदासीनीकरण वाले विलयन को छिड़काव करने पर इनकी कमी आप दूर कर सका। अब मैग्नीज तत्व की बात करें तो किसान भाइयों मैग्नीज पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज के बढ़ने में सहायक होवे। इनकी कमी का लक्षण आपने फसल में नई पत्तियां की शिरावा में क्लोरोसिस दिखाई देने लग जाए। शिरावा से लगे भाग हरे होवे जको बाद में सुरमई रंग हो जाए। इनकी कमी दूर करने वास्ते आपने नज़दीकी विशेषज्ञ से जानकारी हासिल करनी है। इन तरह ही कॉपर क्लोरीन की कमी भी फसल ने और माटी ने खराब कर सके, आंगी पूर्ति भी टाइम टाइम पर करनी चाहिए। इनके अलावा आप कंपोस्ट खाद, केंचुआ खाद, हरी खाद और फसल चक्र को भी ध्यान रखना है। किसान भाइयों जैविक खादांगो आप ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना जरूरी है, जिया गोबर की खाद। भाई लोगों घरेलू पशु जिया गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आंगे मलमूत्र गोबर से आ खाद आप तैयार कर सका। भाई लोगों गोबर की खाद में 0.5-1% नत्रजन, 0.4-0.8% फास्फोरस, 0.5-1.3% तक पोटाश, 40 PPM जस्तो, 2.8 PPM तांबो और यहाँ ही लोहा मैंगनीज जिसा तत्व तो भरपूर मात्रा में गोबर की खाद में मौजूद होवे। जे किसान भाइयों आप खेत में गोबर की खाद को प्रयोग करा तो इंशु माटी की भौतिक और रासायनिक और जैविक संरचना में सुधार कर सका। अब बात करा आप कंपोस्ट खाद के बारे में। कंपोस्ट खाद तैयार करने खातर खरपतवार, फसल अवशेष, पशुआंगो बच्चेड़ो चारों, पेड़ पौधों की पत्तियां, कूड़ो कचरो और दूसरों कार्बनिक कचरो जका ने सड़ा के कंपोस्ट खाद तैयार कर सका। इनमें 0.4-0.8% तक नत्रजन, 0.3-0.6% तक फास्फोरस और 0.7-1% तक पोटाश होवे। किसान भाइयों कंपोस्ट खाद आपने जितिक प्रति बीघा अपना कृषि वैज्ञानिक बतावे बिंगा हिसाब से खेत में बुवाई से 3-4 सप्ताह पहली नागे माटी में छित्रियाँ मिला देनी चाहिए ताकि अपनी भूमि की उर्वरा ताकत भी बढ़िया बनी रहे और टेम सारू नाखेड़ी खाद छूँ अपनी फसल भी बढ़िया होवे। इन वास्ते भाई लोगों खेत में जीवांशों की मात्रा बनाए रखने खातर आप कंपोस्ट खाद तैयार करके खेत में जरूर डालनी चाहिए। इनके अलावा भाई लोगों जे आप हरी खाद खेत में ही तैयार करके फिर अच्छी तरह खेत की जुताई कर देशा तो माटी की अल्टा पलटी छूँ खाद बढ़िया तरीका से सड़गे तैयार हो जाएगी। हरी खाद तैयार करने में ज़्यादा खेचड़ भी कौन करनी पड़े और ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी कौन पड़े। किसान भाइयों फसल चक्र में हरी खाद की बीजांत भी आपने अपनानी चाहिए। इनमें आप ढेंचो, सनई, ग्वार, चना अन्य मिला के बीजांत कर देवा और बीज बढ़ने से पहली 1-2 पानी लगाना है। इनके बाद में जमीन से जब पौधा ऊपर तक आ जाए यानी जमीन ने जब अच्छी तरह ढक लेवे तो ट्रैक्टर की सहायता से तोई, हल या रूटावेटर से अच्छी तरह जुताई कर देवा ताकि हरी खाद का अवशेष माटी में बढ़िया तरीका से मिल जावे। इन तरह से आप अपने खेत में फसल चक्र प्रणांता थका हरी खाद तैयार कर सका और रासायनिक खादा में होवन वालों फालतू खर्चों आप बचा सका। इनके अलावा किसान भाइयों अपनी जमीन

0: मैं रासायनिक उर्वरक ना नागे, गोबर की आसी सड़ी गली खाद ना खा, कंपोस्ट खाद भी तैयार करके खेत में नाख सका, वर्मी कंपोस्ट खाद भी तैयार करके इस्तेमाल कर सका, ताकि जमीन की ताकत लंबे टाइम तक बनी रहे। जिसो अपनी फसल में अच्छी उर्वरा शक्ति मिलेगी, जमीन उपजाऊ बनेगी, अच्छी पैदावार और अच्छी आमदन होगी। पर किसान भाइयों, पानी धानी को भी पूरा ध्यान रखना है, कम पानी वाली फसलों को ही चुनाव करना है, ताकि आप खेती वाले पानी की बचत कर सका। इंगे सागे सागे आप फंवारा विधि और बूंद बूंद सिंचाई विधि को इस्तेमाल भी कर सका, जिसू जरूरत के हिसाब से फसल ने पानी मिलेगो और पानी की बचत भी हो सी। आ सगली बातों को आप जो ध्यान रखा तो आप अच्छा उत्पादन अच्छी पैदावार ले सका। पर अब मैं खेत का नहीं चालू सा, राम राम सा, राम राम।
1: श्रोता अभी खेत कल्याण कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कृषि तथा उद्यानिकी विभाग ने 30 से अधिक एमओयू पर आज जयपुर में हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं और एग्री टेक कंपनियों के साथ किए गए हैं। विभाग के अनुसार इन समझौतों से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। विभिन्न संस्थाएं अपनी तकनीकी जानकारी और अनुभव के आधार पर विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी। इसके तहत प्राकृतिक और जैविक खेती, जल संरक्षण, आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग, किसान प्रशिक्षण, डिजिटल कृषि और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों तक योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक स्थिति और स्थानीय निकायों में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए आज से डिजिटल सर्वेक्षण किया जा रहा है। 23 जुलाई तक चलने वाले इस राज्यव्यापी सर्वेक्षण के दौरान ओबीसी परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी स्थिति का वास्तविक अध्ययन किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश में लगभग 51,000 प्रगणक नियुक्त किए हैं। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से सर्वे टीम और प्रगणकों को तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी के प्रारूप पर आम जन के सुझाव लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर जनसुनवाई की जा रही है। इन जनसुनवाइयों के माध्यम से विभिन्न वर्गों से यूसीसी पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इसी कड़ी में आज जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जयपुर संभाग स्तरीय जनसुनवाई की शुरुआत हुई। 2 दिन की इस जनसुनवाई में पहले दिन विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और अधिवक्ताओं से सुझाव मांगे जा रहे हैं। वहीं कल आमजन अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। उधर भरतपुर में भी संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही इस बैठक में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग जिलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। सबसे अधिक 56 मिलीमीटर बारिश अजमेर जिले के केकड़ी में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बारां के अंता, अलवर के बनसूर तथा चूरू के तारानगर रेणी क्षेत्र में भी अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्वी भागों में छुटपुट स्थानों पर बरसात की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार मॉनसून के कमजोर पड़ने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक ज्यादातर स्थानों पर मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक

0: राष्ट्रीय कार्यशाला भी रखी गई है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और इसके समाधान के लिए आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नया केंद्र अनुसंधान, नवाचार, क्षमता निर्माण और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन सुणनाळी सगळी भेणाने भाई केणांगा हिवडायसू मोकळा मोकळा राम राम। बहनों, आज मैं फेर लेर आई हूँ थारो आपगो प्रोग्राम घर आंगन। तो आपां बात करा आज आपणी यानी कि नारी की। तो देखो बहनों, नारी का बहुत सारा रूप होवे। कदी एक नारी है जी की देखो बेटी के रूप में जीवन लेवे, और बेटी के बाद बाद देखो बहन भी बने, और बुआ मौसी चाची ताई नानी दादी सब का रूप लेवे। पर अब मैं जिको रूप सबसे अनमोल मान्यो गयो है नी, वो है एक माँ गो रूप। और देखो बहनों, माँ गो जिया रूप है बी खातर की है कै चंद पंक्तियाँ हैं जिकी मैं थाने सुनाऊँ। तो देखो, कै दीपक बाती तेल है माँ ही है उजियारी, कै दीपक बाती तेल है माँ ही है उजियारी, बिजली बादल बूंद माँ माँ बरखा गी धार, नदियाँ पानी प्यास है माँ तृप्ति अशेष, कै नदियाँ पानी प्यास है माँ तृप्ति अशेष, भक्त भजन माँ भगती है माँ भगवान गो भेष, पंछी पर परवाज माँ माँ नभ गो विस्तार, जग जननी माँ जीवनी माँ जीवन गो सार, कै क्यारी कोंपल पंखुड़ी कोमल कुसुम अनूप, माँ माटी निर्माणगी माँ ममता गो कूप, कागज कलम दवात माँ माँ कविता माँ गीत, माँ सुर सरगम साज है माँ शाश्वत संगीत। तो बहनों देखो, कै माँ शब्द कितु ही फूटरो लागे। बहनों, ई जुग में मावड़ी जिया देखो कोई को ले सके, क्योंकि माँ बोलिया की है कि मुँह बरीजे। जद भी कोई चोट लागे नी तो देखो माँ ही याद आवे, क्योंकि माँ गो इवड़ो हमेशा आपके टाबर गए सागे जुड़ेड़ो रे वे। जद कदी भी आपने लाग जाए तो ओ रे माँ ए इं निकल है नी, और कहीं तो कौन निकला अपने मुँह है नी, क्योंकि माँ अपने सागे जुड़ेड़ी है। माँ माँ की है कि इसी मिनक

0: हुए जिकी खुद ही के है ललकार गे खुद ही रोए। कई बार टाबरिया ने रोला भी कर देवे और फिर के बिन दुख हुए तो बिन गला लगा रोन लाग जाए है नी। और देखो कह माँ तो माँ ही हुए जन्म देन स्यू ले गए जवानी जब तक बा जीवती रहे वे हमेशा आप गए टाबरों की फिक्र रखे चाहे बुढ़ी तकात हो जिन तो भी बिना आप गए टाबरों की फिक्र रहे वे भी कद सी बेटो आवेगो कद सी कौन आवेगो है नी। भले सारा सोचो पर माँ कौन सो है बिना डीक रहे वे आप गए टाबरिया की भी हाँ कद सी बो आवे अरे कद सी फिर बिना जिन्ना तई आप हाथों से रोटी नहीं गल है जिन्ना तई माँ गो जिसोरो कौन हो। देखो बहनों पूत भले ही कपूत हो जाए पण की है माता कदी कुमाता को नहीं हुए। आजकल देखो ये जिका वृद्धाश्रम बन रहा है नी एक कपूत पणेगी तो पहचान है नी। और देखो माँ गो काल जो कदी कठोर कौन पढ़ो जद स्यों परणीज गे आवे बा जद स्यों बस पढ़े बैठे ताई की है कि माँ हमेशा आप गए टाबरा खातर आप गए परिवार खातर आपको शरीर गाड़ती रहे बिंगे ऐसे में ना ही तो देखो कोई छुट्टी हुए और ना ही कोई तनख्वाह हुए फिर भी रात दिन एक करके रख है खोर सो निवेड़ खातर की है कि एक दिन इश्यू आवे कि माँ बिना बताई दुनियादारी इश्यू जामती रहे जेकि कद आप गए बाप की लाडली और परी का आने वाली माँ आप गए सागिड़े घर ने परिवार ने छोड़ गए के है कि एक अनजान परिवार को एक अनजान मिनख घर संवारण खातर खुद की खुशियां और इच्छावां ने कालजे में दबाई रख है सिर्फ रोटी सट्टे। वो एक बात पूछूं थाने भगवान माँ ने बनाण बिन कदे भूल क्यों जाए जे अच्छो घर परिवार टाबर टिक्कर मिल जाए तो जिंदगी सोरी निकल जाए भी माँ की। सिर्फ परिवार ने संभालती संभालती एक दिन की है कह बर्फ गए बांधती बा खुरजे और एक दिन ईसो आवे कह की भी कोल लद है और माँ बोलन को हक और ना ही बा माँ बस पड़ी दिस है माँ आली मांचली और माँ का बर्तन और माँ की बा बाखड़ पर माँ को नहीं दिखे।
1: पीएम जय।

बहनों के मारी ममता गंगा जल से निर्मल पावन प्यार के मागी ममता गंगा जल से निर्मल पावन प्यार। जिन घर मागी इज्जत होवे ओ घर बने संस्कार। तो बहनों देखो, जठे भी माँ बाप की इज्जत करी जानी भी घर में संस्कार जीमता रेवे, है नी। क्योंकि देखो कही जानी के आपा जिकी अपने टाबर की पहली पाठशाला होवे नी, बाबिंगो घर होवे और पहलो गुरु माँ होवे। तो देखो माँ तो बहुत की सिखावे, पर आजकल का टाबरिया देखो सीखे कट्ठा है नी। आजकल सीखे भी तो कौन है, पहला आली सी बातें भी कौन रही। पहला देखो दादी नानी होती और होती तो बे के है टाबरंग कन्ने बैठी रहती, टाबर बिन सार दिन घेरे बैठा रहता है नी। तो माऊ आ कहानी सुना दे, बातचीत सुना दे, ओ सुना दे, वो सुना दे, ओ बना दे, वो बना दे, नहीं सार दिन टाबरिया के है कि दादी नानी बाहर करी रहता। पर आजकल के है, आजकल तो वे जिया कोई फोन दिख गयो किंग घर में किंग करने, क्योंकि टाबरिया किन तो किसा फोन हुआ है नी। पर जे किंग ने फोन दिख गयो तो टाबरिया तो बिंग बाहर कर माखियाल दे मंडरान लाग जाए भी। हाँ पापो के देखन लाग रही है, मम्मी के देखन लाग रही है, भाई के देखन लाग रहे है, भी बंग बाहर कर मंडरानता रहे, भले कोई काम की चीज हुआ बंग है चाहे नहीं हुआ है नी। पहला देखो कितना अच्छा संस्कार होता, दादी नानी कहानियां सुनाती हैं और बाखण में सारा बडेरा बैठ के बेड़ा हो गए बातें करता, तो अच्छी अच्छी बातें टाबरंग मगज में जानती। तो भी सुन की है कै संस्कारांगो के है बंग माँ वसों। तो पर आजकल की है, आजकल तो इन फोनडे में सो की देख बो करे, भले की काम की चीज हुए कि ना हुए बात है माँ की। तो माँ अपने खातर कितो की करे नी, तो अपना भी फर्ज बने, तो आपनों भी फर्ज बने कि आपां भी की है कि बिन की न की बेस में की न की प्यार भी न भी पर लुटावा, है नी। आजकल की है कि सारा के दिमाग के टेम कोनी टेम कोनी, जी आपां माँ की ने भी आगे कई देर बैठ जावा नी, ज़्यादा ज़्यादा के 10 मिनट भी जी माँ ने दे दिया नी, तो माँ की है कि खुश हो जाए, बिंगो मन खुश हो जाए भी। हाँ आज मेरे बेटो आज मेरी बेटी मेरे किन बैठे है नी। आपन की है जना तय अपना माँ बाप जीमता है बेणो, आपा ने फोन कर ही लेना चाहिए। बेटियां जे देखो बारे बैठी है, आप गए सासरे बैठी है, तो के है कि देखो इस संसार में किंग जीवन को कोई भरोसा कोनी। तो अपन चीज है कि अपा जिया आजकल देखो फोन है, ये फोन काम का भी बहुत है, इयां कोनी भी हाँ वो खराब भी चीज है। खराब तो देखो आप पर लेन गए किया लेन लाग रहे हैं पानी बी के हिसाब में उपयोग करने लाग रहे बी पर है नहीं, तो वो बीजा ही काम को है। पहला की है कि सासरी में बैठी छोरी डीक बोक करती है नी, कितना कितना साल हो जानता, कितना कितना महीना टिप जानता।

है बिन सुद्धि कोनी होती, बस सोच बुक करती घरे मेरे माऊ बाबू की है नी। पर आजकल कितनी सुविधा हो गई है नी, पहला तो देखो बुतार वाला फोन होता तो सिर्फ बात बात होती, आजकल तो देखो आप अपने माऊ बाबा ने इं जिया वीडियो कॉल कर लिया नी तो इं लगता नेड़े ही बैठे हुए सामने ही बैठे अपने है नी, किड्डे जी सोर वाली बात हो जाए मिले वर्गो काम हो जाए। अरे जे बीमार हुए कोई और हुए तो अपन के थोड़ो मिलने चाहिए बहु बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखो कोई सांग सांग भरोसा कौन नहीं हुआ कद के हो जाए तो की है। मैं तो सारी बहना नहीं है कहना चाहूँ बिजना तय अपना सांस चल रहा है तो माँ बाप खाते थोड़ा टेम काट के अपन बात कर लेनी चाहिए। और जिका नौजवान बहना है ठीक है बेटी है बने भी चाहिए भी वे पास रेन लाग रहे है जी बंग माँ को फोन आन लाग रही है बाप को फोन आन लाग रही है तो कितों भी काम हों तो है नहीं तो पहला बांस दो मिनट बात कर लियो तो बारो भी की है कि जिसोर हो जी, क्योंकि देखो माँ बाप सदा नहीं रहना इन जग में है भी बाद में आप बांगी आवाज़ सुनने खातर तरस जाएंगे इसो भी टेम आवे, पर जना तई बेजीवता है नहीं जना तई आप बांस आप गमन की बात कर ही लेनी चाहिए। तो बहनों बातें तो और भी कर, आओ सुनाओ प्यारो सो गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बेनो थे सुनन लाग रहे हो थारो आप गो कार्यक्रम घर आंगन और मैं हूँ थारी भाई किरना। तो देखो बहनों, अभी आप रसोई की बात करी तो अब आप बात करा के बारिश गए ओ टेम है, तो इन टेम में आपने खान पीन में के सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो देखो बहनों, बरसात के टेम में के है के नमी हो जाए और कई बार आसे पासे गंदगी भी कारण के है के पेट छू के है जुड़ेड़ी बीमारियों को खतरो ज़्यादा हो जाए हैं। तो इसे में के है के आपने ताजा और साफ और गर्म खानों के है जरूर खानो चाहिए। और खुले में बिकन वाली जी चाट है, फल है और जी पानी पतासा है नी, और पहला वो जी को बासी भोजन है या ठंडी चीज़ें है नी, बहने खाण छू पीण छू आपने बचनो चाहिए। कई बार की है कि आपने कोई बाजार बजूर जावा, आजकल तो देखो गाँव में भी बाजार वालों सो सिस्टम हो रहा है नी, कोई गोलगप्पा वालों है, कोई बर्गर वालों है, कोई की है, कोई की है। तो की है कि कई भेड़ा को जी करजे भी हाँ बो जावा टाबरिया भेड़ा क्यों टाबरी भी किया है कि भाजे जावे कि बुखार आवा। तो आपने किया है भी मायतगा आत्मा हुए टाबरियान के सही तरीके गई आपने शिक्षा देनी है, तो आपने भी पर रोक लगानी चाहिए और कहना चाहिए भी आ चीज़ की है अपने स्वास्थ्य खातर हानिकारक है। और आपने आपने और टाबरिया ने किया है कि बाहर के खाना खाने से बचना चाहिए इन टाइम में, क्योंकि देखो नमी के कारण बैक्टीरिया है कि

कीटाणु है, बिबूला पनपन लाग जाए, और भी कारण के है कि अपने पेट संबंधी की बीमारियां भी ज्यादा हो जाए, कई बार पेट दुखने की समस्या, या फिर देखो कई अंग दस्त लाग जाए, और कई प्रकार की समस्या, उल्टी अल्टी इसी चीजें होने लाग जाए। तो इन वास्ते के है कि आपने बाहर की चीजें खाने से बचना चाहिए, और गरीबी बहनों जन भी अपा खाणो खावा नहीं तो वो अच्छी तरह के है कि पकेड़ो और अच्छी तरह ताजो खाणो खाना चाहिए। इं कौन भी रात की रोटी पड़ी है, बीबू गर्मी को लारे टे मुझे को मीनो भी आपा रात ने खीचड़ो दलियो बना के रख देता, राबड़ी रख देता, पी लेता। अब की है कि ठंडी चीजा से आपा ने परहेज रखना चाहिए, नहीं तो गले संबंधित बीमारी, नाक से संबंधित जुकाम जुकूम खांसी, ये चीजा की है प्रभावी हो जाए इन टेम में। और देखो इन टेम में जो भोजन ने आपा की है ढक के भी रखना चाहिए, क्योंकि मच्छर है माखी है बे चीजा बैठे नहीं तो बे देखो बारे बारे भी बैठेड़ी हुए गंदगी पर, और फिर भी आ गया अपने खाने पर बैठे तो भी चूंकि है कि आपने बीमारी होने को जिसको खतरो है वो बढ़ जावे। और इन अलावा जियाँ पत्तेदार सब्जियां है नी बे जल्दी खराब हो जाए, तो बहाने भी की है कि आपने इन टाइम में नहीं खानी चाहिए, नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि देखो कीड़ा अंग में ही पनपे तो वो अपने भोजन के द्वारा अपने पेट में ही जावे, और भी अपने पेट की समस्या बढ़ जावे। इन अलावा देखो आपने जियाँ तलियो बुनियो खानो है नी बोला मसालेदार जिको खानो है वो भी नहीं खानो चाहिए इन टाइम में। टाबरियां को और बडेरा को आपने विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसे मौसम में की है कभी जल्दी बीमार हो जाए, और मान दे जी अभी आप बात करी कि उल्टी दस्त पेट दर्द बुखार इसा लक्षण दिखन लाग जाए है नी, जो आपने घर में इस लक्षण है कि मई टाबरा में वडेरा में, तो आपने की है डॉक्टर जी को संपर्क करना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए है नी। और इन अलावा देखो बहनों आपने की है ईमानसून में स्वच्छता रखनी चाहिए और सावधानी अपनानी चाहिए, ताकि आप की है स्वस्थ बने रहें और इस मौसम को आनंद ले सका। बातें तो वाले और भी कर सा, आओ सुनाओ प्यारो सो गीत।

बहनो जी तो करो थार छू और बात करूं, पर के है के स्टूडियो की घड़ी अब इन बात की इजाजत कौन दे। तो अब भाई किरना ने दो आज्ञा और आप गो रखो ध्यान। सगड़ी बहना ने किरना भाई की राम राम।

0: FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
0: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध

0: आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमरीका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमरीका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमरीका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने शत प्रतिशत

0: डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहाँ कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने

0: आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत आपको सुनवाते हैं पाकीज़ा फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की है। कैफी आज़मी की शब्द रचनाएं और संगीत गुलाम मोहम्मद का है।

लीजिए अब सुनते हैं संगम फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

लीजिए अब सुनते हैं परिचय फिल्म से ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की मिलीजुली आवाजों में। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत आरडी बर्मन का है।

संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

लीजिए फिल्म संगीत का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं सफर फिल्म से। आवाज मुकेश की है, गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीत में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। केवल न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर और एफएम पर प्रसारण चालू रहेगा, मीडियम वेव पर रखरखाव के चलते प्रसारण बंद रहेगा।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।

जाने वाले अब तक के पहले टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का अपना तारीखी और अहम सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया है। उनके इस दौरे ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक तवील मुद्दती बुनियाद फ्राहम की है। इस दौरे के दौरान सिफारती इकतसादी और दिफाई ताउन को नई बुलंदियों तक पहुंचाया गया। इकतसादी शोबे में पेशरफ्त का आगाज भारत ऑस्ट्रेलिया सीओज फोरम से हुआ, जहां कारोबारी रहनुमाओं ने बताया कि 2022 के इकतसादी ताउन और तजारती मुआहदे ECTA के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तजारत में 55% का इजाफा हुआ। वजीर आजम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारत को मजीद फरोग देने के लिए जामे इकतसादी ताउन मुआहदा पर मुजाकरात को तेज करने पर इत्तेफाक किया। माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के शोबे में भी एक अहम संग मील हासिल किया गया। दोनों मुल्कों ने इंतजामी मुआहदे को हतमी शक्ल दी, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को तवील मुद्दती यूरेनियम की फराहमी मुमकिन होगी। इसके साथ ही 2014 के बुनियादी फ्रेमवर्क को भी दोबारा फाल किया गया। दोनों ममालिक ने दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दिफा और सलामती ताउन पर मुश्तरका एलामिया और समंदरी सलामती ताउन के रोड मैप को अपनाया, ताकि आज़ाद, खुले और महफूज भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाया जा सके। वजीर आजम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपोजिशन के रहनुमा एंगस टेलर से मुलाकात की, जिन्होंने मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा दोस्त करार दिया और बैन अक्वामी शमसी इत्तेहाद और पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की बरामद जैसे इकदाम की हिमायत की। दौरे का अख्तिताम मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के एक अहम प्रोग्राम से हुआ, जहां दोनों रहनुमाओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेल कूद से मुतालिक इश्तराक के खाके का भी बाकायदा आगाज किया, जिससे खेल कूद और बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत, आवाम और वजीर आजम एंथनी अल्बानीज का शानदार मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस दौरे ने भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी को मजीद मजबूत किया है और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए मौके पैदा हुए हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि इस दौरे से पैदा होने वाली मुस्बत रफ्तार दोनों मुल्कों के लिए सूदमंद साबित होगी और आलमी बिरादरी के लिए भी मुस्बत रोल अदा करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचे, जहां न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका बाजाबता तौर पर शानदार इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ऑकलैंड हवाई अड्डे पर वजीर आजम का इस्तकबाल करने के लिए खुद पहुंचे। वजीर आजम मोदी को हवाई अड्डे के रनवे पर बाजाबता तौर पर इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड की मुसल्ह फौज के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने नशीली अशिया के 1945 के जाब्तों में तरमीम की है, जिसका मकसद ज्यादा अल्कोहल पर मुश्तमिल क्राय को दबाने और लोगों के खिलाफ जुर्म ज्यादती के लिए जंग, दहशतगर्दी, ईजारसानी और सियासी जबर का वसीला करार दिया है। महाजाराई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद के बारे में अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल के खुले मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि इस तरह का तशद्दुद बेरोक टोक जारी है और भारत इस तरह की वहशियाना हरकतों की सख्त मरम्मत करता है। अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में तस्दीक शुदा मामलात में नुमाया इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि इज्तिमाही कार्रवाई की फौरी जरूरत है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर ने मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले यानी मकानात की फहरिस्त साजी का अमल 100% डिजिटल डेटा जमा करने के साथ कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। एक माह तक जारी रहने वाली इस मुहिम के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स HLBs को शामिल किया गया। अब अगले मरहले की तैयारियां शुरू होंगी, जिनमें आइंदा सितंबर में बर्फ से ढके इलाकों में आबादी की गिनती और अक्टूबर तक जिली मरदमशुमारी किताबची की तैयारी शामिल है। इस दौरान नकल मकानी करने वाले और दूरदराज इलाकों में रहने वाले अफराद तक रसाई पर खसूसी तवज्जो दी गई, ताकि कोई भी घर मरदमशुमारी से बाहर ना रहे। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर पहला जोशी ने आज कहा कि साफ सुथरी तवानाई की मुल्क की बिजली की मांग का 50% से ज्यादा हिस्सा पूरा कर दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब जोशी ने कहा कि काबिल तजदीद वसाइल से इस महीने की 6 तारीख को बिजली की सप्लाई का 52% हिस्सा हासिल हुआ है। वजीर मौसूफ ने इसे भारत के माहौल के लिए साजगार

0: रहा होगा, तो किस किस्म के प्रोग्राम आप रेडियो पे सुना करते थे?
1: ये हमारा जुनून रेडियो से तकरीबन 1952 से शुरू हुआ, जब उर्दू मजलिस हम सुना करते थे
0: जी।
1: आधे घंटे का प्रोग्राम होता था और इसमें तीन हिस्से होते थे उसके, एक अदबी होता था, एक शायराना होता था और एक म्यूजिकल होता था जिसमें कव्वाली वगैरह सुना, अक्सर हबीब पेंटर की कव्वाली, शंकर शंभू की कव्वाली उसमें होती थी। उसके अलावा सिराज अनवर साहब के लिखे हुए छोटे छोटे खाके उस पर नशर होते थे, जिसमें दिल्ली की टकसाली जबान, क्योंकि सिराज अनवर साहब जामा मस्जिद से ताल्लुक़ रखते थे, जामा मस्जिद के इलाके से, उनकी वहाँ फोटोग्राफी की दुकान थी, तो वो वहाँ दिल्ली के कलखनदारों की बातचीत छुड़ा करते थे।
0: तो सामिन, सरफराज साहब से हम बातचीत कर रहे हैं और सरफराज साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो रेडियो पे तो कम उनकी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन रेडियो प्रोडक्शन के हवाले से जब भी हम कोई प्रोग्राम सुनते हैं तो उसमें प्रोडक्शन का जो पार्ट है, जो हम प्रोग्राम तैयार करते हैं, उसमें सरफराज साहब का अहम रोल रहा है। और सरफराज साहब उर्दू सर्विस से वाबस्ता रहे, उर्दू मजलिस से वाबस्ता रहे और रेडियो की एक जानी मानी पहचानी, जो कह सकते हैं हम कि ऐसी शख्सियत हैं जिनको हर जो शख्स रेडियो प्रोडक्शन के हवाले से जानता है। और आज भी आप रिटायर हुए करीब करीब आपको 20 साल हो गए हैं और उसके बाद भी आज भी आप एक्टिव हैं और मास मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने हर दौर देखा है। आपने बताया कि बचपन में आपने रेडियो सुना और उर्दू मजलिस के प्रोग्राम सुने, उसके बाद फिर आप रेडियो में आए, तो रेडियो में किस तरीके से जब आप आए और यहाँ पे सर्विस आपने शुरू की, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से आपको पता चला कि रेडियो में भी सर्विस की जा सकती है।
1: असल में क्या था कि मुझे बताया गया था कि इस तरह से उर्दू सर्विस में जैसे खाली है, आप दरख्वास्त दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे कॉल आ गई, रिटन टेस्ट हुआ और इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया उर्दू सर्विस के लिए। उस वक्त मैं स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर यहाँ पर रखा गया था। उस ज़माने में एक एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और फिर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब मिसेज इंदिरा गांधी ने INB संभाला तो उन्होंने ये सारे जितने भी स्टाफ आर्टिस्ट थे उन सबको रेगुलर कर दिया
0: जी।
1: तो मुझे आए हुए 6 महीने हुए थे कि मैं रेगुलर हो गया
0: जी
1: उर्दू सर्विस के अंदर।
0: उर्दू सर्विस उस वक्त शुरू हुई।
1: उर्दू सर्विस, असल में उर्दू सर्विस 15 मई 1965 को आधे घंटे की शुरू हुई थी
0: जी,
1: तजर्बाती तौर पर, और उसको नाम दिया गया था उर्दू प्रोग्राम।
0: मतलब आपका जो सिलेक्शन हुआ था वो उर्दू मजलिस के उर्दू सर्विस के लिए हुआ था
1: जी। जब 16 मई 1966 को पूरा फुल फ्लैज स्टेशन बन गया उर्दू सर्विस, तब मैं आया था। तो उस वक्त सिर्फ एक ही अनाउंसर थे यहाँ पर, मरहूम अंदार अहमद साहब
0: जी,
1: वो अनाउंसर थे। बाद में उसी वक्त मुजीब सिद्दीकी कानपुर से आ गए, उसके बाद दिल्ली से एसएम शफीक
0: जी,
1: कानपुर से इकबाल वारसी, इस तरह से ये बहुत खूबसूरत आवाज़ है,
0: एक कहकशा
1: बन गया, स्टाफ का कहकशा बन गया। उसके बाद जो दूसरे जो लोग थे जैसे सलाम मसीह शेरी
0: जी,
1: अदबी प्रोग्राम देखते थे, के नैयर, उसके बाद उस्ताद हफीज अहमद खान जो म्यूजिक देखते थे, और महमूद हाशमी जो करंट अफेयर्स देखते थे, रुबैर रिजवी
0: जी।
1: तो इस तरह से ये लोग आते चले गए, अमीर खल्फी साहब
0: जी,
1: तो ये पूरा एक बहुत ही मज़ा आता था काम करने में।
0: अच्छा,
1: ड्रामे में अनवर खान साहब
0: जी।
1: अच्छा, अनवर खान साहब से पहले कुलदीप अख्तर साहब थे, और जब मैंने ज्वाइन किया जब कुलदीप अख्तर साहब थे और वो रिटायर होने वाले थे।
0: तो आपने प्रोडक्शन का जो काम है वो
1: जी,
0: वो किन से सीखा, जो आप जिनको उस्ताद मानते हैं?
1: वो मैंने कभी स्टूडियो नहीं देखा था, कभी रेडियो नहीं देखा था, एक तस्वुर था रेडियो का।
0: जब आपका रेडियो में अपॉइंटमेंट हो गया आया,
1: तो मैंने कोशिश की कि मैं हर शोबे में मालूमात हासिल
0: करूं। तो जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई तो किस तरह का काम होता था और किस तरह की मशीनें थी?
1: ये मशीनें हमारे यहाँ एक होता था CRR, सेंट्रल रिकॉर्डिंग रूम
0: जी,
1: वो एक हॉल था, उसके अंदर जगह जगह मशीनें लगी, दो दो तीन तीन मशीनों के सेट लगे हुए थे। वहाँ मैंने काम शुरू किया मुख्तलिफ प्रोग्राम, जो मेरा पहला प्रोग्राम था जो मैंने फीचर था, उसका नाम था फुटपाथ से फुटपाथ तक।
0: हाँ,
1: ये तमाम जितने बाहर बेचारे जो काम करते हैं, रोजगार करते हैं, छोटे छोटे रेहड़ी वाले हैं, खंचे वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन सबके इंटरव्यूज पर बेस्ड था
0: जी,
1: उनके तजर्बात पर बेस्ड था, उनकी मुश्किलात का सारा था। तो वो मैंने प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम फुटपाथ

0: 6 फुट 5 तक, ये गरीबन 67 के आसपास की बात।
1: तो इसकी रिकॉर्डिंग्स के लिए भी आप बाहर जाते होंगे?
0: हाँ, स्टूडियो से बाहर रिकॉर्डिंग के लिए। उस जमाने में रिकॉर्डिंग फैसिलिटी ज्यादा थी नहीं, एक वर्टिकल टेप रिकॉर्डर होता था, वर्टिकल टेप रिकॉर्डर छोटा था, 3-4 मिनट उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते थे, सेल्स होते थे वो लेके जाते थे, उससे हम रिकॉर्डिंग करते थे। तो उसको फिर आकर अपने कंट्रोल रूम में, उसमें CRR में उसकी डबिंग करते थे। अनाउंसर हमारे उस वक्त होते थे SM शफीक
1: जी।
0: तो मेरे जितने भी प्रोग्राम है उसकी जो वॉइसिंग की है वो SM शफीक साहब ने की है
1: जी।
0: और बहुत से प्रोग्राम हमने साथ मिलकर बनाए हैं, उसमें गीतों मेरी कहानियाँ बहुत बनाई हैं, तो हम दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर हो गई थी यहाँ पर।
1: अच्छा सरफराज साहब, जिस स्टूडियो में बैठे हैं इसकी जो दीवारें हैं ये आपके आशना है
0: जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप ये बताइए कि ये स्टूडियो जो आप बापू स्टूडियो के नाम से जाना जा रहा है, इससे पहले ये स्टूडियो कैसे जाना जाता था, और क्या कुछ लाइव प्रोग्राम्स भी होते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, या जो आज
0: यहाँ ज्यादातर इंटरव्यू हुआ करते थे
1: जी?
0: पता चला था कि गांधी जी भी जब ब्रॉडकास्टिंग के लिए आए थे तो वो इसी स्टूडियो में तशरीफ लाए थे
1: जी।
0: लेकिन मैंने जो रिकॉर्ड किया जिन लोगों को, उसमें बाबू जगदीप राम
1: जी,
0: हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए बाद में PV नरसिम्हा राव
1: जी,
0: उनको मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया। उसके अलावा जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आते थे, अदीब आते थे, उनके इंटरव्यू भी यहाँ किए हैं, जैसे प्रोफेसर आलि मसरूर साहब
1: जी,
0: शमीम हनफी साहब उस जमाने में अलीगढ़ में थे, डॉक्टर शमीम हनफी
1: जी,
0: ये सब लोग उनको इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया।
1: अच्छा, आपने जिक्र किया अनवर साहब का
0: जी,
1: ड्रामे के हवाले से, अनवर साहब, तो वो जब ड्रामा प्रोडक्शन होता था
0: जी,
1: तो आप यहाँ पर तो एक मजमा जैसा रहता होगा, क्योंकि
0: जबरदस्त
1: जो किरदार आते थे वो लाइव परफॉर्मेंस देते थे सारा कुछ।
0: एक वाकया सुनाता हूँ तो,
1: जी बताइए।
0: एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग थी, उसमें नाजरा बब्बर रोल कर रही थी, मेन रोल
1: जी,
0: अनवर खान पैनल पे थे, मैं उनके साथ था। तो नाजरा बब्बर एक लफ्ज को जिस तरह अनवर खान चाहते थे उस तरह अदा नहीं कर पा रहे थे। नाजरा ने कहा कि खान साहब फिर आप ही बता दीजिए। तो अनवर खान साहब माइक्रोफोन पे पहुंच गए, मुझसे कहा रिकॉर्ड करो। उन्होंने एक ही जुमला
1: जी
0: 10 बार रिकॉर्ड किया अलग अंदाज में, और फिर नाजरा को बुला के कहा ये सुनो, ये जो 5 बार है मुझे ये चाहिए,
1: मतलब एग्जांपल सेट करके फिर बताना कि ऐसा हमें चाहिए,
0: इतना चाहिए
1: जी।
0: तो नाजरा बब्बर रोने लगी थी।
1: अच्छा, एक बताइए कि जिस तरह से हमारा रेडियो ड्रामा प्रोडक्शन है वो करीब करीब 28 मिनट के आसपास हम प्रोडक्शन करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सीरीज होती है, कोई ऐसी सीरीज जिसमें आपको 6 महीने लग गए हों, साल लग गई हो प्रोडक्शन में?
0: एक सीरीज शुरू की थी यहाँ पर दानिश इकबाल की
1: जी,
0: वो गैर मुल्की जबानों का तर्जुमा था कहानियों का, उसमें मुझे मजा भी आया काम करने में, और वक्त भी लगा, काफी लगा वक्त लगा, खासतौर पर आर्टिस्ट के सिलेक्शन में दुश्वारी हुई, क्योंकि यहाँ आर्टिस्ट जो है वो उस वक्त उर्दू के तो थे नहीं,
1: ठीक,
0: हिंदी के थे, उन्हें हिंदी में स्क्रिप्ट दी जाती थी
1: जी,
0: तलफ़ उर्दू का होता था, अल्फाज उर्दू के होते थे, तो उसकी अदायगी में उन्हें बहुत पक लगता था, और वो उनको बहुत समझाना पड़ता था इस सिलसिले में, गलत जगह नुक्ता लगाते थे।
1: अच्छा,
0: अब भी आपने देखा होगा
1: जनाब की जगह जनाब कर देते हैं लोग,
0: आप देख रहे हैं, बल्कि आजकल भी जो बाहर के चैनल्स हैं, प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं, उनका तलफ़ बहुत खराब, खबर कर,
1: इसलिए तो आकाशवाणी की जो जुबान है वो एक बेंचमार्क है।
0: रेडियो जो है, रेडियो ने हमको बोलना सिखाया, हमको बताया कि कहाँ रुकना है, कहाँ कोमा होना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए
1: जी,
0: और जिस लफ्ज पर हमें जोर देना है उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये सारी जो जबान की तहजीब है वो हमें रेडियो से मिली।
1: अच्छा सरफराज साहब, एक चीज बताइए, जब आप प्रोडक्शन करते थे ड्रामा का
0: जी,
1: कई बार होता है स्क्रिप्ट में भी बदलाव लाना पड़ता है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट जिसने दी है तो जरूरी नहीं कि रेडियो के हवाले से वैसी स्क्रिप्ट तैयार करके दी हो, तो ये क्या जो उस वक्त के प्रोड्यूसर्स थे वो अलाउ करते थे कि आप उनकी हेल्प करें और उसमें चेंज लाने के लिए?
0: ऐसा हुआ, बारहा हुआ है, मेरा वास्ता कुलदीप अख्तर साहब से ज्यादा नहीं पड़ा था, क्योंकि रिटायर होने वाले थे, अनवर खान साहब के साथ ज्यादा रहा हूँ, अनवर खान साहब के बाद मुमताज शकीब है जयपुर से, मुमताज शकीब में ये कमजोरी थी
1: जी,
0: कि वो उस कमजोरी को की वजह से कभी कभी जुमले में डायलॉग में फ्लो नहीं आता था,
1: अच्छा
0: लफ्ज को इधर उधर करना पड़ता था
1: जी,
0: स्क्रिप्ट मुमताज शकीब का ही होता था
1: जी,
0: लेकिन उसमें तब्दीली और इसलाह जो है मुझे करनी पड़ती थी, ये हुआ
1: असर लाने के लिए
0: जी।
1: अच्छा, एक चीज सरफराज साहब, आपने उर्दू मजलिस भी देख लिया, उर्दू सर्विस में भी काम करके देख लिया, कोई ऐसी शख्सियत

0: जो बाहर से आई हमारे पास, जिनको हम एज ए टॉकर बोलते हैं, जिसने आपके ऊपर एक असर छोड़ के गए,
1: जिसने
0: जिसने आपके ऊपर एक असर छोड़ा है कि मुझे भी ये बदलाव लाना है अपनी शख्सियत में, मैं अपने आप को इस तरह से अपने आप को डेवलप करना है, कोई ऐसा मतलब
1: ऐसी
0: वाक्य आपके साथ,
1: शख्सियत तो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है।
0: और रेडियो में कोई ऐसी शख्सियत रही जो जिनसे आपने सीखा
1: हाँ, ऐसे
0: जी,
1: कई लोग हैं
0: बताइए
1: जैसे किरण जी,
0: जी।
1: उनका बहुत मशहूर एक सीरियल था ढोल की पोल,
0: ढोल की पोल
1: आपने सुना होगा,
0: जी
1: 1962 के आसपास होगा। फिर उसके बाद शरद चंद्र,
0: जी
1: उनसे मैंने टाइमिंग सीखी। टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है,
0: जी
1: टाइमिंग उनसे सीखी शरद चंद्र से। अब तो खैर वो नहीं रहे। उसके बाद दीना भाई, दीनानाथ,
0: जी
1: तीन कैरेक्टर ऐसे थे उर्दू ड्रामे के, उर्दू ड्रामों में, जिसमें सर्वसंजय, दीनानाथ और ब्रजेंद्र मोहन, खलीफा छद्दू वगैरह क्या करते थे, और भाई मुमतियाज,
0: जी
1: इस तरह के कैरेक्टर करते थे। ये लोग जो थे, इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। उसके बाद आखिरी दौर जो है वो SS ठाकुर,
0: जी
1: ये डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर ड्रामा थे, इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और ये जो थे वो, उनकी खास बात ये थी कि जो इफेक्ट्स थे, साउंड इफेक्ट, उसको वो स्टूडियो में लाइव करना चाहते थे। लाइव एक वो प्रोग्राम कर रहे थे, महाभारत
0: जी
1: ड्रामा।
0: आजकल तो सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है,
1: हाँ,
0: मगर उस
1: आजकल
0: वक्त
1: तो
0: तो हाँ जी
1: इफेक्ट उस जमाने में नहीं थे। हाँ,
0: बनाए जाते थे उस वक्त जी
1: तो उसमें एक इफेक्ट था सुदर्शन चक्र,
0: जी
1: उसका इफेक्ट निकालना था, और कई दिन हो गए वो हमको वो इफेक्ट जो है वो तैयार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन मैं जैसे ही ब्रॉडकास्टिंग हाउस में दाखिल होने लगा, तो मुझे टीम का एक टुकड़ा नजर आया
0: जी
1: सड़क पे पड़ा हुआ, उल्टा पड़ा हुआ,
0: मतलब जहन में
1: गया।
0: रहता होगा कि इफेक्ट
1: हाँ,
0: चाहिए तो
1: हमारे
0: कहाँ
1: साथ।
0: से मिलेगा ये
1: हाँ,
0: इफेक्ट है जी
1: टुकड़ा निकाला,
0: हाँ
1: उसको उसको लिया, अंदर आकर कील से उसमें दो सुराख किए बराबर बराबर,
0: जी
1: और उसमें धागा पिरो कर उसको ऐसे करके घुमाया,
0: तो आवाज
1: उसको
0: आई
1: खींचा, तो उससे जो आवाज़ निकली घूम घूम के,
0: जी
1: तो वो हमारे काम आई सुदर्शन चक्र के इफेक्ट के लिए। एक और इफेक्ट बहुत मुश्किल था, एक ड्रामा था जिसमें कितनी खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए,
0: अच्छा
1: लेकिन फिर भी रूह आती है, एंटर
0: अच्छा
1: होती है
0: तो
1: और
0: मतलब
1: मर्डर हो जाता है
0: और रेडियो भी इस चीज बताना
1: रेडियो पर। तो अब ये किस तरह किया जाए, कभी एक रूह आती है और एंटर होती है और होकर वो मर्डर हो जाता है। तो हम यहाँ स्टूडियो 1 है, इसमें एक बहुत बड़ा नकारा रखा हुआ था,
0: जी
1: अब नहीं है,
0: अब तो
1: पहले
0: नहीं है
1: नकारा
0: आपके
1: रखा
0: पास
1: हुआ था, और उसके जो स्ट्राइकर थे वो दीवार पे लगे हुए थे एक क्रॉस की तरह। तो मैं उधर से गुजर रहा था, तो मेरी नज़र उस पर पड़ी, तो मैं टेप रिकॉर्डर टेप ले आया, ऊपर से टेप स्कूल जाकर उसको ऑन कर दिया रिकॉर्ड के लिए। स्टूडियो में जाकर उसके ऊपर मैंने स्ट्राइक किया,
0: अच्छा
1: जब उसने स्ट्राइक किया वो रिकॉर्डिंग हो गई, उसके वाइब्रेशन सारे आ गए।
0: जी जी जी
1: जब मैंने उसे इस्तेमाल किया है तो वो स्ट्राइक को हटा दिया,
0: अच्छा
1: सिर्फ
0: अच्छा
1: वाइब्रेशंस लेकर उसका
0: वो
1: इस्तेमाल किया, उससे ऐसा लगा,
0: कि रूह
1: और उसमें
0: का
1: चीख,
0: जी जी जी
1: तो उससे ऐसा लगा कि वो रू आ रही है और वो मर्डर हो रहा।
0: अच्छा सरफराज साहब, जब ड्रामा कहते हैं कि एक कंप्लीट आर्ट है रेडियो की, इसमें मौसिकी अपनी एक अलग रोल अदा करता है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो उस वक्त जब आपको कोई म्यूजिक का इस्तेमाल करना होता है इफेक्ट्स वगैरह, ठीक है म्यूजिकल इफेक्ट्स की
1: जी
0: बात कर रहा हूँ, तो साजिंदे खुद स्टूडियो आते थे कि
1: नहीं
0: आप कहीं से रिकॉर्डिंग करके आते थे, फिर उसको जिस
1: नहीं
0: तरह
1: हमारे पास जो
0: जी
1: प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक है
0: जी
1: उसमें से हमें इजाजत थी कि सिर्फ हम 15 सेकंड यूज कर सकते हैं कोई भी गाने के म्यूजिक को,
0: जी
1: वहां से बेची
0: नहीं मैं
1: पैसा।
0: शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, जब आप नए नए आए गए उस टाइम इतना म्यूजिक तो अवेलेबल नहीं होगा
1: नहीं होता था
0: जी
1: तो जो हमारे पास रिकॉर्डिंग थी उसी से हम लेते थे म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जो अप्रोप्रिएट लगता था वही हम उसमें लेते थे।
0: तो उस वक्त जो म्यूजिक आप लेते थे टेप पे होता था कि ये ग्रामोफोन वगैरह पे
1: टेप पर होता था,
0: जी
1: टेप पर होता था। ग्रामोफोन उस हमसे पहले का था, हमसे पहले जो था वो स्टूडियो 11 एक था, अब भी है वो
0: जी
1: स्टूडियो, अब उस पर डबिंग होती है, वो स्टूडियो होता था। ड्रामा ड्रामा स्टूडियो में हो रहा, उस स्टूडियो 11 के अंदर हमारे इंजीनियर बैठे हुए हैं, इफेक्ट लेके बैठे हुए हैं, कंट्रोल ड्रामे की जो आवाज़ है वो उस स्टूडियो में सुनाई दे रही है, वहाँ से वो इफेक्ट दे रहे हैं। जब उनको स्क्रिप्ट उनके पास भी है वो वहाँ से इफेक्ट दे रहे हैं, महाभारत हो रहा है वैसे या रामायण हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी ड्रामे हो रहे हैं इफेक्ट वहाँ दे। तो उस
0: जी
1: स्टूडियो का नाम ही इफेक्ट स्टूडियो।

0: बैठे हुए हो, कंट्रोल ड्रामे की जो आवाज है वो उस स्टूडियो में सुनाई दे रही है, वहां से वो इफेक्ट दे रहे हैं। जब उनको स्क्रिप्ट उनके पास भी है, वो वहां से इफेक्ट दे रहे हैं। तो महाभारत हो रहा है जैसे, या रामायण हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी ड्रामे हो रहे हैं, इफेक्ट वहां दे। तो उस स्टूडियो का नाम ही इफेक्ट स्टूडियो रख दिया गया था।
1: अच्छा अच्छा
0: इफेक्ट स्टूडियो है ना। अनाउंसर इधर बूथ पे होता था ड्रामे के ऊपर, और इफेक्ट वहां से प्रवाहित होते थे और कंट्रोल रूम इसको कलेक्ट करता था।
1: सरफराज साहब, रेडियो के हवाले से जैसे हम एक तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करते हैं हम लोग, दूसरा यह है कि जब बाहर जाते हैं, बाहर कोई फंक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और वो वक्त था जिसमें आप यहाँ सर्विस में थे कि बाहर जाके रिकॉर्डिंग्स भी बहुत हुआ करती थी,
0: जी जी
1: तो कोई ऐसा वाकया जो अपने वक्त का आपको लगता है कि हम
0: हाँ है।
1: रेडियो के हवाले से लोगों तक पहुँचाया जाए?
0: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 6 साला तकरीबात थी
1: जी
0: और हम पूरी टीम लेकर अलीगढ़ पहुंचे थे। वहाँ 4-5 दिन का प्रोग्राम था,
1: जी
0: इंजीनियर भी थे हमारे साथ।
1: हमें अपने सामीन को बताना चाहते हैं कि अलीगढ़ यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, दिल्ली के स्टूडियो से।
0: वहाँ पर हमारे सामने एक मसला आ गया
1: जी।
0: हम रोजाना दिन में रिकॉर्डिंग करते थे, शाम को एडिटिंग करके कैप्सूल बनाते थे और उसको हाई पावर ट्रांसमीटर जो अलीगढ़ से कुछ 17-18 किलोमीटर दूर था, वो हमारी वैन का ड्राइवर लेके जाता था, वहाँ देता था, वहाँ से प्लेबैक होता था यहाँ
1: अच्छा।
0: दिल्ली में। एक दिन वो वैन जो है ख़राब हो गई। अब वहाँ कोई रास्ता नहीं था कि हम किस तरह से इसको वो करें। प्रोग्राम हो रहा था कैनेडी हॉल में, उसके बराबर में टेलीफोन का एक पुल लगा हुआ था,
1: जी
0: तो हमने एक साइकिल उस पुल के साथ लगाई, उसकी गद्दी पर खड़े हुए, टेप रिकॉर्डर कंधे में रखा, उसको टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया और वो दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ।
1: मतलब
0: तो वो है ना कि शो मस्ट गो ऑन।
1: यस, और ये कहते हैं ना कि रेडियो हो, टेलीविजन हो, या जितने भी मास मीडिया के हैं, वहाँ पे शो रुकना नहीं चाहिए और आपको वक्त के हिसाब से करना है।
0: बिल्कुल करना पड़ता
1: तो
0: है।
1: अब ये बताइए कि जो नई नस्ल हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही है,
0: जी
1: कहते हैं कि जो टाइम की पाबंदी,
0: जी
1: चाहे आप किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है,
0: जरूरी है।
1: लेकिन नशरियात में तो और उससे भी ज्यादा है।
0: जी असल में क्या है,
1: उसके बारे में थोड़ा बताइए कि
0: रेडियो की मुलाजमत दूसरे इदारों की मुलाजमत से बहुत मुख्तलिफ है।
1: जी
0: यहाँ आपको बहुत कुछ करना पड़ता है जो और जगह नहीं करना पड़ता।
1: जी
0: यहाँ सबसे पहले वक्त की पाबंदी और जुनून, आप में जुनून होना चाहिए काम करने का, कि हमको काम करना है, किस तरह करना है ना। बगैर जुनून के, बगैर जोश के, बगैर पूरी तवज्जो के साथ आपको उसको प्रोग्राम को करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रोग्राम ऐसा हो जो सबके मतलब का हो।
1: मतलब कोई प्रोग्राम किसी भी तबकों को को कहीं ना कहीं परेशान ना करे, ऐसा प्रोग्राम नहीं
0: बस
1: होना
0: ऐसे
1: चाहिए।
0: तो परेशान ना करो।
1: चलिए हम आपको फिर दोबारा ले जाते यादों में। आप यहाँ पर कितना वक्त देते थे? 24 घंटे का दिन होता है और कहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग ऐसी है, अगर आप इससे मोहब्बत कर बैठे तो 24 घंटे यही निकल जाते हैं स्टूडियो में।
0: असल में शुरू में ही मैं ऑल इंडिया रेडियो 8 बजे पहुंच जाता था।
1: टाइमिंग के एकदम पाबंदी जो थी,
0: 8 बजे मैं पहुंच जाता था ऑल इंडिया रेडियो और अपना काम संभाल लेता था। अब वो काम 5 बजे तक खत्म हो, 7 बजे तक खत्म हो, 9 बजे तक खत्म हो या 12 बजे तक खत्म हो, मैं उस वक्त तक नहीं हिलता था जबकि वो प्रोग्राम मेरा कंप्लीट ना हो जाए।
1: अच्छा ये बताइए कि उस वक्त आपके जो सीनियर्स थे,
0: जी
1: उनका तो आपने जिक्र किया,
0: जी
1: आपके साथियों में कौन थे जो जिस तरह से आप एक जोश के साथ, एक मोहब्बत के साथ जो इस प्रोग्राम्स बनाते थे, उस वक्त आपके साथियों में कौन कौन?
0: सबसे पहले नाम मैं फरहत हुसैन साहब का लेना चाहूँगा।
1: जी
0: फरहत हुसैन उर्दू सर्विस से शुरू होते ही पेस्ट कोऑर्डिनेशन थे और उनके प्रोग्राम मैं उनको सपोर्ट करता था, मैं उनको हेल्प करता था, असिस्टेंट था मैं उनका, वो क्या करता था। तो वो अपने काम में बड़े माहिर, उनका आलम यह था कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड चल रहा है, उन्हें कुछ बोलना है बीच में तो उस पर 2 उंगली रखते थे, रिकॉर्ड वहीं रुक जाता था बगैर स्क्रैच के, और वो फेडर अपना ऑन करके माइक का बोल के फेडर बंद किया, हाथ उठा लिया, बगैर स्क्रैच के वो टेप अपने उसी स्पीड पर चलने लगता था, टेप नहीं रिकॉर्ड। वो इस तरह का काम करते थे वो। उन्होंने इको चैनल हमारे यहाँ नहीं था, कोई नहीं था, ड्रामा करना उसे इको चाहिए,
1: कंसोल में नहीं होता था।
0: वो उन्होंने टेक्निक सिखाई, एक और मेरी टेक्निक है सुपर इम्पोज करने की, पेंसिल लगा के, है ना, वो उन्होंने सिखाई, ऐसी बहुत सी चीजें सिखाई, मेरा दिल लगता था उनके साथ काम करने।
1: टेप पे रिकॉर्डिंग करते थे वो, हमने भी वो देखा जब टेप रिकॉर्डिंग्स होती थी, और कई बार तो टेप को काटना भी पड़ता था।
0: हाँ
1: तो वो किस लिए काटना पड़ता था सरफराज साहब? क्योंकि

0: उस वक्त तो मुझे लगता है कि एडिटिंग में या कहीं टेप में कुछ, क्योंकि वो मैग्नेटिक टेप्स हुआ करते
1: या तो वो टेप खराब है इसलिए काटते थे,
0: जी,
1: या वो रिकॉर्डिंग सही नहीं आई है उस जगह पर। एक और वाक्य मैं आपको सुना दूँ, बड़ा दिलचस्प। सलाम मछली शहरी इसमें गड़बड़ देखते थे, लखनऊ से कलाम आया किसी का, तो फरत हुसैन से कहने लगे कि भाई ये देखिए मेरा जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो तो गायब हो गया, छुट्टी पर है, और मुझे ये सुनना है रात का ब्रॉडकास्ट से क्या होगा। तो फरत हुसैन ने कहा कि कंट्रोल रूम में जाइए CRR में, वहाँ कोई ना कोई इंजीनियर आपको टेप लगा देगा, आप सुन लीजिएगा। चले गए, सलाम मछली शहरी की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ जाकर इंजीनियर से कह दिया, उसने प्लेबैक किया, ये सुने, वो जो 10 मिनट का था कलाम शहर वो ख़त्म हो गया। अभी उन्होंने उधर तो देखा उस इंजीनियर को, इंजीनियर नजर नहीं आया, तो उन्होंने टेप पे फॉरवर्ड पे उंगली मार दी, वो एकदम तेज हो गया, घबरा गया, उन्होंने रिवाइंड पे उंगली मार दी,
0: टूट गई टेप
1: है, तो वो टेप जो है दोनों स्कूल उलझ के टूट गया
0: जी।
1: उसके तो एक इसी स्कूल में, एक इसी स्कूल में, और एक टुकड़ा 2 फुट का जमीन पे गिर गया। तो इन्होंने जमीन से टुकड़ा उठाया, जेब में रखा, और हाँफते काँपते दोनों चीज़ों को लेके पहुंचे भरत के पास कि देखो मेरा ये तो नौकरी चली जाएगी रात का ब्रॉडकास्ट से, ये टूट गया। तो भरत उसे नसे, मैं बराबर में खड़ा था, मैं उनको कहने लगे सरफराज भाई जाके टेप जोड़ रही है
0: जी,
1: ये मेरे साथ आए, मैंने टेप जोड़ा, जब उसे प्लेबैक किया तो एब्रप्ट, मैंने कहा सलाम भाई ये तो बड़ा एब्रप्ट है, वो देखो हो करके उन्होंने जेब से देख
0: बाकी
1: ये भी
0: हमने बहुत सारी यादों के झरोके से आपसे बहुत सारी चीज़ें निकलवाई, और हम देख पाए कि जो आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, और हम दुआ भी करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से मास मीडिया में काम करते रहें। और जैसे हम आपको बताएं कि शुरुआत में ये हम 90 साल आकाशवाणी के मना रहे हैं, और उसमें से 90 साल से मैं जो आधे से ज़्यादा आपका तजुर्बा रहा है रेडियो में, करीब करीब 50 साल का, तो हमारे सामने को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। रेडियो में उर्दू सर्विस किस तरह से शुरू हुई, किस तरह से सरफराज साहब और जो दीगर यहाँ पर अफसरान थे उन्होंने कैसे काम किया, और इस सर्विस को कैसे यहाँ तक लेके आए। तो आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत सी बातें हैं दिल में कहने के लिए,
0: एक शेर अर्ज हो जाए,
1: नहीं है
0: एक शेर अर्ज हो जाए,
1: उम्र गुजरी है इसी दस की सयाहत है, ये मैं कह सकता हूँ।
0: तो सरफराज साहब, एक जो नई नस्ल इस प्रोग्राम को सुन रही है उसको जो हमारा हिस्ट्री है उसके बारे में जानने को मिला, मगर एक जो मैसेज आप देना चाहते हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ना चाहते हैं, नशरियात से जुड़ना चाहते हैं, उर्दू में काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपका?
1: असल में ब्रॉडकास्टिंग जो है वो दिल का सौदा है। अगर आपके दिल में ब्रॉडकास्टिंग से मोहब्बत है
0: जी,
1: तो आपको कोई पछाड़ नहीं सकता, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, मुसलसल आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना।
0: तो सरफराज साहब की बातें आपने सुनी, और इतनी मोहब्बत से इन्होंने हमसे बात की, और आज भी ऐसा लगता है कि हम उसी एरा में जी रहे हैं जिसमें सरफराज साहब ने काम किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए।
1: शुक्रिया।
2: सामीन, अभी आप रूबरू प्रोग्राम के तहत आकाशवाणी के मारूफ ड्रामा प्रोड्यूसर जनाब सरफराज अहमद से की गई यह बातचीत सुन रहे थे। शरीक गुफ्तगू थे जनाब मुबीन खान। प्रोग्राम की तरतीबो पेशकश थी इंतजार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।
3: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 171 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे।

आशिक फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में, नगमा निगार थे समीर, मौसीकार नदीम शरवन। और समझ लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को, फिल्म है धर्मकांटा।

खुले गुलजार क्यों बेदार नजर आता है, चश्म बद का शिकार यार नजर आता है। छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या।

बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के

मुन्ना डे की आवाज़ में आप सुन रहे थे जंजीर फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। और समझ लीजिए, सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश धर्म कर्म फिल्म का नगमा। आवाजें हैं किशोर कुमार, मुकेश, आशा भोसले और साथियों की। मौसीकार हैं आर डी बर्मन।

जाता है प्यार।

दिल तेरा दीवाना, इस फिल्म के नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में नदीम शरवन की मौसीकी से जय नगमा सुनिए। फिल्म है दिल का क्या कसूर।

शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल न्यूक्लियाई ताबून के माहदे को अमली जामा पहनाने से इत्तफाक किया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम बरामद कर सकेगा। भारत ने अकवाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में महाजराई और लड़ाई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है और इसे जंग और दहशतगर्दी का आलाएकार करार दिया है। IMD ने आज उत्तराखंड में शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। फिलिस्तीन में कानून साज असम्बली इंतखाबात 28 नवंबर को होंगे। फीफा आलमी कप में दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात

स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और खवातीन क्रिकेट में आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले अब तक के पहले टेस्ट मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का अपना तारीखी और अहम सरकारी दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। उनके इस दौरे ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए एक तवील मुद्दती बुनियाद फराहम की है। इस दौरे के दौरान सिफारती, इक्तसादी और दिफाई तआवुन को नई बुलंदियों

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों की सेवा में आज नमस्कार जसवीर सिंह की तरफ से। दोस्तों, युवाणी का आज का ये अंक हम लेकर उपस्थित हैं और उन सभी दोस्तों का भी हम स्वागत करते हैं जो मीडियम वेव पर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, या यूं कहिए कि मीडियम वेव पर आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल के जो सभी कार्यक्रम सुनते हैं। क्यों, रख रखाव के लिए हमने संध्या 3 बजे से 5 बजे तक इस मीडियम वेव कार्यक्रम को, रिले को बंद कर रखा था। खैर, आप सभी का स्वागत है इस युवाणी कार्यक्रम के अंक में। जसवीर सिंह आपकी बिल्कुल सेवा में हाजिर है। तो दोस्तों, आज के इस युवाणी कार्यक्रम में हम आपके लिए बहुत सी बातचीत, आपसी बातचीत

भी लेकर आए हैं, बात भी करेंगे, संगीत भी सुनवाएंगे, गीत भी सुनवाएंगे, मगर उससे पहले हम बात करते हैं आज की बात की। दोस्तों, भारतमाला परियोजना भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण करने वाले सबसे बड़ी सड़क अवसंरचना योजना है। परियोजना का उद्देश्य जो है, भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना है, आर्थिक गलियारों को मजबूत करना है, सीमा पर तटीय क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क विकसित करना है और पिछड़े तथा दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ना है। और युवा साथियों, ये परियोजना के पहले चरण में 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमति लगभग जो अनुमानित लागत है वो 5,00,000 करोड़ रुपए लगभग ये इसकी कीमत आएगी। और ये जो परियोजना है इसलिए भी है और विशेषता इसलिए भी है कि अगर आर्थिक गलियारों देश की प्रमुख औद्योगिक और व्यापिक जो व्यापारिक केंद्र हैं उनको आपस में जोड़ना है, छोटे शहरों और गांवों को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ना है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों के लिए भी है, बंदरगाह तक तेज सड़क पहुंच सके तो और तेज़ी से वो सामान बंदरगाह तक पहुंच सके, उनकी कनेक्टिविटी जो है वो जुड़ सके उसके लिए भी है, और नई तकनीक से बने फास्ट और सुरक्षित एक्सप्रेसवे भी है जहाँ पर हम युद्ध के दौरान अपने जो फाइटर जेट्स हैं वो हम उतार सकें या दूसरे जो वायुसेना जो हमारे साधन हैं उनको हम उस एक्सप्रेस वे पर उस पर हम उसको उतार कर अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकें। और युवा साथियों की ये जो सारी योजनाएं हैं ये हम सब की जो की है कि विकसित विकासशीलता के लिए आगे बढ़ने के लिए जरूरी कर रहे हैं, और सरकार ये चाहती है कि इन सभी भारतमाला परियोजना के साथ हम मतलब इन सड़कों की लंबाई और सड़कों की जो किलोमीटर लंबाई है उसको बढ़ाकर और उसको तटीय क्षेत्रों तक जोड़ सकें, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ सके, दूर दराज के क्षेत्र भी जुड़ सके और सैनिक गतिविधियों के लिए भी हम इसको काम में ले सकें। खैर दोस्तों, ये तो वो बात थी कि हम भारतमाला परियोजनाएं जो बना रहे हैं वो इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने देश के अंदर जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके हम उन सभी बातों को उन सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अब श्रोताओं, अगर हम बात करते हैं अगली बात, तो अल्पसंख्यक बस्तियां जो मलिन होती जा रही हैं उनमें जो महत्वपूर्ण जो चुनौतियाँ हैं कह लीजिए या उनको सुधार करने के लिए हम क्या क्या मतलब ये काम कर सकते हैं वो समस्या है जो उनकी पहले हम बात करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों के लिए बेहतर अवसरों के साथ जो मलिन बस्तियां हैं युवा साथी वो आकर्षक हो सकती हैं, लेकिन सामान्यतः शहरी मलिन बस्तियों में जीवन की कठोर वास्तविकताएं और चुनौतियां प्रचंड होती हैं। और युवा साथियों, मलिन बस्तियों क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरों और विशेष रूप से टाइफाइड और हैजा जैसी जल जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और मलिन बस्तियों में रहने वाले महिलाएं, बच्चे और बहुत सारे लोग इसके शिकार होते हैं। और प्रायः ऐसा माना जाता है कि शिक्षा, विद, प्रवर्तन और सामाजिक सेवाओं पर सरकार के अपर्याप्त ध्यान दिए जाने के कारण मलिन बस्तियों पर अपराध की घटनाएँ अधिक होती हैं। भुखमरी, कुपोषण, शिक्षा तक सीमित पहुंच जैसी समस्या भी बहुत उत्पन्न होती हैं। इन सभी की जो हम बात करें, ये जो सभी मलिन बस्तियां हैं इनको सुधारने के लिए हम वहां पर एक नेटवर्क बनाएं ताकि उन सभी को जागृत किया जाए और एक कैंप लगाएं कि किस तरह से गंदगी हमें नहीं फैलानी है, क्योंकि गंदगी अगर फैलेगी तो किस तरह से हमारा शरीर उससे दूषित हो जाएगा, उनसे बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, जिस बीमारियों के लिए हमें फिर बहुत अधिक दाम चुका कर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाकर अपने आप को स्वस्थ बनाना पड़ेगा। और इसलिए दोस्तों उन मलिन बस्तियों के सुधार के लिए उनको जागृत करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि जो गंदगी है, चाहे गंदगी कहीं भी है, चाहे दोस्तों बस्तियों में है और चाहे वो किसी के घर में है, सड़क पर है, वो सभी तरह से हमारे लिए हानिकारक है। और उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम 1971 में अपनी तरह की पहली समीक्षा शुरू की थी कि ये चर्चा की गई थी कि मलिन बस्तियों को किस तरह से उनको सुधार किया जा सकता है। और दोस्तों, ये जो समस्या है इन सभी समस्याओं के लिए हमें उनको जागृत करना है, जहाँ झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, मलिन बस्तियों में जो रहते हैं उनको हम ये बताना होगा कि हम किस तरह से इसको साफ सफाई के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि उन बस्तियों में आधार

जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाएं, जैसे कि दवाइयों की सुविधा है, मेडिकल हॉस्पिटल्स है, शिक्षा के लिए स्कूल हैं, इन सभी की जो जो ज़रूरत है वहाँ पर उनको हम वहाँ पर अवेलेबल कराएं, वहाँ पर उपलब्ध कराएं, ताकि वो लोग वो जो मिलिन बस्तियों में रहते हैं वो जागरूक हो सकें, पढ़ लिख सकें और अपनी जो जिम्मेवारी है उसको भी पूरा कर सकें। खैर दोस्तों, ये युवा साथियों, ये तो वो बात थी जिस बात के लिए हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि आज की युववाणी अंक के अंदर ये जो दो बातें हमने आपसे की उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इस फिल्म के गीत के साथ हम अपना कार्यक्रम की ये पहला गीत आपको सुनवा देते हैं।

0: जी युवा साथियों, अभी आप सुन रहे थे जुगनू फिल्म का ये गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर किशोर कुमार की। और युवा साथियों, ये गीत आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के द्वारा। प्रोग्राम युववाणी में आप सुन रहे थे ये गीत और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है
2: ब्रो? ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
0: जी हाँ युवा साथियों, आपने संदेश सुना आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ की तरफ से। और युवाणी अंक में जसवीर सिंह हाजिर है कार्यक्रम की अगली बातचीत के साथ। युवा साथियों, बात थी मलिन बस्तियों की, बात थी गंदगी की, बात थी हमारे जीवन की, स्वस्थ रहने की और इन सभी की जागरूकता की। साथ ही साथ दोस्तों, जब हम स्वस्थ और स्वस्थ शरीर की बात करते हैं और कहीं ना कहीं हमारा ध्यान योग की तरफ भी जाता है। अब हम योग का जो शाब्दिक अर्थ है उसको अगर हम समझें तो उसका मतलब होता है जोड़ना। यानी योग शब्द संस्कृति की युज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि जोड़ना, और अर्थात स्वयं को उस परम शक्ति के साथ जोड़ना जिसमें यह संसार चल रहा है। योग आदिकाल से भारत भूमि पर अनवरत चल रहा है। ये भारतीय संस्कृति की उपमा देन है। योग से मनुष्य में स्थिरता, धीरता, अनुशासन का जन्म होता है। वहीं अनुशासन से व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व से चरित्र का विकास होता है और चरित्र एक नए समाज का निर्माण करता है। और दोस्तों, इस योग का जो मुख्य अगर हम उद्देश्य समझ लें या उसकी बात को समझ लें कि योग क्या है, तो योग का जो मुख्य उद्देश्य है उच्चतर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना है। योग एक श्राव संस्थान की कार्यप्रणाली को अति कार्यात्मक बनाता है, दूसरी ओर भौतिक शरीर को रोगों से मुक्त रखता है। सामान्यतः योग के जो अगर हम उद्देश्य की बात की थी, जैसे मानसिक शक्ति का विकास करता है, दिल दिमाग शांत रहता है। जब एक मनुष्य का दिल और दिमाग दोस्तों शांत रहता है तो वो किसी भी कार्य को, किसी भी डिसीजन को लेने में सक्षम होता है और बढ़िया डिसीजन जो उसके हित में होता है वो ले सकता है। रचनात्मकता का विकास होता है शरीर के अंदर। आपके अंदर दिमाग जब शांत रहता है, सोच और पॉजिटिव रहती है, तो आप एक रचनात्मक रूप से उसका एक विकास कर सकते हैं अपने आप के अंदर से। मानसिक विकास हो जाता है, जैसे कि हमने आपसे पहले बात की, तनाव से आप मुक्त रहते हो, टेंशन आपकी दूर रहती है योग करने से। और जो भी विरोधी प्रकृति जीवन शैली है उसमें सुधार होता है, जैसे कि आप फास्ट फूड खा लेते हैं, देर से सोना और देर से उठना, ये सभी चीज़ें जो क्या है कि उस योग से कहीं ना कहीं दूर हो जाती हैं। और मानसिक शांति प्रदान, जिसमें कि आपका ध्यान योग में रहता है, आप उच्चतम स्तर पर योग करते हैं, मानसिक स्थिरता बनाते हैं, तो इन सभी चीज़ों से जो मानसिक स्थिरता बनती है तो उसमें आपकी जो सोच डेवलप होती है, पॉजिटिव सोच होती है, जहाँ पर आप पॉजिटिव सोच के साथ आप अपने कार्यों को, निपुण कार्य को करने के लिए सक्षम हो जाते हैं और अधिक सक्षम हो जाते हैं। और जो शारीरिक रोगों से जो हमें मुक्ति मिलती है वो दोस्तों अलग एक पहचान हो जाती है। हमारा शरीर और मन ये सब स्वस्थ रहते हैं। जब कहते हैं कि मन और तन स्वस्थ हैं तो किसी तरह की कोई भी जो परेशानी है या कोई भी किसी तरह का कोई भी मुश्किल है उसको हम पार लंग जाते हैं, उससे पार यानी उससे दूर हो जाते हैं या उससे हम अपने आप को बचा लेते हैं। और जब शारीरिक स्वस्थता हमारे साथ रहती है तो निश्चित रूप से दोस्तों आप एक, अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई शारीरिक रूप से युवा साथी अगर कोई स्वस्थ है तो निश्चित रूप से वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। क्योंकि वो इसलिए धनी व्यक्ति है क्योंकि उसको किसी तरह के शारीरिक रोग नहीं है और इस शरीर रूप घोड़े पर बैठकर आप अपनी ज़िंदगी की जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जितने भी आपके टारगेट्स हैं, जितने भी आपके मुख्य उद्देश्य हैं, उसको आप संपूर्ण पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आप कमा नहीं पाएंगे या कुछ बेहतर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। और इस सभी चीज़ों के लिए दोस्तों योग जो है हमारी ज़िंदगी का मुख्य अंग होना चाहिए। हम सभी इस योग को अपने जीवन में उतार लें। जिस तरह से हमारा फ़ोन, मोबाइल फ़ोन की हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन हमारे साथ रहता है 24 घंटे, हम उस पर ध्यान रखते हैं, हम मोबाइल फ़ोन के बिना रह भी नहीं पाते। उसी तरह से हमारा ज़िंदगी का हिस्सा मोबाइल फ़ोन है, उसी तरह

योग जो है हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। और कभी भी आप सुबह उठें, जल्दी उठें, अपना नैतिक जो दैनिक जो कार्यक्रम है, दैनिक जो क्रिया है, उनको शोध कर आप योग के लिए कम से कम आधा घंटा तो अपने आप को दें, शरीर को दें। बहुत से ऐसे योग हैं, ओम विलोम और कपालभाति, जो मात्र आप बैठ कर अपने बिल्कुल दरी बिछा कर, नीचे वो योगा मैट बिछा कर आप आराम से तसल्ली से उसको कर सकते हैं। और इसी दो योगों से आप अपने आप में ये पाएंगे कि आप बिल्कुल शारीरिक रोगों से दूर होते जा रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम शारीरिक रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो हमारी सोच भी नेगेटिव होती जाती है, पैसों का जो खर्च है वो भी बढ़ता जाता है, डॉक्टर्स के बिल, दवाइयों के बिल, टेस्ट कराने, ये सभी चीज़ें बहुत ही हमारे लिए बोरियत हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम इससे बोगस रोग के और कुछ ऐसे सोच हमारे दिमाग में, नेगेटिव सोच हमारे दिमाग में चली जाती है। खैर दोस्तों, हम नहीं चाहेंगे कि आप नेगेटिव सोच रखें, मगर हम इस वाणी के मार्फत आपकी जो सोच है पॉजिटिव रखते हैं, मनोरंजन का पूरा ध्यान रखते हैं। और जब मनोरंजन की बात आई तो फिल्मी गीत बिल्कुल तैयार है, जिगरी दोस्त फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो सुनते हैं दोस्तों जिगरी दोस्त फिल्म से ये गीत।

जी हाँ युवा साथियों, भी आप सुन रहे थे जिगरी दोस्त फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। खैर दोस्तों, बातचीत योग की थी और योग हमारी ज़िंदगी को किस तरह से बदलाव करता है, किस तरह से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखता है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों कि मन जो है, मन की जो शांति है या जीवन को शांतमय रखने के जो तरीके हैं, उसको हम कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना कर, किन किन बातों को ध्यान रखकर हम उन तनाव से बच जाएं, शारीरिक जो शांति है, जीवन के अंदर जो शांति वो बनी रहे। तो खैर दोस्तों, जैसे कि पहले ही हमने आपसे बात की थी कि जो ज़िंदगी की बात करें या शारीरिक रूप से बात करें या मानसिक रूप से बात करें, उसकी सब की अगर हम बात करें तो योग हमारे लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। मन को शांत कैसे रखें, मन को स्थिर और शांत रखना सच्ची खुशी और मानसिक संतुलन की एक कुंजी है। और उसकी एक कुंजी जो सबसे बड़ी है वो योग है, योग का महत्व, जैसे हमने आपको बताया था। और दोस्तों, मन की शांति का महत्व मानव स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए है, अत्यधिक है। ये केवल मानसिक स्थिति नहीं है बल्कि ये शारीरिक स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। युवा साथियों, तनाव, अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे यदि अनियंत्रित रह जाएं तो व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जब मन अशांत होता है तो ये शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है, जिसमें उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, हृदय रोग यानी हमारा जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है और अन्य गंभीर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और तनाव के कारण तो दोस्तों मन में चिंता और नकारात्मक सोच रहती है, सोच का प्रभाव बना रहता है कि वो हमें ऐसा बोलता है, वो हमें ऐसा बोलता है, और जो न केवल एकाग्रता को भी नुकसान पहुँचाता है बल्कि निर्णय लेने की क्षमता पर भी हमारे भी विपरीत प्रभाव डाल देता है। और अक्सर दोस्तों आपने सुना होगा कि जब तनाव हो या किसी ने कुछ कह दिया हो तो उस बीच हमारे तनाव दिमाग में आ जाता है, हम अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, जैसे पागलपन का एक, समझ लीजिए, एक छोटा सा एक असर दिखाई देता है कि हम उसे ये कहेंगे, हम उसे यूँ कहेंगे, हम उसे ये कहेंगे। मगर उसका सबसे अच्छा तरीका ये है युवा साथियों कि दो ही बातें आती हैं कि जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात, ऐसी बात कहता है जिससे आपका मन पर ठेस पहुँचती है, तो या तो बात भूल जाइए तो व्यक्ति के साथ आप हाथ मिला सकते हैं, अगर यदि आप बात नहीं भूलते तो फिर व्यक्ति को भूल जाइए। इसके वजह से आपके, आप सोचेंगे, आप देखेंगे कि आपके मन में शांत, एकदम शांति महसूस होगी। उसके प्रति जो आपकी द्वेषता के भाव थे, उसके प्रति आप नकारात्मक की जो सोच रखते थे, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों दो ही बातें हो जाती हैं कि या तो व्यक्ति याद रखिए या बात याद रखिए। व्यक्ति याद रखते हैं तो बात भूल जाइए, और बात याद रखते हैं तो व्यक्ति भूल जाइए, ये बिल्कुल तय है। और इन बातों को हमारे जितने भी जो ज्ञानी लोग हैं या योग जो करते हैं, उनकी साथ ऐसी बातें होती रहती हैं। तो वो भी क्योंकि जो हम समाज के अंदर, जिस हम समाज के अंदर रहते हैं या जो मनुष्य जीवन है उसमें जो उतार चढ़ाव है, ये आते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आपके पास सुख आया है तो दुख निश्चित रूप से अगले पल आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए। अगर यदि आपके साथ दुख के वो ज़िंदगी की वो समस्याएँ या कह लीजिए वो कठिन दौर चल रहा है, तो निश्चित रूप से ये जान के चलिए कि आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत आरामदायक और खुशियों से भरा होगा।

क्योंकि दुख और सुख वो धूप और छांव का खेल है दोस्तों। जो एक बार धूप आती है, फिर उसके बाद छांव आ जाती है, फिर छांव आती है, फिर धूप आती है। तो ये जो पल पल में बदलते जो रहस्यमक जो घटनाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, उसको अगर हम यदि सोचते रहें, तनाव लेते रहें कि ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर ये बातें हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि एक ईश्वरीय शक्ति है जो ऊपर बैठा उस बात को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, और वो देखना चाहता है कि आप कितने मजबूत हैं। कोई भी समस्या आपको दी है ज़िंदगी के अंदर, तो आप निश्चित जानिए, देखिए आप थोड़ा सा आप एक मिनट के लिए यहाँ रुके और सोच के देखें, जो पीछे आपने ज़िंदगी जी है या आपने जितने भी वर्ष आपने जी कर अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, जो समझ आपको थी जब तब से लेकर आज तक, कितनी समस्याएं आपकी ज़िंदगी के अंदर आई, क्या वो समस्या स्थिर है? नहीं, वो स्थिर नहीं है, क्योंकि वो धीरे आई थी, जैसे आई थी वैसे वो चली भी गई। और कितनी बार आप खुशियों के साथ सराबोर रहे हों, फिर क्या वो खुशियाँ स्थिर रही? अगर सोचे तो नहीं, वो खुशियाँ भी नहीं रही। जब खुशियाँ भी नहीं रही तो फिर हमारे ये दुख भरे ज़िंदगी के जो पल हैं वो भी नहीं रहेंगे। खैर, ये दिल है ना, बहुत बेचारा है दोस्तों, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, सोच सोच के वो नकारात्मक सोच को अपने आप में पैदा कर लेता है। तो गीत सुन लेते हैं दोस्तों, इसी तरह का कोई।

जी हाँ युवा साथियों, अभी आप ज्वल थी फिल्म से ये गीत सुन रहे थे। आवाज़ थी किशोर कुमार की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का था, संगीत सचिंद्र बर्मन का। खैर दोस्तों, बातचीत वहीं सामाजिक तनाव की बात करें, सामाजिक समर्थन की बात करें, संबंधों की बात करें और शांतमय जीवन की हम बात करें, तो इनका सभी का अपना अपना एक रुतबा है, अपना अपना एक स्थान है। जो बात हमने आपको पहले बताई कि जैसे योग और ध्यान से इन जितनी भी हमारी समस्या हैं उनको हम निजात पा सकते हैं, उनसे हम दूर हो सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। मगर दोस्तों, एक साथ जो हमने ये बात भी बताई कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों कि जो होना है वो जो काल का चक्र है वो वैसे ही होगा, मगर वो एक स्थिर नहीं है। धूप और छांव है, खुशियां और गम है, जहां खुशी है वहां गम है, जैसे कि आपको हमने पहले भी बात की। इसलिए युवा दोस्तों, आप इस बात को सोचें कि आप मेरा क्या बनेगा, क्योंकि भगवान ने, उस ईश्वरीय शक्ति ने आपके लिए वो एक रास्ता बना रखा है जिस रास्ते पे आपको चलकर अपनी ज़िंदगी का पूरा सफ़र काटना है। और इस बीच हम अपने जीवन में शांति और तनाव ये सब अपने बीच भीतर को पैदा कर लें, शांति पैदा करें तो ठीक है, नहीं तो तनाव पैदा कर ले, नकारात्मक सोच को पैदा कर ले तो उससे होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में इतना है कि आप अपना कर्म और अपना जो बेस्ट है वो दे सकते हैं, आप संघर्ष कर सकते हैं, आप सोच को अपने सकारात्मक रूप से ले जाकर उस विषय पर, उस क्षेत्र में, उस जगह से, उस तरफ आप अपने आप को फोर्स ले जा सकते हैं कि मुझे ये अगर ज़िंदगी के अंदर ये मुझे आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो सभी उन रास्तों को आपको उस पर चलना होगा, क्योंकि जो रास्ता है वो ईश्वरीय शक्ति से आपको पहचान आ जाती है। और जब मन स्थिर और शांत रहता है तो दोस्तों ज़िंदगी के अंदर और मन के अंदर 2400 घंटे एक सच्ची खुशी महसूस होती है, और उस खुशी की वजह से जो आपका मानसिक संतुलन है बिल्कुल बैलेंस रहता है। कभी भी किसी से बातचीत करते हैं तो कभी आपको सामने वाले को ये पता ही नहीं लगता कि ये जो व्यक्ति बातचीत कर रहा है किसी तरह से किसी तनाव में है। जब आप खुश रहते हैं तो दोस्तों ये एक मान के चलिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है, आपके उन सभी कारणों को जानने की कोशिश करेगा कि आप इतनी व्यस्त दुनिया के अंदर, व्यस्त समय के अंदर, इतने भागम भाग के अंदर अपने आप को अपने कैसे तनाव से मुक्त रख रखा है, क्योंकि हर व्यक्ति तनावग्रस्त है, किसी को किसी बात का तनाव है, किसी को किसी बात का तनाव है, मगर ज़िंदगी के अंदर शांति रखनी है तो निश्चित हमारी इन बातों को हम सभी इस बातों को ध्यान में रखें कि ये पहले तो ध्यान और योग का सहारा लें, और साथ में ये बात को अपने आप को समझा के रखें कि जो भी समय चल रहा है वो स्थिर नहीं रहेगा, वो एक ना एक दिन चला जाएगा, और जब वो चला जाएगा तो दूसरा समय फिर आएगा, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। तो इसलिए अपने आप को किसी भी प्रकार से नकारात्मक सोच की तरफ नहीं ले जाना है, सकारात्मक सोचना है। जो भी काम कर रहे हैं आप अपना बेस्ट दीजिए, बढ़िया कीजिए, और जब आप बढ़िया करेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वहाँ पर आपके साथ बहुत अच्छा होता चला जाएगा। और ये सब बातें धीरे धीरे दोस्तों जब आपको समझ में आने लगेंगी, या कह लीजिए जब आपके मन में ये जो सभी तरह की बातें को आप जब उसको सार आप उसको अनुभव करेंगे, तो आपके मन में एक अजीब खुशी होगी कि जी ये बात बिल्कुल सही है कि जो मुश्किल के दौर में हमने कोशिश की थी मगर वो मुश्किल का दौर नहीं गया, वो दौर वैसे रहा, मगर जब उसका समय आया उस दौर का तो अपने आप वो चला भी गया। और जो अच्छे मित्र हैं उनका साथ दीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, जो सकारात्मक सोच रखते हैं उनके साथ बातचीत कीजिए। इससे होता क्या है कि ज़िंदगी के अंदर जो भी आपकी समस्याएं हैं उनसे आप धीरे धीरे निजात पा जाते हैं। और जब इंसान के ऊपर दुख या थोड़ा सा एक नकारात्मक कोई समस्या या वो समय आ जाता है तो दोस्तों उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर इंसान की मजबूती का पहचान होती है कि इंसान कितना मजबूत है। खैर युवा साथियों, बातचीत हम और भी करेंगे मगर हम आपको गीत सुनवा दें कि अगर कई बार क्या होता है दोस्तों, एक बात समझ में एक याद आ गई, अब उसको हम कहते चले जाएं, कई बार कोई इंसान आता है हमारी ज़िंदगी के अंदर और एकदम से हमें एकदम

खुशी हो जाती है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को देखते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी बातें को बताना चाहते हैं, इसलिए वो व्यक्ति हमारी ज़िंदगी के अंदर खास हो जाता है। और जब खास हो जाता है तो इस तरह के गीत जो है हम आपको ज़रूर सुनवाते हैं।

जी हाँ युवा साथियों, जीने की राह फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत सुना। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। युवा साथियों, बात वहीं से शुरू करते हैं कि जिंदगी के अंदर शांतमय जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं। जैसे कि हमने आपसे पहले बात की और कुछ एक पहलू है जिनको हम और भी उस पर बातचीत करेंगे। जैसे कि सकारात्मक सोच की बात में हमने बात की कि जीवन में अगर शांति चाहिए तो हमारी सकारात्मक सोच जरूरी है, और उसके साथ साथ दोस्तों स्वास्थ्यवर्धक जो आहार है उनको हमें खाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे भी उत्तेजित कर देने वाले या कह लीजिए जो गर्म फूड्स हैं या खाने वाली चीज़ें हैं, आहार हैं, उनको अगर ज़्यादा खाएंगे तो नेचुरली हमारे मन में अवसाद का रूप धारणा करेंगे। तो इस

हैं कि जो स्वास्थ्यवर्धक जो आहार है उसे हम अपने स्वास्थ्य के अंदर या अपने खाने के अंदर शामिल करें, जैसे कुछ विशेष खाद्य पदार्थ जैसे नट्स, बीज, ताज़ा फल, सब्जियां, ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त मछली और साबुत अनाज मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। दोस्तों, ये पदार्थ न केवल हमें आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं बल्कि हमारे जो मस्तिष्क की जो कार्यक्षमता को भी बढ़ाते हैं। और इसी तरह से दोस्तों, ये जो जितने भी आहार है उस पर खाने पीने पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि जीवन हमारा जो शांति में चल सके। और दोस्तों, अगला जो हम बात करें कि अगला जो कदम है वो हमारा है सामाजिक समर्थन का, संबंधों का, कि हमारे संबंध कैसे हैं हमारे दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे पहले बात की, जिन दोस्तों के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छा बोलचाल है, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर सकारात्मक सोच को पैदा करते हैं, तो उनसे आप ज़्यादा बातचीत कीजिए क्योंकि उनके समर्थन के साथ आपके जो ये जीवन में शांति का जो अभियान जो आपने शुरू किया, अभियान को आपकी सफलता की ओर जरूर ले जाएगा। और संबंध आपके अच्छे हों, हर आदमी से आपकी बातचीत हो, मगर कम से कम ध्यान रखिए, आपको ये बात तय करनी पड़ेगी कि सामने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ बातचीत करता है या नकारात्मक के साथ। जो नकारात्मक सोच रखते हैं दोस्तों, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें, सकारात्मक सोच के साथ उन व्यक्तियों के साथ आप अपनी बातचीत रखें। और दो अगला जो हमारा जो टॉपिक्स कह लीजिए या वो बिंदु कह लीजिए, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि कभी भी कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई टारगेट्स किया कि आपको ये काम या ऐसे इस तरह काम से काम करना है, तो उसका जो समय प्रबंधन है उसको भी सीखे, उसकी तकनीक को भी सीखे। और उस तकनीक के साथ जब आप समय प्रबंधन के साथ जो काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में शांति जरूर पैदा होती है। कोई काम आपने तय किया, वो काम पूरा नहीं हो पाया, तो आपके मन में क्या अशांत रहेगा, क्योंकि आपको ये चिंता रहेगी कि इस काम को हमने करने की शुरुआत की मगर वो काम आज हो जाना चाहिए था मगर हुआ नहीं है, तो इस वजह से सोच सोच के आपके दिमाग में जो है कि अशांति सी रहेगी, मन में अस्थिरता सी रहेगी और शांतमय जीवन के अंदर एक फिर प्रकार से एक उथल पुथल शुरू हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम करें उसका एक प्रबंधन करें, उसका एक टाइम मैनेजमेंट करें ताकि वो टाइम मैनेजमेंट के साथ उस कार्यक्रम को, उस कार्य को पूरा कर सकें। और जो जो विशेष रूप से अगर हम बात करें कि जो व्यक्ति कहते हैं कि अक्सर जो विवेकशील होते हैं, विश्राम के तरीके को ध्यान रखना चाहिए विवेकशील आदमी, और जो मेहनती लोग होते हैं उनके लिए चिंता, अवसाद और ये अशांति ये कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि दोस्तों वो रात दिन भर वो मेहनत करते हैं और भाग दौड़ करते हैं, और रात को जब वो आते हैं तो खाना खाने के बाद वो थक हार के जब सो जाते हैं तो वो उस गहरी नींद में सोते हैं कि उनको कुछ याद ही नहीं रहता। सुबह फिर उठते हैं, फिर वो अपनी मजदूरी दिहाड़ी की तरफ भागने लगते हैं और वहाँ से वो अपना जो जीवन यापन रूपी जितना भी वो पैसा वो कमा कर अपने जो परिवार के लोगों को वो देते हैं। खैर दोस्तों, बात यही भी है कि हम इन बातचीत के साथ साथ आपको गीत भी सुनवाएं, और गीत बिल्कुल तैयार है दोस्तों, हिमालय की गोद में फिल्म से, और आवाज़ मुकेश की है और शब्द रचना आनंद बख्शी की, धुन कल्याण जी आनंद जी की।

ये युवा साथियों, अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी हिमालय की गोद में, आवाज़ थी मुकेश की। खैर युवा साथियों, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आ चुका है। और दोस्तों, अंतिम पड़ाव में जैसे कि आप जानते हैं कि आज का इतिहास यानी 10 जुलाई को क्या कुछ हुआ उसकी बात हम करें, तो युवा साथियों, जो द्वितीय विश्व युद्ध 10 जुलाई 1943 को ऑपरेशन हुस्की सिलसिले का शुरू हुआ था, और 10 जुलाई 1962 को दुनिया का पहला संचार उपग्रह टेलीस्टार कक्षा में लॉन्च किया गया था, और 10 जुलाई 1973 को बहामा को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में पूर्ण आज़ादी मिली थी। और दोस्तों, आज के दिन यानी 10 जुलाई 2005 को अर्जेंटीना कनिष्ठ विश्व हॉकी का नया विजेता बन गया था। विश्व कप जो हॉकी थी उसका एक विजेता बना था। और हम बात करें तो दोस्तों, 10 जुलाई 1921 में प्रसिद्ध गीतकार और शायर असद भोपाली का जन्म हुआ था। 10 जुलाई 1934 को भारतीय समाज सेवी रजनीकांत अरोल का जन्म हुआ था, और 10 जुलाई 1949 को भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर का जन्म हुआ था, और 10 जुलाई 1950 को भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना का जन्म हुआ था, और 10 जुलाई 1951 को भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जन्म हुआ था। और इन सभी बातों से दोस्तों, ये थी कुछ आज की इतिहास और आज की बातचीत, जिसमें हमने आपको बताया कि 10 जुलाई को क्या कुछ हुआ था। और हम आपको ये भी बता दें दोस्तों कि कल युववाणी 5 बजे से 6 बजे तक आप सुनेंगे कल के कार्यक्रम में के आधार पर। और आज की इस युववाणी अंक का हम अगला गीत आपको सुनवा देते हैं, और गीत जो हमने लिया है फिल्म हीर रांझा से, आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना कैफी आजमीनी की और धुन मदन मोहन की। तो सुनिए युवा साथियों ये गीत।

जी युवा साथियों, अभी आपने हीर रांझा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनाई गीत। गीत के बोल लिखे थे कैफी आजमी ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने। और युवा साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम बिल्कुल तैयार हैं लेकर, और गीत भी हम आपको सुनवाएंगे। ये कार्यक्रम की अंतिम पेशकश होगी। इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के साथ हम गीत लेकर पहुंचे हैं गोरा और काला फिल्म से, आवाज़ें मुकेश और लता मंगेशकर की, और गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जी हाँ युवा साथियों, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। बिल्कुल दोस्तों, अगर ये कार्यक्रम आपको सुनने को मिलेगा आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ की तरफ से, ट्यून कीजिए मीडियम वेव 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। अब अपने दोस्त जसवीर सिंह को कल तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम 14.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे सैरायकी की कड़ी संख्या 2 और संध्या 7 बजे आप चौपाल कार्यक्रम में सुनेंगे फरमाइशी राजस्थानी लोकगीतों का, भजनों का कार्यक्रम गीतारा गजरो, और उपलब्ध रही तो बाजार भाव मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:45 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम में एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम आप सुने सुगम संगीत। रात्रि 9:30 पर आप सुने पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू। फिल्म संगीत रात्रि 10:30 पर। अभी आप सुन रहे थे आज की मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। आइए अब सुने कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। सवेरे 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सवेरे 6:45 पर चिंतन का समय रहेगा और इसमें आप सुनेंगे समर्पण विषय पर चिंतन और वाचक स्वस्वामी अशोक भारती के कार्यक्रम विवरण। सवेरे 6:50 पर खेती और अवस्थे कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी। सवेरे 7:10 पर विश्व होगा चारे के लिए नेपियर घास की बुआई। मानस कर्ण की कड़ी

संख्या 301 भी सुनी आई जाएगी प्रातः 7:20 पर। सुप्रभात कार्यक्रम में आप सवेरे 7:30 पर वार्ता सुनेंगे, पेड़ हमारे सच्चे मित्र, वार्ताकार होंगे अजय कुमार। इसके अलावा आप जिन विषयों पर बातचीत सुनेंगे, होड़ की दौड़ से बचें, प्रेम को स्वभाव बनाइए, पेड़ लगाइए, प्राण वायु को बचाइए। सुगम संगीत कार्यक्रम में चंद भजन आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। सुबह 9:10 पर राजस्थान लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में कलाकार होंगे पृथ्वीराज ओढ़। फिल्म संगीत में डुएट सॉन्ग सुनिए सुबह 9:30 पर। सवेरे 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। 12:05 पर आप सुनेंगे फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। सुगम संगीत में चंद गज़लें आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। खेत खलिहान कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा पशुओं के लिए गर्मी बरसात ध्यान रखने योग्य बातें, समय 12:50 पर। दिन में 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी। विषय होंगे विश्व जनसंख्या दिवस, भारत के विभिन्न बौद्ध मठ, बारिश के मौसम में फर्नीचर की देखभाल, खाना बनाना शौक या जरूरत और काम की बातें। फिल्म संगीत दिन में 2:30 पर। उर्दू सर्विस आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगी संध्या 3 बजे। युववाणी कार्यक्रम संध्या 5 बजे। कार्यक्रम विवरण संध्या 6 बजे। सेराइकी की कड़ी संख्या 3 सुनवाई जाएगी संध्या 6:05 पर। चौपाल कार्यक्रम में संध्या 7 बजे आप सुनेंगे एक रेडियो रिपोर्ट, जैविक खेती के प्रगतिशील किसान कानाराम भोनवाल से गुलशन मेघानी की बातचीत। इसके अलावा चर्चा के विषय होंगे नरमे की फसल में देखभाल, भिंडी की उन्नत किस्में, सुअर पालन और उपलब्ध रही तो बाजार भाव, मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत पर आधारित फिल्मी गीत, फिल्म संगीत रात्रि 8 बजे। और सुगम संगीत चंद गज़लें आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। और आकाशवाणी दिल्ली से राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपनी आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोता, हम पुनः याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू। समय पर फिर से नोट कीजिए, आज रात्रि 9:30 पर। हम आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हो चुके हैं। अब सुनिए सरायकी की कड़ी संख्या 2।

0: शुरू थींदी है। इहो बिंदु ते नदी को सागरमती दे ना तो भी सड़िया वेंदे। नदी इत्थों राजस्थान दे मारवाड़ क्षेत्र दी पहाड़ियां ते मैदानां विचों दक्षिण पश्चिम वाली दिशा विच वांदी है। लूणी पश्चिम राजस्थान दी सब तो खास नदी है। हिंदे विच बजरी भरपूर है। बजरी घर बनावन दे काम आंदी है। लूणी नदी दा साफ पानी गंदा क्यों थींदा पे? क्योंकि हिंदे आसपास कपड़े रंगन दे कारखाने हैं जिन्हां तों निकलण वाला गंदा पानी लूणी नदी विच आ मिलदे, जे कारण नदी दा पानी गंदा थींदा पे। हर साल लूणी विच पाली जिले दी उद्योगिक कारखानियां ने रसायनिक पानी छोड़ दिते। कैमिकल वाला बदबूदार काले रंग दा विशैला पानी धुंधाड़ा दी जड़ां दे तलू बाड़मेर जिले दी हद्दां विच वधदा पे। ये विशैला पानी किसानां दी उपजाऊ जमीन को बंजर करेंदा पे। लूणी नदी दे सोने ते प्रकृतिक नज़ारियां को देखण दा मजा मानसून विच आंदे। इत्थां मार्च दे महीने हर साल थार महोत्सव भी मनाया वेंदे। राजस्थान दे सीमावर्ती जिले बाड़मेर दी कला संस्कृति ते पर्यटन को अगू वधावण वास्ते इत्थां त्रै दिहाड़े दा थार महोत्सव दा आयोजन कीता वेंदे। ही महोत्सव विच देसी ते विदेशी पर्यटकां दा जमावड़ा लगदे। लूणी नदी दे हर साल भव्य आरती दा भी आयोजन कीता वेंदे। 1100 दिव्या नाल ए आरती कीती वेंदी है। लूणी दे किनारे मल्ली नाथ जी लोक देवता दा मंदर है। मानसून विच लूणी दी पूजा कीती वेंदी है। राजस्थान दे मशहूर पशु मेलियां विच बाड़मेर दे मल्ली नाथ पशु मेले दी विधिवत शुरुआत कीती वेंदी है। 600 साल पुराने ही मेले विच प्रदेश दे नाल दूजे राज्यां दे पशु पालक भी हिस्सा घिंदे। लूणी दी कुछ खास उपलब्धियां जिवें सरदार समंद परियोजना लूणी नदी दे किनारे है। राजस्थान दी लूणी घाटी विच उपघाटियां दी भी भरमार है। लूणी नदी दा बहाव बहु बारिश वाले क्षेत्रां तों घट बारिश वाले मरु प्रदेश दे पासे है। पुष्कर दी पहाड़ियां उत्ते भारी बारिश पौवण करके लूणी दे कोल बलोतरा दे आसे पासे दा धरातल झिक्का है। हुणे तुसां सुनदे पए हवे नीलम बजाज दी वार्ता। आओ हुण सुनो सिराइकी गीत संगीत।
1: ए हिन आबिदा परवीन।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे सराइकी की कड़ी संख्या दूसरी, मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या की 6:30 होने वाले हैं। अब आप थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे और तत्पश्चात संध्या 6:40 पर जिले की चिट्ठी और संध्या 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से अनुप्रसारित होंगे। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर, दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से कोटा बूंदी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 जुलाई को विशेष आयोजन, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन शिरकत करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कल, विशेष जन जागरूकता सप्ताह शुरू होगा। और प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, करीब एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों के कमजोर रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की विदेश यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड दौरे पर हैं। ऑकलैंड पहुंचने पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी की अगुवानी की। प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस दौरे से भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा। इससे पहले श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान खेल सहयोग के रोड मैप पर भी चर्चा की।

0: दोनों देशों के बीच कबड्डी, खो खो जैसे पारंपरिक खेलों और अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन मैचों और आयोजनों की मेजबानी के अवसरों का पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रोडमैप से साझा प्राथमिकताओं, संसाधनों और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान होगी, जिसका दोनों देशों को फायदा होगा।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसके तहत उच्च अल्कोहल मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने की कवायद की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल वाली दवाओं के लिए मौजूदा छूट खत्म कर दी है। मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट नहीं मिलेगी। इन्हें अब औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के तहत आवश्यक लाइसेंस लेना होगा। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से राजस्थान में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। इससे कोटा बूंदी क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि बूंदी और केशवराय पाटन क्षेत्र के किसानों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर नहरों में पानी की कमी और फसलों को नुकसान की आशंका पर चिंता जताई थी। श्री बिरला ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकाला। बांध से कुल 6000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर सहमति बनी है। मीडिया से बातचीत में श्री बिरला ने बताया कि इससे करीब 2.25 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के किसानों को फायदा पहुँचेगा।
2: पानी गांधी सागर से राणा प्रताप सागर में आना और राणा प्रताप सागर में पानी कम होने के कारण नहरों को छोड़ा जाना संभव नहीं था। गांधी सागर से पानी छोड़ने के बाद जब राणा सागर पानी आएगा तब नहरों में पानी आएगा। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया, वहाँ के मंत्री से कहा कि वह गांधी सागर में पानी राणा प्रताप को दे ताकि हमारे इलाके के किसानों के खेत तक पानी पहुंच सके। वहाँ की सरकार ने सिद्धांत सहमति दे दी है और आज कोटा के LMC RMC में पानी शुरू हो जाएगा।
0: यमुना जल हस्तांतरण परियोजना की DPR की पहली समीक्षा बैठक आज जयपुर में हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अगुवाई में हुई इस बैठक में विभिन्न तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर चर्चा की गई। और ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारे सहयोगी रामनाथ मीना।
3: परियोजना के तहत अथनीकुंड बैराज से राजस्थान के हिस्से के यमुना के पानी को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए चूरू के आशियावास पहुंचाने की समीक्षा की गई। इसके लिए पाइपलाइन प्रणाली 386 MCX क्षमता के विशाल जलाशय और अन्य बिंदुओं पर मंथन हुआ। साथ ही रेणुकाजी, लखवार और किसाऊ बांधों की प्रगति, राजस्थान के हिस्से का पानी और लागत भागीदारी पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि 34,102 करोड़ रुपए की संयुक्त DPR केंद्रीय जल आयोग के पास विचाराधीन है।
0: मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा बैठक की। इसमें PM सूर्यघर योजना, PM कुसुम और ULA मॉडल की प्रगति पर जोर दिया गया। ULA मॉडल के जरिए 3 लाख घरों में 330 मेगावाट रूफ टॉप सोलर क्षमता स्थापित की जाएगी। बैठक में ये भी बताया गया कि राज्य के 172 ग्रिड सब स्टेशनों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS स्थापित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 15 जुलाई को विधानसभा में होने वाले इस अमृत महोत्सव में उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन भी शिरकत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज जयपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्र

0: मंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा की ओर से होने वाले इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी संबोधन होगा। उन्होंने बताया कि इस मौके पर विधायी गौरव यात्रा रखी गई है, जिसमें वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम होगा।
1: ये हमारे विधायकों का समागम, पूर्व वर्तमान का ये समागम का कार्यक्रम है, वह 15 जुलाई को प्रारंभ होगा। और इसमें दो बातें जो विशेष हैं, एक तो हम अतीत का संस्मरण भी करेंगे और भविष्य के विधायी मार्ग का भी उसमें चर्चा होगी। इस दृष्टि से चार बड़े कार्यक्रम इस वर्ष भर में विचार किए, उसमें से पहला कार्यक्रम हम आगामी 15 जुलाई को इसी विधानसभा परिसर में हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद विशेषता ये है कि दो सत्र और है, जिससे 75 साल के अंदर जो हमने कानून इस विधानसभा ने पारित किए उसमें से जो प्रमुख रहे हैं उसके बारे में जानकारी और चर्चा उन सत्रों में हो।
0: इस सम्मेलन में विधायी परंपराओं, सदन की गरिमा, संसदीय अनुभवों, चुनौतियों और विधानसभा के डिजिटल रूपांतरण सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने बताया कि सत्र के लिए तय कामकाज की समीक्षा की गई और इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। विश्व जनसंख्या दिवस कल मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य और लैंगिक समानता तथा जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से इस मौके पर विशेष जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश भर में कल से 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें छोटा परिवार, खुशहाल परिवार और बच्चों में सही अंतराल रखने के साधनों की जानकारी दी जाएगी। शिक्षण संस्थानों, एनसीसी और युवा क्लबों के सहयोग से जागरूकता रैलियां भी निकाली जाएंगी। साथ ही आशा सहयोगिनियों और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से घर घर संपर्क और परामर्श सेवाएं दी जाएंगी। इस बीच जनसंख्या स्थायित्व में बांसवाड़ा जिले ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ भरत राम मीणा ने बताया कि लगातार तीसरी बार जिले को ये उपलब्धि हासिल हुई है। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू की है। इसके तहत उद्योग, व्यापार, निर्यात, स्टार्टअप्स, पर्यटन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले 100 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। उद्योग आयुक्त नीलाब सक्सेना ने बताया कि इसके लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनी गई प्रतिभाओं को 100 आइकन्स कंपेंडियम में स्थान दिया जाएगा। साथ ही उनकी उपलब्धियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। श्रीगंगानगर के नेतेवाला के पास एक सड़क हादसे में आज 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि दुर्घटना कार, ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुई, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदेश भर में मॉनसून की रफ्तार आज से धीमी होने के आसार हैं। इससे अधिकतर स्थानों पर बरसात की गतिविधियों में कमी आ सकती है। हालांकि पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लगभग एक सप्ताह तक मॉनसून की परिस्थितियां कमजोर रहने की आशंका है। इस दौरान कहीं कहीं छुटपुट वर्षा का पूर्वानुमान है। इस बीच हनुमानगढ़ जिले के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। उधर पाली में आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही और धूप छांव का असर रहा। वहीं बाड़मेर में धूल भरी आंधी चली। सवाई माधोपुर सहित कई जगह उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। कोटा के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT का 5वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। रानपुर स्थित संस्थान के परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीटेक, एमटेक और पीएचडी की उपाधियां प्रदान की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को देश को विकसित बनाने के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के साथ ही राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर, दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से कोटा बूंदी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी।

0: मिलेगा। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 जुलाई को विशेष आयोजन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शिरकत करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कल, विशेष जन जागरूकता सप्ताह शुरू होगा। और प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, करीब एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों के कमजोर रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख रामेश्वर बेड़ा ने तैयार किया है। बीते दिनों जोधपुर को एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन की सौगात मिली। 37 एकड़ में बने इस आधुनिक टर्मिनल की वार्षिक क्षमता 20 लाख यात्रियों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। ये टर्मिनल भवन 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संशोधित उड़ान योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से छोटे शहरों को बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा और पर्यटन तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस नए टर्मिनल भवन के बनने से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसायियों में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों जोधपुर प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री के जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल पर प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। अगले दिन वे वापस आए और भाटी चौराहे पर आम जन के साथ चाय पी और स्थानीय नागरिकों से आत्मीय संवाद किया और इसके बाद यूपीआई से भुगतान कर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में विभिन्न विभागों में चयनित 1795 नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने भाग लिया। पचपदरा से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने 20 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। जोधपुर मंडल के 14 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। महिला यात्राओं की सुविधा के लिए जोधपुर रेलवे स्टेशन पर वात्सल्य कक्ष भी बनाया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कहा है कि ट्रेनों के बढ़ते विद्युतीकरण से पिछले दो वर्षों में 2,84,00,000 लीटर डीजल की बचत हुई है। वर्तमान में अधिकांश ट्रेनों का संचालन विद्युत इंजनों से हो रहा है, जिससे प्रदूषण और परिचालन लागत दोनों में कमी आई है। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में भी उत्तर पश्चिम रेलवे को देश में दूसरा स्थान मिला है। उधर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में नव लोकार्पित सेंटर फॉर डेवलपमेंट रेल कर्मियों और अधिकारियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी की पहल पर बनाए गए इस वातानुकूलित केंद्र में प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग, शोध, व्यक्तित्व विकास और नवाचार के कार्यक्रम होंगे। यहां डिजिटल म्यूजियम, पुस्तकालय, स्पोर्ट्स अरीना, डिजिटल वॉल और कैफे कॉर्नर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर जोधपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों की जानकारी आम जन को दी गई। आईआईटी जोधपुर के 2 वैज्ञानिक यूरोप स्थित सर्न CERN की एटलस परियोजना से जुड़कर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के आंकड़ों पर मशीन लर्निंग आधारित शोध करेंगे। वे ब्रह्मांड की संरचना, कणों के गुण और नए वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। केंद्र निदेशक प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल ने इसे संस्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। MBM विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने AI पर आधारित एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जो मिर्गी के दौरे से पहले चेतावनी देने में सक्षम है। भविष्य में इस तकनीक पर आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित करने की योजना है। वहीं IIT जोधपुर के शोधकर्ता नई पीढ़ी के बायो मार्कर्स भी विकसित कर रहे हैं, जिनसे उपचार शुरू होने से पहले ही कीमोथेरेपी की प्रभावशीलता का अनुमान लगाया जा सकेगा। शोध में सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, मल्टीकलर हाई पैरामीटर फ्लो साइटोमेट्री और आधुनिक आणविक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे कैंसर उपचार अधिक सटीक, व्यक्तिगत और प्रभावी बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास आयोजित किए गए। जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और आमजन ने योग कर नियमित जीवन में योग अपनाने का संदेश दिया। जोधपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरा मत है। दोनों देशों बीच कारोबार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करण माथे चर्चा करी जावेला। मध्य प्रदेश रा गांधी सागर बंधाऊ कोटा बूंदी हलका रा किसाना ने पाणत सारू पानी मिलेला। राजस्थान विधानसभा रा 75 साल पूरा वे वनरा सिलसिला माय 15 जुलाई ने खास आयोजन उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ई शिरकत करेला। विश्व जनसंख्या दिवस काल मनायो जावेला, जन जागरूकता सप्ताह शुरू भेला। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा सुस्त पड़ी, करीब एक सप्ताह ताई बिरखा कम भेवन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों रा दौरा रा आखिरी चरण में आज न्यूजीलैंड में ऑकलैंड पुग्या। न्यूजीलैंड रा प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन श्री मोदी री अगवानी किन्नी। प्रधानमंत्री मोदी रा ई दौराऊ भारत और न्यूजीलैंड बीच आपसी रिश्ता, कारोबार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत बनेला। इनु पहले श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया रा दौरा री बगत खेल सहयोग रा रोड मैप रा बारा माई चर्चा किन्नी। रोड मैप रा तहत दोनों देशों बीच कबड्डी और खो खो सरीखा पारंपरिक खेलों समेत न्यारा न्यारा खेलों ने बधावो देवन सारू प्रदर्शन मैच और आयोजना री मेजबानी रा मौका री ठाकरी जावेला। प्रधानमंत्री मोदी कहो कि इन भेड़ी प्राथमिकतावां साधन और सहयोग रा हलकां री पिछाण करी जावेला, जिणु दोनों देशों ने फायदो मिलेला।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
1: मध्य प्रदेश रा गांधी सागर बंधाऊ राजस्थान माय पाणत सारू पानी छोड़ियो जावेला। इनु कोटा बूंदी हलका रा किसाना ने फायदो मिलेला। ध्यानजोग है कि बूंदी और केशोराय पाटन हलका रा किसान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मिलर नहरा माय पानी री कमी और साखा ने नुकसान री शंका जताई ही, जी पाछे श्री बिरला राजस्थान और मध्य प्रदेश रा अहलकारा बातचीत कर और जरूरी हुक्म दीना। ई बंधाऊ 6000 क्यूसेक पानी छोड़न माथे एक राय बनी है। शुरुआती दौर में 200-300 क्यूसेक पानी छोड़ियो जावेला। इनु करीब 2.25 लाख हेक्टेयर कमांड हलका रा किसाना ने फायदो मिलेला।
3: पानी गांधी सागर से राणा प्रताप सागर आना और राणा प्रताप सागर में पानी कम होने के कारण नहरों को छोड़ा जाना संभव नहीं था। गांधी सागर से पानी छोड़ने के बाद जब राणा सागर पानी आएगा तब नहरों में पानी आएगा। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया, वहाँ के मंत्री से कहा कि वह गांधी सागर में पानी राणा प्रताप को दे ताकि हमारे इलाके के किसानों के खेत तक पानी पहुंच सके। वहाँ की सरकार ने सिद्धांत सहमति दे दी है और आज कोटा के LMC RMC में पानी शुरू हो जाएगा।
1: जयपुर माए आज यमुना जल हस्तांतरण परियोजना री DPR री पहली समीक्षा बैठक रखी जी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए हुई मीटिंग माए न्यारा न्यारा तकनीकी और माली पहलुआ ने बारा माए चर्चा करी जी। ई परियोजना रा तहत हथिनी कुंड बैराज राजस्थान री पांती रो यमुना नदी रो पानी जमी हेठे पाइप लेन रे जरिए चूरू जिला रा हासियावास ताई पोगावन रा काम रो जायजो लियो चियो। इन सारू पाइप लेन सिस्टम 386 MCX बुतारा जलाशय और दूजा मुद्दा माथे विचार करी चियो। ईसा गई रेणुका जी लखवार और किशाऊ बंधा रा काम राजस्थान रे पांती रा पानी और खर्च माय भागीदारी रे बारा माए विचार करी चियो। मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग री PM सूर्य घर योजना, PM कुसुम और UAL मॉडल सरीखी खास योजनावां रोई जायजो लीनो। UAL मॉडल रे जरिए 3 लाख घरां री छत माथे सूरज री रोशनी 330 MW बिजली

बनावन री मशीन लगाई चावेला। मीटिंग में बताई चियो कि राज्य रा 172 ग्रिड सब स्टेशन मत है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS लगाया चावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इंसा गए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मत है समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। राजस्थान विधानसभा रा 75 साल पूरा भेवन रा सिलसिला माए 15 जुलाई ने खास कार्यक्रम राख्यो जावेला। विधानसभा भवन माए राख्या जावन वाला ई अमृत महोत्सव कार्यक्रम माए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने शामिल फैला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज जयपुर माए खबर नवीसा ने आज जानकारी दीनी। वे बतायो कि राष्ट्र

0: राजस्थान विधानसभा रा 75 साल पूरा भेवन रा सिलसिला माए 15 जुलाई ने खास कार्यक्रम राख्यो जावेला। विधानसभा भवन माए राख्या जावन वाला ई अमृत महोत्सव कार्यक्रम माए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शामिल फैला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज जयपुर माए खबर नवीसा ने आज जानकारी दीनी। वे बतायो कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ री राजस्थान शाखा री ओर राख्या जावन वाला ई आयोजन माए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाई विचार बतावेला। श्री देवनानी बतायो कि ई मौके विधायी गौरव यात्राई राखी जावेला जिनमाए मौजूदा और पहली वाला विधायक ही शामिल वेला।
1: ये हमारे विधायकों का समागम पूरा वर्तमान का ये समागम का कार्यक्रम है, वह 15 जुलाई को प्रारंभ होगा और इसमें दो बातें जो विशेष हैं, एक तो हम अतीत का संस्मरण भी करेंगे और भविष्य के विधायी मार्ग का भी उसमें चर्चा होगी। इस दृष्टि से चार बड़े कार्यक्रम इस वर्ष भर में विचार किए, उसमें से पहला कार्यक्रम हम आगामी 15 जुलाई को इसी विधानसभा परिसर में हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद विशेषता यह है कि दो सत्र और है, इससे 75 साल के अंदर जो हमने कानून इस विधानसभाओं ने पारित किए हैं उसमें से जो प्रमुख रहे हैं उसके बारे में जानकारी और चर्चा उन सत्रों में हो।
0: सम्मेलन में विधायी परंपरावा सदन री गरिमा संसदीय अनुभव चुनौतियां समेत कई मुद्दा माथे चर्चा करी जावेला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज संसद भवन परिसर माए मानसून सत्र री तैयारियां रो जायजो लीनो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई 13 अगस्त तई चालेला। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए मेघवाल बतायो कि सत्र शुरू ते कामकाज रो जायजो लियो चियो और जरूरी हुक्म दिया चिया। काल विश्व जनसंख्या दिवस मनायो जावेला। इन रो मकसद परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक बराबरी और जनसंख्याओं जुड़िया मुद्दा ने बारा माए जाग जगावनो है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार री ओर ई मौके खास कार्यक्रम रख्या जावेला। आखर राज्य माए काल 18 जुलाई ताई जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह मनायो जावेला। इन तेत नाना और खुशहाल परिवार और बच्चा बीच सही आंतरो राखण सारू जरूरी साधना री जानकारी दी जावेला। स्कूल कॉलेज एनसीसी और युवा क्लबा नी मदद जागरूकता रैलियां निकाली जावेला। इस आगे आशा सहयोगिनियां और स्वास्थ्य कर्मचारियां रे जरिए घर घर संपर्क कर और परामर्श सेवा दी जावेला। इ बीच जनसंख्या स्थायित्व रा मामला माए बांसवाड़ा जिलो आखा राज्य माए अव्वल रहो है। जिला रा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भरत राम मीणा बतायो कि जिला ने लगातार तीजी दफा आ उपलब्धि हासिल भी है। उद्योग और वाणिज्य विभाग 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू की नी है। इन तहत उद्योग कारोबार परदेश माए बिक्री स्टार्टअप्स सैर सपाटा और दूजा हलका माए खास काम करने वाला 100 जना चुनिया जावेला। उद्योग आयुक्त नीलाभ सक्सेना बतायो कई सारू 15 अगस्त ताई ऑनलाइन तरीकों अर्जी दी जा सके है। वे बतायो कि चुनी ज्या लोगों ने 100 आइकन्स कंपेंडियम माए जगह दी जावेला और हमारी उपलब्धियां रो न्यारा न्यारा डिजिटल प्लेटफॉर्म माथे दर्शाव करियो जावेला। श्री गंगानगर जिला माए नेते वाला कना एक कार रे ट्रक री फेंट माए आ जावणु 3 जना री मौके ही मौत फेंकी। श्री गंगानगर रा एसपी हरिशंकर बतायो कि हादसा रे दौरान एक मोटरसाइकिल रही आ गाड़ियां ने फेंट माए आ जावणु 2 जना जख्मी फेंक्या। अरब मौसम प्रदेश माए अब करीब 1 सप्ताह ताई चौमासा री बिरखा थोड़ी कम पड़बा रा आसार है। हालांकि राज्य रा उगनी हलका माए कठे कठे हल्क्यों मझला दर्जा री बिरखा री संभावना है। इन दौरान कठे कठे छिटपुट बिरखा फे सके है। इ बीच हनुमानगढ़ जिला रा कई हलका माए आज बिरखा फी। पाली माए संवारे हुई बादला मंडिया रहा। दूजी कानी बाड़मेर माए आंधी चाली और सवाई माधोपुर समेत कई ठोणा उमस रो असर रहो। कोटारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT रो 5वां दीक्षांत समारोह आज संस्थान रा परिसर माए राखी चियो। कार्यक्रम माए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विद्यार्थियों ने बीटेक एमटेक और PhD री उपाधियां देर नवाजा। इ मौके वे कहो कि विद्यार्थियों ने विकसित भारत बनावण रा लक्ष्य माए सक्रिय भागीदारी करण सागे देश बनावण माए ताकत लगावनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दी इतवार ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम

चौपाल कार्यक्रम सुनिए सगळ्या श्रोतांमाने मुकेश भाई का घना घना राम राम, मोकळा मोकळा राम राम। श्रोताओं, आज शुक्रवार को दिन है और शुक्रवार के दिन लेके आए करा थारी फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम गीतारो गजरो। और इंगमा थे मेल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर संदेश और वे भेजो और भी मैं थारी फरमाइश भेजो बा बांचा। और तो सैशू पहला आप मेल को पतो बता देवा जका अपना कोई नया श्रोता अगर जुड़न लग रही है तो aircsuratgarhchopal@gmail.com aircsuratgarhchopal@gmail.com ई पर थे मेल भेज सको और बिंग पर आधारित आप गीत चलावांगा। सैशू पहला आप थारी पसंद पर चलावा वो भजन सुनो सा।

एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति।

0: मेडिकल क्लिनिक मैन बाजार बीज बायला तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: संदेश पहला सुनियो भाई लोगो भजन और ई भजन की जकी फरमाइश करी बे ईत रहा हूँ आपना ताई संदेश भेजो है गांव खोखरा वाणी शू विनोद बारासा विशाल बारासा विकास बारासा रोशनी बारासा और शगुन बारासा दतरंगी बाटापारा शू फरमाइश करी ही हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा हनुमानगढ़ टाउन शू संदेश भेजो है रज्जाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान इरफान खान और शहनाज इतने ही संदेश आयो है अपना ताई नाई वाला जिला हनुमानगढ़ शू भेजनिया है वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा गांव कलाना तहसील भादरा शू संदेश भेजो है विक्रम कड़वासरा सचिन सतीश योगेश युधव कड़वासरा कुंदन जाखड़ लीलाधर स्वामी किरसन मायल किडू राम जोया हनुमान सहारण और सुनील पाईवाल शर्मा फरमाइश करी ही नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र शू पीएस नावकर निर्मला नावकर और विशाल नावकर श्रोताओं अगले गीत की फरमाइश आपने ताई जकी भेजी है वो संदेश है परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा शू अशोक ग्रोवर प्रवीण ग्रोवर नीति ग्रोवर पवनीत ग्रोवर विक्रमजीत ग्रोवर गुजरात गांधीग्राम शू प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश जौहरी पिंगावाड़ा चौक गोराया जलंधर शू भेजनिया है संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ कमल साहनी पुरखुलुस आदाब दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड शू आपने संदेश भेजो है मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज शरीफ नवाज बाबू अहद और चाहत आ सगला ही फरमाइश पर आपा सुना ओ गीत लियो सुनो सा।

सुनियो भाई लोगों, गीत अगले गीत की फरमाइश आपने ताई भेजी है मोताला महाराष्ट्र शूं विजय सुरलकर, रतन माला आरती गौरी और ओम प्रकाश सुरलकर। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा शूं आपने संदेश भेजे अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। गांव नथाणा पंजाब शूं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। वो संदेश आयो है आदर्श नगर मलोट पंजाब शू राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, सायना शर्मा, निवान शर्मा। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश शू आपने संदेश भेजो है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा, दीक्षा, कुश मुणत। अगलो संदेश आयो है रोवर करनाल शूं, भेजनिया है ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। वो संदेश आयो है आपने ताई भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल हरियाणा शूं, भेजनिया है विजेंद्र कुमार, जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान। अगले गीत की फरमाइश करी है जनकपुरी सहारनपुर शूं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। गांव 4M शू आपने संदेश भेजे कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत और जसदीप। एकता कॉलोनी रोहतक शू संदेश आयो है सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा, तन्वी बोट और अंकित कागड़ा। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश शू फरमाइश करी है यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह। मनाली हिमाचल शू आपने संदेश भेजो है सतीश अनेजा, विमला अनेजा। तो भाई लोग सगला की फरमाइश पर आपा सुना ओ लोकगीत सुनो सा।

0: toda chegou ego.
1: सुनियो भाई लोगों गीत और अगले गीत की फरमाइश आपने तई जकी पुगी है बाह है गांव हिपरसोगा तहसील औसा जिला लातूर शू उस्मान शेख फौजी सायरा बानू शेख बाबा शेख सिमर शेख और करिश्मा शेख रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर शू आपने संदेश भेजो है लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी दादरी गेट भिवाणी शू संदेश आयो है कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा कुनाल मेहरा वो संदेश आयो है ग्राम पिपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ शू भेजनिया है दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और जीवांश शिवांश वर्मा गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब शू सुभाष गोदारा विमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा सरवण रिणवा हंसराज भाटिया मनीराम रणजीत राम किरोड़ीवाल सुरेंद्र भादू अगलो जगह संदेश आयो है वो है बड़िंग खेड़ा पंजाब शू मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा भोपालगढ़ राजस्थान शू आपन संदेश भेजो है धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा ईशान छिंपा पूजा परिहार मेरठ कैंट शू दिग्दर्शन और कविता गौड़ श्री कानपुर शू पवन कटारिया समीर कटारिया शालू कटारिया वो संदेश आपने भेजो है तहसील भादरा अनूप शहर शू गजानंद सारस्वत डॉक्टर ताराचंद सारस्वत अशोक कुमार सोनू पवन कुमार मुरारीलाल मदनलाल शर्मा फूसाराम मील महावीर लोहरा और आगे परिवार का सदस्य साधुल शहर शू रामकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ भी आपने फरमाइश भेजी है गांव घमंडिया सूरतगढ़ शू जगदीश ढूकिया प्रमिला ढूकिया ज्योति शिवम ढूकिया सरिता सचिन अमना तमन्ना सायना विष्णु ढूकिया और दोईती इवा धारणिया गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा शू

प्रताप जिनागल, इंदिरा मुकेश, दिनेश अंशु, बलदेव कटारिया। चक 15 पीएसयू आपने संदेश भेजो है सरोजीत सिंह जोशन, सरोजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल जोशन मेलबर्न, रोबिन सिंह जोशन वैंकूवर। वो संदेश आयो है अपने ताई अमरपुरा जालू खाड़ू भेजनिया है जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति और राजेंद्र प्रजापति। नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान शू आपने संदेश भेजे नरेंद्र कुमार, नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, मोहनलाल सुथार, महावीर मिस्त्री और राम कुमार सुथार, दिलीप कामड़, बेगराज सियाग, कालू खान, नजाकत अली, गुट्टे खां, छगन सिंह तंवर। अपना ताई वो संदेश आयो है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार शू भेजनिया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। गांव सूर्यवाड़ा जिला हनुमानगढ़ शू डॉक्टर सतनाम सिंह सवना, जसविंदर जसी, सुमन। वो संदेश आयो है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाभली शू भेजनिया है गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले। आगलगी की फरमाइश करी है ज्योति नगर नोखा राजस्थान शू पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी, हसन सिक्का। नई बस्ती गंज डुंडवारा शू आपने संदेश भेजे मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। हनुमानगढ़ टाउन शू संदेश भेजे सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी। वो संदेश आयो है बठिंडा रोड मंडी डब वाली शू राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंगो। गोविंदपुरा सीकर शू आपने संदेश भेजे दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। सूरतगढ़ शू आपने संदेश भेजो है हरीश शर्मा। नांदेड़ महाराष्ट्र शू संदेश आयो है नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साई। आज सगळ्यांची फरमाइश पर भाई लोगों सुन लिया आपा वो गीत लियो सुनो सा।

काल भाई रे कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस ये जी मोर राम जी करा फैसलो नानी तो कंजूसर भाई नानी बोली अर छोड़ दाल चर पर नानी बोली अर छोड़ दाल चर पर

भाई लोगों, अगले गीत की फरमाइश अपने ताई भेजी है कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली। सागे आगे भी संदेश आयो है अपने ताई हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी शू भेजनिया है जगदीश धाकड़, नायमा रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। अलीका तहसील डब वाली शू रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू रजनी। गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से अपन ने संदेश भेजे ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। गांव जोगीवाड़ा श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता अपन ने संदेश भेजे है। छत्रपति संभाजी नगर से संदेश आयो है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। वो संदेश आयो है गांव बनवाला हनवंता फाजिलका पंजाब शू विनोद मायल, सीमा लक्षिता, यशिका विद्या देवी और पूरा मायल परिवार। वो संदेश भेजे आपने आकली दीवान मध्य प्रदेश शू रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी और दिलीप कुमार चंद्रवंशी। गांव हीरावाड़ी फाजिलका पंजाब शू हजारी लाल पुरोहित, मोनी पारिक और भूपेंद्र पारिक। गांव कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र शू प्रवीण हागोणे, योगिता हागोणे, प्रियाली हागोणे, पार्थ हागोणे और हागोणे परिवार। वो संदेश आयो है रामगढ़ कैंट शू भेजनिया है महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। शनि मंदिर चौक खंडवा शू अपन संदेश भेजे दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी और गौरव सैनी। बुच्चो कैंचियां बठिंडा पंजाब शू अपन संदेश भेजे प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत। फरमाइश करनिया मैं अपने ताई संदेश भेजे है कस्बा गुन्नौर यूपी शू फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा। बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र शू अपन संदेश भेजो है सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेद कुमार, साधना पवन पाटिल। जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड शू अपन संदेश भेजो है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दिवाली गोप। वो संदेश अपना ताई आयो है न्यू नई दिल्ली शू मोती नगर शू अपन संदेश भेजनी है गौरव, अनिल, मानसी और कविता अरोड़ा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र शू संदेश आयो है गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश, ऋषिता। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया शू संदेश आयो है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय गो। रायपुर छत्तीसगढ़ शू फरमाइश करी है विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर। खैल बाजार पानीपत शू अपन संदेश भेजे नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र शू अपन संदेश भेजे है सिद्धार्थ गोंडाणे,

अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। चौटाला हरियाणा से आपने संदेश भेजे दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और पुनीत पंचारिया। वो संदेश आयो है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। भेजनिया है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। आसाम से आपने ताई संदेश भेजो है हितेंद्र दास। और अगलो जो संदेश आयो है वो है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से अपन संदेश भेजे है मोहम्मद साकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता पलक, लूबना और यश मंसूरी। झोरड़ फार्म हाउस बैलोल नगर से अपन संदेश भेजे है नरेंद्र झोरड़, भीमसेन झोरड़, लोकेश झोरड़, गौरव झोरड़, पुनीता झोरड़, आरवी झोरड़। और अगलो जगह संदेश है वो अपना तय आयो है पंचकूला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान और लव दीवान, राधे भाविक ढींगरा। आ सगला की फरमाइश पर आपा सुना वो गीत लियो सुनो सा।

सुनियो भाई लोगों गीत, और अपने ताई मेल भी पुगेड़ी है, बेबी बांगी भी फरमाइश पूरी करा बेबी बांचा। तो आप मेल आईडी है अपने ताई अनारकली बाजार जगराओं पंजाब शू सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। अगली जकी मेल आई है अपने ताई बा है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश हूँ, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। ओ मेल आयो है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ छू, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर कैथल और अमनदीप। कालका छू अपन मेल भेजो है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। गांव 5 एम डी पतरोड़ा अनूपगढ़ छू अपन मेल भेजो है मंगल जिनागल, रोशनी जिनागल, अंकुर जिनागल, इंदु और सुनील जिनागल को। अगलो मेल आयो है अपने ताई छत्तीसगढ़ महासमुंद शू भेजनिया है कलीम आसमा डोम, सलीम आसमा डोम, याकूब आसमा डोम, यूसुफ आसमा डोम, और चांदनी चौक बिहार शू सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्ल्यू वली जाटव, सोनम वली जाटव। ओ मेल आयो है अपने ताई पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश हूँ, भेजनी है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, शुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। गांव खरकड़ा 24 शू भेजो है आपने संदेश मेल गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा। छत्तीसगढ़ डोंगर गांव शू आपने मेल भेजो है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। ओ मेल आयो है अपने ताई डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ छू, देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डोली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। पटेल नगर मलोड छू आपन संदेश भेजो है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, अर्जु जाजोरिया और गुड्डू। ढाणी गांव ढाणी लाल खां छू आपने संदेश भेजो है जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां, सोहिल खां, जुनेद खां, मुखराम, आरिफ खां, ईयान खां, अरशद खां और अरमान खां। आ फरमाइश भेजी है आपने संबलपुर कांकेर छू, भेजनिया है फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। ओ मेल आयो है लखूवाड़ी हेड छू, भेजनिया है भंवरलाल, कृष्णा, विशाल, सौरभ, राजबाला, ममता, नव्या, लक्षिता, मोहम्मद रफीक, मुकनाराम, महावीर लोरा। अगलो जको मेल आई है वो आयो है अपने ताई जूट मिल रायगढ़ छत्तीसगढ़ शू, भेजनिया है रेशमा बेलदार, वली बेलदार, सोनम बेलदार, उल्लाह बेलदार, आसमा बेलदार, सरफुजद्दीन बेलदार और डब्ल्यू बेलदार, फातिमा बेलदार। कनवाणी रावत सर शू आपने मेल भेजिए कृष्ण जी सिहाग, इन सागे ही अपने ताई एक संदेश आयो है गांव नगराना छू, भेजनिया है दुलनाथ कच्छावा, लालचंद नाथ, प्रेम, सोन, मंजू, अमन, अंकुश, राहुल, रीटा, दीपक, पीयूष हर, योगेश नाथ। आज सगला की फरमाइश पर आपा सुना वो गीत लियो सुनो सा।

इन गीत की फरमाइश आपने भेजी है 82 RB राजनगर से चेतन राम सारसवा, नौरंग राम सारसवा और प्रदीप सारसवा, ज्योति सारसवा, ममता नानू देवी, शोभ प्रकाश खाती, सोन जी जांगिड़, धनराज जी बांबू, सुनील डाल, प्रवीण सरावगी, नरसी जी सिंवर। चक 3 RWM रावत सर हनुमानगढ़ शू, मोहन लाल मोयल, गोपीराम मोयल, राकेश कुमार मोयल, मनीराम अनुज, मनीष अलका, मंजू कनिष्का, अर्चना रिया, दीपिका सोनाक्षी, हर्ष चिराग, मुकुंद राधिका। रूपाणा बिश्नोयन सिरसा हरियाणा शू आपने मेल भेजे है सूरजमल मास्टर, पाल टेलर, भीम टेलर, चिराग, दुर्गा शक्ति, दादी रामी देवी। भागवत उत्तर प्रदेश संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आज सगला की फरमाइश पर आप गीत सुनियो और कार्यक्रम किसोक लागी और भोजना का मेल और संदेश और खतरे भी गया तो इन वास्ते क्षमा प्रार्थी हाँ, अगली बार जरूर शामिल करांगा। पर अब मुकेश भाई ने दियो अनुमति, चलूँ सा राम राम सा राम राम।

जो तो अभी आप सुन रहे थे हमारा ग्रामीण दैनिक कार्यक्रम चौपाल। मीडियम 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7:45 मिनट हो चुके हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओ, आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत हम समर्पित करते हैं आज असद भोपाली गीतकार को। दोस्तों, आज उनका जन्मदिन, तो असद भोपाली की हम बात करें तो आप हिंदी फिल्म गीतों के एक मशहूर शायर और गीतकार, और उनका असली नाम असदुल्ला खान था और उनका जन्म 10 जुलाई 1921 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। वे बचपन से ही शायरी में रुचि रखते थे और बाद में जाकर फिल्मी दुनिया से जुड़ गए। शुरुआती दौर में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी लेखनी ने धीरे धीरे पहचान बना ली। उन्होंने करीब 100 फिल्मों के लिए 400 से अधिक गीत लिखे। उनके लिखे कई गाने बहुत लोकप्रिय हुए, जिसमें वो जब याद आए और कबूतर जा जा और दिल दीवाना बिन सजना के माने ना जैसे गीत शामिल हैं। मैंने प्यार किया के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। असद भोपाली 9 जून 1990 को इस दुनिया को विदा कह गए, लेकिन उनकी शायरी और गीत आज भी याद किए जाते हैं। आइए इन्हें की लिखा एक गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म पुलिस पब्लिक से। आवाज़ें लता मंगेशकर और अमित कुमार की और धुन राम लक्ष्मण की।

श्रोताओं, असद भोपाली हिंदी सिनेमा के एक बड़े और सम्मानित गीतकार शायर थे। उन्होंने 1949 में फिल्म दुनिया से फिल्मी गीत लिखने की शुरुआत की और लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। करीब 40 साल के कैरियर में उन्होंने लगभग 100 फिल्मों के लिए 400 से अधिक गीत लिखे। उनके लिखे गीतों में रोमांस,

दर्द, सादगी और मस्ती सबको सुंदर मिलता है। असद भोपाली की असली पहचान फिल्म मैंने प्यार किया के गीतों से मिली, खासकर कबूतर जा जा में जैसे गीत थे, और इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला, लेकिन तब तक वे बीमारी के कारण समारोह में शामिल नहीं हो सके। अंततः जैसे कि हमने आपको पहले बताया, 9 जून 1990 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन दोस्तों उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।

उन्होंने प्रसिद्ध इनके बी आर चोपड़ा की फिल्म अफसाना के गीतों से मिली थी और असद के समय के सबसे प्रमुख संगीत निर्देशक जैसे कि श्याम सुंदर, हुसनलाल, भगतराम, सी रामचंद्र, खयाम, धनीराम, मानस मुखर्जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कालनजी आनंद जी और हेमंत मुखर्जी के साथ काम किया। और दोस्तों, इनकी गीतों से हम सभी ने बहुत अपना मनोरंजन किया। गीत चल रहा है दोस्तों, आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम वहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, असद भोपाली की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने पहले 1949 की फिल्म दुनिया के लिए जो दो गीत लिखे जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है रोना है तो चुपके चुपके रो, और सुरैया की आवाज़ में थी अरमान लुटे दिल टूट गया, की आवाज़ में ये रिकॉर्ड किए गए थे और लोगों ने बहुत पसंद किया था।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, और आज का ये फिल्म संगीत समर्पित था गीतकार असद भपाली को। मीडियम 15 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AI ऐप पर, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, और आज हम शुरुआत करते हैं इस फिल्म की गीतों से।

श्रोताओ, गीत की धुन सुनते ही निश्चित रूप से आप ये तय कर चुके हैं कि आज की फिल्म कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, फिल्म मैंने प्यार किया। और आज की ये फिल्म चुनने का मुख्य कारण असद भोपाली, जो कि गीतकार शायर, उनका जन्मदिन, और उनके जन्मदिन पर हमने मैंने प्यार किया फिल्म के ये चंद गीत चुने। और इसका कारण मुख्य रूप से ये है कि इस फिल्म के लिए 1990 में असद भोपाली को कबूतर जाजा और प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार दिया गया, फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। जब तक कि दोस्तों ये गीत हमारे दिलों में गूंजते रहे। गीत हम आपको सुनवाएंगे, फिल्म की पटकथा भी हम आपको सुनवाएंगे। पहले हम ये गीत सुन लेते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत असद भोपाली का, संगीत राम लक्ष्मण का।

नेहा श्रोता, फिल्म मैंने प्यार किया से अब हम शुरू करते हैं इसकी पटकथा। मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि मैंने प्यार किया फिल्म 1989 की सूरज बड़दात्या के द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की संगीतमय प्रेम कहानी फिल्म है। और इसकी फिल्म की प्रमुख भूमिकाओं में सलमान खान, भाग्यश्री इसमें है और इसे राजश्री प्रोडक्शन द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों, ये फिल्म भारत के अंदर 29 दिसंबर 1989 को रिलीज़ हुई। और हम जहाँ तक बात करें इस फिल्म की पटकथा की, तो हम आपको बता दें कि ये फिल्म जिसने प्रेम कहानियों का एक नया अंदाज दिया है, ये मैंने प्यार किया फिल्म का, इस फिल्म में केवल एक रोमांटिक कहानी नहीं थी बल्कि भारतीय पारिवारिक मूल्यों, दोस्ती, विश्वास और आत्मसम्मान का खूबसूरत संगम थी। निर्देशक सूरज आर बड़जात्या ने अपनी पहली ही फिल्म में ये दिखा दिया कि बिना शोर शराबे और बिना अनावश्यक भव्यतत्व के लिए एक फिल्म सीधे साधे दर्शकों के दिल तक पहुंच सकती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है, प्रेम और सुमन के रिश्तों में मासूमियत है, अपनापन है और एक दूसरे के लिए सम्मान है। यही कारण है कि ये कहानी आज भी नई पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर अभिनय की बात करें तो सलमान खान ने प्रेम के किरदार में सहजता और ऊर्जा का शानदार मेल दिखाया। वहीं भाग्यश्री ने सुमन के रूप में मासूमियत और आत्मविश्वास का ऐसा चित्रण किया जिसने उन्हें रातों रात लोक

श्रोताओ, बात करें संगीत की तो किसी भी प्रेम कहानी की आत्मा उसका संगीत होता है, और इस फिल्म का संगीत आज भी सदाबहार माना जाता है। आज भी जब हम रेडियो सेट पर इस फिल्म के गीत सुनते हैं, या कहीं भी हम अपने घर पर किसी भी एक मीडिया के माध्यम से ये गीत सुनते हैं, तो मन में प्रफुल्लित और एक आनंदमय स्थिति बनती है। फिल्म के गीत केवल लोकप्रिय नहीं हुए दोस्तों, बल्कि हर उम्र के श्रोताओं को याद का हिस्सा बन गए। गीतों ने कहानी की भावनाओं को और गहराई दी तथा फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसके संवाद, कई संवाद आज भी लोगों की जुबान पर सरल भाषा में लिखी गई, ये संवाद रिश्तों की गरिमा और भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। तकनीकी दृष्टि से देखें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, लोकेशन और पारिवारिक माहौल कहानी के अनुरूप है। हर दृश्य में अपनापन महसूस होता है। यही विशेषता राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों की पहचान भी रही।

श्रोताओ, अगर हम विश्लेषण करें तो मैंने प्यार किया फिल्म केवल प्रेम की कहानी नहीं कहती, बल्कि ये संदेश भी देती है कि सच्चा रिश्ता विश्वास, मेहनत और आत्मसम्मान पर टिकता है। प्रेम केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने से भी मजबूत होता है। यही संदेश फिल्म का समय के साथ और भी प्रासंगिक बनाता है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की और उस दौर की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हुई। इसने सलमान खान को एक बड़े सितारे के रूप में स्थापित किया और सूरज आर बड़जात्या को हिंदी सिनेमा की सफल निर्देशकों की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया। आज दशकों बाद भी जब मैंने प्यार किया का नाम लिया जाता है तो सिर्फ केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक दौर, एक एहसास और भारतीय पारिवारिक सिनेमा की खूबसूरत परंपरा याद आती है। श्रोताओ, अगर हम बात करें इस फिल्म की फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए, उन इस फिल्म के लिए जो पुरस्कार दिए गए, और फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजश्री प्रोडक्शन को दिया गया, फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार राम लक्ष्मण को दिया गया, फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गीतकार असद भोपाली को दिया गया और गाना था दिल दीवाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम को दिया गया और गीत के बोल थे दिल दीवाना, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू में सलमान खान

को फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू में भाग्यश्री को फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये कुछ पुरस्कार थे फिल्म फेयर के जो इस फिल्म ने जीते थे। अब हम बात करें कि इस फिल्म के जो, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इसकी प्रदर्शनी भारत के अंदर 19 दिसंबर 1989 को हुई थी, और अब हम बात करें इस कार्यक्रम में इस फिल्म के गीत की, तो अंतिम गीत हम आपको सुनवा देते हैं। दोस्तों, ये गीत सुनिए, आवाज़ें लता मंगेशकर, SP बाला सुब्रमण्यम की, और गीत असद भोपाली का, संगीत राम लक्ष्मण का।

श्रोताओ, आज का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत को समाप्त करने की अपने दोस्त जसवीर सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। और आज की फिल्म थी मैंने प्यार किया। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी देर में आप सुने आकाशवाणी से समाचार।
1: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य सेमीफाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने संयुक्त रूप से भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप का शुभारंभ किया। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच लंदन के लॉर्ड्स मैदान में जारी।

0: तो आज सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं टेनिस के साथ, जहां साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम खेला जा रहा है, यानी कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, और अलेक्जेंडर जेरेव इसके पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराया। अब से कुछ देर में एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। नोवाक जोकोविच इससे पहले 10 बार पुरुष सिंगल्स का फाइनल खेल चुके हैं, जिसमें से 7 बार खिताब उठाने में सफल रहे हैं।
1: मार्सिलो अरेवालो और जेलेना ऑस्टापेंको की जोड़ी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का मिक्स डबल्स खिताब जीत लिया है। 1 घंटे 56 मिनट के रोमांचक मैच में इस ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने स्टॉर्म हंटर और मार्क पॉलमैंस की जोड़ी को 4-6, 7-5, 6-2 से हराया। इसके साथ ही दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अपना पहला मिक्स डबल्स का मेजर और पहला विंबलडन खिताब अपने नाम किया। वहीं कैरोलिना मखोवा और लिंडा नोस्कोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में चेक गणराज्य की कैरोलिना ने अमेरिका की कोको गॉफ को 6-2, 1-6, 7-6 से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने यूक्रेन की मार्टा कोस्तियुक को 6-4, 6-4 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो ये था कल के मैचों का हाल, लेकिन बात करते हैं अभी खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबलों की, जहां जेवरेव ने पहले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष, सबसे पहले ये बताइए, रोमांचक मुकाबला रहा होगा, क्योंकि जब भी अलेक्जेंडर जेरेव की बात होती है फ्रेंच ओपन का, वो फाइनल याद आता है। ये खिलाड़ी डरता नहीं है, डटता है और मुकाबला करता है।
2: जी हाँ शक्ति, लगातार अपनी विकट परिस्थितियों के बावजूद अलेक्जेंडर जेरेव पहले खिलाड़ी बन गए हैं विंबलडन 2026 में अपनी जगह बनाने वाले। उन्होंने आर्थर फेरी को इस मुकाबले में हराया। जो पहला सेट रहा वो बहुत ही कांटे की टक्कर का रहा। पहले मुकाबला 6-6 की बराबरी से था और लास्ट में अलेक्जेंडर जेरेव ने उनको छकाते हुए एक बेहतरीन तरीके से जीत को मुकम्मल किया। वहीं दूसरे और तीसरे सेट में आर्थर फेरी कहीं आसपास भी नजर नहीं आए।

0: ज्वेरेव ने जो है बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला जीता। लेकिन अर्थर फेरी जो एक 23 वर्षीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने इससे पहले हुए मुकाबले में फ्लेवियो कोबोली को हराकर एक बहुत बड़ा उलटफेर किया था, क्योंकि जो अर्थर फेरी की रैंक है वो 114वीं रैंक है और उन्होंने 90 नंबर के खिलाड़ी को हराया। ये एक बहुत बड़ी बात थी और एक वो वाइल्ड कार्ड एंट्री से आने वाले भी पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है।
1: जी बिल्कुल, तो ज़ेवरेव ने अपना टिकट पक्का कर लिया है, लेकिन दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है। एक तरफ युवा जोश से भरपूर यानिक हैं और दूसरी तरफ नोवाक, जिनकी नज़र बिल्कुल स्पष्ट है अपने 8वें विंबलडन खिताब के लिए।
0: जी हाँ, जैसा आपने बताया कि वो अपने आठवें टाइटल के लिए जो है बहुत ही तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ये उनका 11वां फाइनल होगा अगर वो ये मुकाबला जीत जाते हैं, लेकिन यानिक सिनर की स्पीड के आगे जोकोविच कई बार परास्त हो चुके हैं, लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ जोकोविच अपने खेल में बदलाव करके एक अपने जो दौड़ है उसको सही जगह पर जाके ख़त्म करेंगे।
1: जी बिल्कुल, देखना होगा इसमें से कौन खिलाड़ी फाइनल में जगह बनाता है आज की रात। और अब रुक करते हैं फीफा फुटबॉल विश्व कप का, जहां क्वार्टर फाइनल के मुकाबले अब शुरू हो चुके हैं और कल पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और आज रात 12 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होना है।
2: फीफा विश्व कप 2026 को फ्रांस के रूप में अपना पहला सेमीफाइनलिस्ट मिल गया है। बॉस्टन स्टेडियम में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने किलियन एम्बापे और उस्मान डेम्बेल के गोल की बदौलत सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। मैच की शुरुआत से ही फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया, हालांकि लगातार दोनों तरफ से हो रहे आक्रमण के बाद भी मैच के शुरुआती 45 मिनट गोल रहित रहे। इसके बाद दूसरे हाफ में फ्रांस ने अपना अटैक और तेज किया। टीम को पहली सफलता मैच के 60वें मिनट में कप्तान किलियन एम्बापे ने दिलाई, जिन्होंने बेहतरीन कर्लिंग शॉट लगाते हुए फ्रांस को 1-0 से आगे कर दिया। ये इस विश्व कप में उनका 8वां गोल था। इसके ठीक 6 मिनट बाद ही उस्मान डेम्बेल ने फ्रांस की बढ़त को जल्द ही 2-0 कर दिया। एम्बापे के शानदार पास का फायदा उठाते हुए डेम्बेल ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया और फ्रांस की जीत पक्की कर दी। इसके बाद बचे हुए समय में फ्रांस ने नियंत्रण से खेल को आगे बढ़ाया और को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। फ्रांस ने लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है।
3: 20 वर्ल्ड कप गोल्स फॉर किलियन एम्बापे। उस्मान डेम्बेले हैज हिट द बॉटम कॉर्नर एंड फ्रांस आर हेडिंग फॉर द फाइनल फोर। अ गोल ऑफ प्रिसिजन एंड सर्टेनिटी। फ्रांस मार्शल
2: इससे पहले टीम वर्ष 2018 में चैंपियन बनी थी और 2022 में फ्रांस ने फाइनल तक का सफर तय किया था। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: विशेष, यहां अब वो दौर आ चुका है फीफा का जहां टीमें अपने खिताब से महज 2 से 3 कदम दूर हैं, लेकिन उनको पता है कि ये सबसे कठिन कदम है। आज मुकाबला होना है स्पेन का बेल्जियम से, किसका पलड़ा भारी है?
0: देखिए, पलड़ा भारी अगर मैं बताना चाहूँ तो दोनों ही टीमों ने इस विश्व कप में बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया है, क्योंकि दोनों ही टीमें अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं हारी हैं। स्पेन ने एक ड्रॉ खेला था केप वर्डे के साथ, उसके अलावा सऊदी अरेबिया हो, उर्गवे हो, ऑस्ट्रिया हो या पुर्तगाल हो, किसी भी टीम के सामने स्पेन जो है बिल्कुल पीछे नहीं हटी और उन्होंने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की। वहीं बेल्जियम जो है उन्होंने भी अपना पहला मुकाबला इजिप्ट से ड्रॉ खेला था, उसके बाद उन्होंने एक मुकाबला ईरान से ड्रॉ खेला और 3 मुकाबले जीत कर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मानसिक दबाव जरूर बेल्जियम पर होगा, क्योंकि स्पेन एक बार विश्व विजेता रह चुके हैं, जबकि बेल्जियम ने अभी तक कोई एक भी बार अभी तक खिताब नहीं जीता और फाइनल भी नहीं खेला है।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा झुकाव जो है मैच का स्पेन की तरफ होगा, लेकिन क्योंकि क्वार्टर फाइनल है तो दर्शकों को एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। खेल ना सिर्फ एक मंच है जोश, जज्बे और जुनून से दुनिया जीतने का, बल्कि खेलों के अंदर क्षमता है सीमाओं की दीवारें तोड़कर संबंधों को नई मजबूती देने की। ऐसा ही किरदार अदा करता है क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के लिए। सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन आज प्रसिद्ध मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG पहुंचे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि MCG में आकर किसी भी भारतीय के मन में 2 भावनाएं एक साथ आती हैं।
5: MCG में आकर किसी भी भारतीय

0: के मन में दो भावनाएं एक साथ आती हैं, एक भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
1: श्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए खुशी की बात है।
0: स्पोर्ट्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भी प्रयासरत हैं, जबकि ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा।
0: 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत के चेन्नई में आयोजित किया जाएगा।
0: मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है।
1: कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री अल्बनीज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम साथ खेले और हम साथ जीते। स्पोर्ट्स कैन के लिए नेहा गोस्वामी।
2: हम साथ खेलते हैं और साथ जीतते हैं, ऐसे ही कुछ संबंध हैं भारत और न्यूजीलैंड के, जहां पे क्रिकेट की जगह ये किरदार अदा करता है हॉकी। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया कि हॉकी से शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: और अब चलते हैं लंदन के लॉर्ड्स मैदान की तरफ, जहां पर एक नया कीर्तिमान और इतिहास लिखा जा रहा है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड और भारत के बीच एक मुकाबला टेस्ट मैच यहां पर खेला जा रहा है और एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद ये मैदान महिला क्रिकेट टेस्ट मैच की मेज़बानी कर रहा है। आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर 218 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पहली बार किसी महिला क्रिकेट टेस्ट मैच की मेज़बानी कर रहा है। और इंग्लैंड में ही इंग्लैंड ने भारत को चौथे T20 मुकाबले में 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला अपने नाम कर ली है। कल ब्रिस्टल में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 158 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर के 49 गेंदों पर 80 रन का अहम योगदान था। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने 2-2 विकेट निकाले।

0: 1959 के लक्ष्य को इंग्लिश टीम ने फिलिप सॉल्ट और हैरी ब्रूक की अटूट शतकीय साझेदारी की बदौलत 13 ओवर और 5 गेंद में ही हासिल कर लिया एक विकेट खोकर के। और इसके साथ ही मेज़बान टीम ने 5 मुकाबलों की यह श्रृंखला जो है 3-0 से अपने नाम कर ली है। और ये पहला मौका है जब इंग्लैंड ने भारत के साथ 2 या उससे अधिक मैचों की कोई श्रृंखला T20 श्रृंखला जीती है। और पहला मैच इस श्रृंखला का जो है बारिश के कारण रद्द हो गया था और अंतिम मुकाबला श्रृंखला का साउथहैम्पटन में कल खेला जाना है, जहां भारत की उम्मीदें होंगी कि अंतिम मुकाबले को जीत करके एक अच्छी शुरुआत दी जाए अपने T20 श्रृंखला की, जो कि 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। और अब बात कर लेते हैं हॉकी की। हॉकी इंडिया ने जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान सलीमा टेटे के हाथ में सौंपी गई है, जबकि सविता और बीचू देवी खरीबाम को गोलकीपर के तौर पर टीम में तैनात किया गया है। इशिता चौधरी, सुशीला चानू और ज्योति, शिल्पी डबास, निकी प्रधान, साक्षी राणा, सलीमा टेटे, नेहा, दीपिका सोरंग को टीम में मौका दिया गया है, जबकि बलजीत कौर और ऋषिका भी टीम का हिस्सा हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव और राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग

0: समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आरसेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत

इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए 32 पैसे पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए सुने एक बार फिर से जगजीत सिंह की आवाज़ पे ये गज़ल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत और आज के कलाकार थे जगजीत सिंह। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। आइए अब सुने पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू।

जी हाँ दोस्तों, बलकार सिद्धू ते साथियों की आवाज़ विच असी गीत सुनाता चुबारे वाली बारी। तो मिशन साहब तुसी खुश हो गए होने। तो अगला सुनिया पहुँचा जी छत्तीसगढ़ तो राष्ट्रपाल गजबे राधिका बेबी अनुष्का ते तन्मय गजबे दा। तो आहा सुनिया पहुँचा जी रामगढ़ कैंट तो महेंद्र बोधी ठाकुर साहब पिंड चार एम कुलविंदर सिंह सुखप्रीत जसप्रीत मिट्टी की खुशबू प्रोग्राम बहुत वधिया लगता है। शुक्रिया जी दोस्तों। तो आहा सुनिया पहुंचा जी साढ़े कोल विड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टोमस लक पिंकी लवली आरती अरोड़ा दा। तो सुनेहा पहुंचा जी साढ़े कोल अकोला तो सुशीला देवी सदानंद मंदूरकर कुमार गुरु मंदूरकर दा। तो लोहगढ़ ठाकरावाले जिला फिरोजपुर तो सरवण सिंह गिल दलजीत सिंह गुरनूर सिंह राम कुमार नारंग बलदेव सिंह भगवानगढ़ भुखिया तो। प्रोग्राम कहते जी मिट्टी की खुशबू तो यही लिखता है जी साथी ने सर नांदेड़ महाराष्ट्र तो नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओमाकार साई कहते कोई भी गीत पंजाबी सुनवा दे सुनवा देने जी। तो ये कहते जी मिट्टी की खुशबू प्रोग्राम के श्रोताओं सू नमस्कार सत श्रीकाल सत श्रीकाल कहते प्रिंटर प्रोग्राम बहुत वधिया लगता है जी। तो कोई भी गीत सू सुनवा दौ कहते गीत भी सुनवा देंगे थोड़ा। तो यह लिख के भेजिए जी सू भोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र शिंपा कपिल शिंपा ईशान पूजा तो ईशान शिंपा तो पूजा परिहार का। तो अगला सुनेहा पहुंचा जी दादरी गेट भवानी तो कृष्ण मेरा किरण मेरा किरण मेरा कपिल मेरा कुणाल मेहरा। तो अगला सुनेहा भाई साहब जसवीर सिंह जी सत श्री अकाल नमस्कार सत श्री अकाल नमस्कार मिट्टी की खुशबू प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं तो थोड़ी पेशकश बहुत वधिया लगती है। तो अज्ज सानूं गीत गुरदास मान की बिल्कुल सुनावे गुरदास मान की आवाज़ भी गीत सुनावे। ये लिख के भेजे जगराओं पंजाब तो सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा भाई सुचा सिंह पाठक जयपाल यादव का। आ सुनिया पहुंचा जी हितेंद्र दास असम तो बहुत दूरों भेजा जी सुनिया शुक्रिया जी। और जी आयान कहने महाराष्ट्र तो गंगाधर सावनकर विजय लक्ष्मी सावनकर राजेश राकेश रिशिता। तो सुनिया पहुंचा जी जसवीर सिंह जी सत श्री अकाल पिंड सूरे वाले तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ तो सतनाम सवना जसविंदर जस्सी सुमन अंशदीप सवना तो तमन्ना हरमन बेबी जय परमवीर कहते असं आकाशवाणी सूरतगढ़ के सारे प्रोग्राम बड़े शौक न सुनते हैं सन बहुत वधिया लगते हैं हर शुक्रवार इस तरह बेसब्री का इंतजार करते हैं शुक्रिया जी। कोई भी कहते गीत सुनवा दो। तो किशनगंज बिहार तो रविंद्र मोहन दास आशा देवी भी इस प्रोग्राम शामिल हो रहे हैं। सुनेहा पहुंचा जी वट्सअप से साढ़े को बिजनौर तो मुहम्मद वकार फरीदी मुहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू पिया साजदा रानी हीना कौसर ते मलोड़ तो कुलवंत गिल जसवंत गिल रमन गिल बलजीत सिंह कनेडा तो दिशा माहौला जगतार जग्गा ते धौला किंगरा तो। ते आह सुनिया पहुंचा जी गौतम नगर नांदेड़ तो प्रभा जोंदले आरती ते नांदेड़ महाराष्ट्र तो ते मंडी डब्बाली तो राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग तान्या नारंग ने भी सानू सुनेहा भेजा जी। तो बलिया तो अहमद भाई फूल वाले सफत आरजू जूही इकबाल अमन्ना नसरीन आसमा परी ते इमरान अहमद फूल वाले ने भी सानू सुनेहा भेजा है। डबाली तो रूप सिंह लखोत्रा करमजीत सिंह लखोत्रा सरबजीत लखोत्रा राणू सोनू रजनी। तो आह सुनेहा पहुंचा जी ताज मुहम्मद अंसारी गुलाम साबिर मेहराज आजाद नगर लश्कर हरिद्वार तो। अगला सुनेहा पहुंचा जी साढ़े को वट्सअप तो मिट्टी की खुशबू तो घुमंडिया तो सूरतगढ़ तो जोड़े लिखण वाले ने जी जगदीश ढूकिया प्रमिला ढूकिया ज्योति शिवम ढूकिया सरिता सचिन अमना तमना सायना विष्णु ढूकिया देहती ईविया धारणिया। तो कहते जी गीत सानू

जी हाँ दोस्तों, हंसराज हंस और साथियों की आवाज़ दे विच तुसी सुनिया गीत। और दोस्तों इस दौरान असी अपने जिहड़े टैक्नीकल जिहड़े साथी ने जी, तकनीकी साथी, उन्हां नाल असी रूबरू करा दी कंट्रोल रूम च महावीर प्रसाद सोहन लाल सोहना ते ट्रांसमीटर ते किशोर दीक्षित, जगदीश कुमार, रविंद्र कुमार पीपल। ते दोस्तों गल करिए टैक्निकल साथी दी, महावीर प्रसाद जी ने जब तक गीत चलिया जी, दोस्तों एक कप चाह दा बना के मैं देता, बिल्कुल गला तरोताज़ा हो गया जी। तो हुण महावीर प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े दोस्तों के इस खता पढ़न वास्ते, जिहड़ा चाह दा कप संत तक पहुँचाया जी। खैर दोस्तों आपां हुण सिलसिला शुरू कर देने जी, खत पढ़ देने, फिर आपां मेल पढ़ने शुरू करते हैं। तो आह जिहड़ा खत पहला पहुँचे जी, 4 LNP श्री गंगानगर तो, राजा सिंह गिल, सुखजीत कौर, राजप्रीत सिंह गिल, तो इंद्रगढ़ तहसील संघरिया जिला हनुमानगढ़ तो साढ़े साथी ने लिखिया जी खत। जसविंदर सिंह, PTI साहब, नमल कवल सिंह, जोरावर सिंह कहते जी प्रोग्राम सुनते बहुत वधिया लगता, शुक्रिया दोस्तों, पिंड इसी तरह सुनते रहो। अगला खत पहुँचे पिंड पंघाला जिला फाजिलका तो, जगतार सिंह गिल, गुरमीत गिल, नाजम गिल, सुखमन गिल, कमलदीप गिल।

तो आस्था तनेजा, भगवान दास तनेजा, ती पवन कुमार योगेश तनेजा, पूनम पूजा तनेजा, मुखराम पवार। ते कहते गाना सानू जरूर सुनवा दिओ, जरूर सुनावांगे तुहानू गाणा। ते गाणा आपां सुन लैणे आ, ते जी इह गाणा असीं गुरदास मन दी आवाज़ विच गाणा तुहानू सुना देने आ जी। सुनो इह गीत।

जी हाँ दोस्तों, सच्ची गल ठोक बजा के कहनी चाहिए। एक गुरदास मान की आवाज़ दोस्तों गीत सी, उन्हों का सुनेहा सी, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, और ये गल बिल्कुल सही गल है। खैर आप शुरू कर दे मेल दल सिलसिला। तो संबलपुर कंकोर तो फागू राम यादव, तो ज्योति यादव, तो ओजस्वी यादव भी सानू यह मेल लिख के भेज दिए। तो सत श्री अकाल लिख के भेजे जी मुकलावा तो, राम राम सा, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मदन बरोड, मंजू बाला, प्रीति बरोड, दिव्या बरोड, हितेश बरोड, कामना बरोड, लुभाणी बरोड, आरती बरोड, तो अजय, मुकेश, तो राजू, तो हनुमान बरोड, तो इमरती देवी बरोड, तो परिवार पूरा इन्हां जी प्रोग्राम च लिख के भेजता जी। इन्होंने स्नेहा आह स्नेहा पहुँचा जी साढ़े को जीमेल पर। सुरेंद्र संधु, तो अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, तो प्रतिशा संधु ने सानू यह नवांशहर पंजाब तो मेल लिख के भेजा। तो मेरठ तो अनिल जैन, जैन सयम जैन, तो मुस्कान जैन, मास्टर जीएम जैन ने भी सानू यह स्नेहा भेजा, जीमेल किया है जी। झारखंड तो शफुगता अंजुम ने भी सानू मेल भेजा जी। तो आह मेल पहुँचा है जी साढ़े कोल, साढ़े सुनने वाले दोस्तों का, राणी झाम, बिट्टू झाम, राणी बाजार, बीकानेर, राजस्थान तो। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लखवाली हेड तो मास्टर भंवर लाल, कृष्णा सौरभ, विशाल राजवाला, ममता नव्या, लक्षिता, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकना राम, तो नमस्कार, राम राम, तो कहते जी मुहब्बत जिंदाबाद, तो पेशकश बहुत सोहनी चल रही। शुक्रिया दोस्तों, मास्टर साहब।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। और आइए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए बिन फेरे हम तेरे फिल्म से मोहम्मद रफ़ी उषा खन्ना की आवाज़ में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये गीत, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी, उषा खन्ना की। फिल्म का नाम था बिन फेरे हम तेरे, गीत असद भोपाली का, संगीत उषा खन्ना का। कार्यक्रम का अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म इंसाफ से, आवाज़ तलत महमूद, आशा भोंसले की, गीत असद भोपाली का, संगीत चित्रा गुप्ता का। आइए सुने इंसाफ फिल्म का ये गीत।

तो अभी आप टावर हाउस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे ये गीत, गीत असद भोपाली का, संगीत रवि का। आइए अब सुने कार्यक्रम का अगला गीत, उस्तादों के उस्ताद से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना असद भोपाली की और धुन एक बार फिर से रवि की।

श्रोतो, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए सुने मस्त कलंदर फिल्म से तलत महमूद आशा भोसले की आवाज़ में

रूप तेरा मस्ताना। आइए इस फिल्म से सुनें लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत, गीता असद भोपाली का संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओ, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम लेकर आए हैं पारस मनी फिल्म से, आवाज़ें लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना असद भोपाली की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

श्रोताओ, इसी फिल्मी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 104.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे।

0: भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में